100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन गुरुवार, वैशाख मास की 24वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 14 मई सन 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में कल धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हुई बारिश से 43 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई है। एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से अधिक मौतें हुई हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ सीजन के किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेड ए धान के लिए MSP 2,461 रुपए प्रति कुंतल व सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति कुंतल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगा मूल्य। बाजरे के लिए 2,900 प्रति कुंतल और मक्के के लिए 2,410 रुपए प्रति कुंतल MSP निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों, उत्तर के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। IPL की एक रोमांचक मुकाबले में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा करने उतरी। बेंगलुरु की टीम ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 193 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मृत्यु का दामन थाम गए। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: मेरा शिकार आंखों में आंखें डाल कर किया उसने, फिर इलाज दिल निकाल कर किया उसने, बेगुनाही पर दस्तखत मैं खुद करके आया, बेगुनाही पर दस्तखत मैं खुद करके आया, मेरा कत्ल इतना संभाल कर किया उसने। नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं सदाबहार गीत। तो कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ ऐसी ही कहानियां और साथ में बेहतरीन गाने भी लेकर आ गया हूं एक बार फिर से। तो एक बेहतरीन सा गाना जरूरी हो जाता है इस चमचमाती सुबह के लिए।

0: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुरानी खूबसूरत गीत

कभी कभी जिंदगी हमें वो सब नहीं देती जिसकी हमें उम्मीद होती है। कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, तो कभी कभी किसी की याद हमारी रूह में इतनी गहराई से बस जाती है कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। आपका क्या ख्याल है बताइएगा जरूर। 7:11 प्रोग्राम सदाबहार गीत।

और कुछ उम्मीदें, कुछ बातें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रही हैं, जैसे कि नीरज कुमार, मोनू सेठ, सुल्तान रजा और राम मोहन गुप्ता जी ने ईमेल किया है हमें। भाई ये रिश्ता है ना, ये जो एक जज्बात होते हैं कि आज हम ढेर सारी बातें करेंगे उनसे, ढेर सारे ईमेल करेंगे और ईमेल के माध्यम से बातें करेंगे, तो ये जो रिश्ता होता है ना, ये इसकी एक अलग ही एक कहानी यूं कहिए, किस्सा होता है। वैसे ही कुछ कहानी है इंतजार के बारे में। इंतजार ये सिर्फ एक हर्फ नहीं है, बल्कि एक अधूरी सी उम्र है। ये शब्द जो आप इंतजार कहते हैं, ये पूरा करती है तस्वीर, क्योंकि इंतजार का अंतिम अध्याय के बाद शुरू होता है हिसाब। जी हां, इंतजार के बाद हिसाब भी तो करना है। इंतजार गुजरे दिन का, इंतजार गुजरी रातों का, और उन रातों में मांगी सिर्फ एक मुकम्मल मुलाकात का। शायद इंतजार पाक साफ होता है, किसी की याद में गिरे पाक साफ अश्क। इंतजार

जी हाँ, शायद यादें और इंतजार, ये दोनों की शक्लें अलग अलग है लेकिन भाव शायद एक ही है ना। अच्छा, पिंकी जी ने ईमेल किया है अमीनाबाद से, प्रोग्राम की तारीफ की है और गुलदस्ता भेजा है खूब ढेर सारे फूलों के साथ। और राज स्टूडियो ने भी हमें ईमेल किया है, इनका नाम है राजेश यदुवंशी, अमेठी से इन्होंने ईमेल किया है प्रोग्राम की तारीफ के साथ। गुलफसा जी ने लिखा है, बड़े प्यारे सा ईमेल किया है, लिखती है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और खाने पीने की चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं जो संडीला के रहने वाली हैं। और हमारे भैया मनोज भैया ने ईमेल किया है और एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिख के भेजी है जिसका अर्थ है कि जो लोग बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करते हैं उनकी आयु, ज्ञान, प्रसिद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है। बड़ी बेहतरीन सी लाइन। और हमारे राममोहन गुप्ता भैया ने ईमेल किया है और साथ में एक बड़ी ही एनर्जेटिक फोटो जो आसपास लोगों को एनर्जी से भरे हुई है, ये खुद की उन्होंने अपनी फोटो भेजी है और बड़ा ही प्यारी पंक्तियां हम सबको भेजी हैं। नीरज कुमार यानी कि रिंकी पिंकी जगदीशपुर से, इन्होंने भी बड़ी प्यारा सा ईमेल और खूब सजा धजा, बड़ी मेहनत लगी इनकी ईमेल लिखने में, देख रहे हैं। और सुल्तान रजा साहब ने भी हमें ईमेल किया है और एक लाइन लिखी है कि सांसों में रहकर तुम मेहमान बन गए, बात ऐसी की है कि हमारी मुस्कान बन गए, लोग पास रहकर हमारे ना बन सके और आप दूर रहकर हमारी जान बन गए। क्या बात है, ये होती है दोस्ती, ये रिश्ता भर भर के आते हैं ईमेल ना। तो कजरा लगाते हैं मोहब्बत वाला, फिर अगला गाना सुनते हैं।

और हमारे बड़े भैया राजेश कुमार ने ईमेल किया है गुड मॉर्निंग और कह रहे हैं कि हम अभी सो के उठे हैं और एनर्जी से भरे गाने सुन के बिल्कुल एकदम तन मन तंदुरुस्त हो गया है और ये मेरठ में है। पूछ रहे हैं कि भाई आंधी आई

यहाँ आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो खूब रोज आजकल शाम को आंधी आई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ भी आंधी आई है, और आंधी आई है तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिए, चीज़ों को बांध के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते किसी और की छत पे चली जाए या कोई और उड़ के चला आए, है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का, उम्मीदें ना उड़ें इस आंधी में, कहने का मतलब ये है। और अनंत राम मिश्रा जी ने गाने की फरमाइश, गाने का जो तारीफ की है, बड़ा ही अच्छा लगा। सुप्रभात लिख रहे हैं, बहुत ही कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और अनंत राम मिश्रा, माया प्रकाश, राजेश पाल, अडौरी जनपद हरदोई से इन्होंने ईमेल किया है। घनश्याम जी ने भी ईमेल किया है, लिखते हैं कि रतन भैया कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इनको, और लिखते हैं कि मेरे कमरों की दीवारें मेरे साथ साथ वे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मतलब ये तो खुश हुए ही हैं और इनके कमरे भी बहुत खुश हो गए। शिवलोधी जी ने लिखा है, प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की है, और हालांकि इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी लाइन उन्होंने समर्पित की है। जावेद अख्तर साहब का मैसेज आया है, तारीफ की है प्रोग्राम की। सुरेंद्र सिंह ने लिखा है कि निस्वार्थ भाव से की गई आत्मा को शांति और संतोष देती है, यही सच्ची सेवा है। उच्च न्यायालय लखनऊ निवासी तेलीवारी रामनगर बाराबंकी, ये अधिवक्ता है सुरेंद्र सिंह जी। और घनश्याम विजयपाल, इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक मैसेज किया है, हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। और ब्रजेश सिंह, दीपू इटहुआ कैसरगंज बराई से इन्होंने ईमेल किया है, इनका मैं मेल पढ़ता हूँ, कि लिखते हैं कि गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं, और ये गन्ने गुड़ाई पुष्पांजलि जब हो रही थी तब से ये कर रहे हैं, सदाबहार गीत भी सुन रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी सी फोटो भेजी है। मैं आपको कैसे इस फोटो को एक्सप्लेन करूं कि ये गन्ने का खेत है और पानी चला हुआ, मतलब पानी से पूरा भींगा हुआ है, और वो सौंधी खुशबू जो आती है ना गन्ने के खेत से, मिट्टी की खुशबू, ये बेहतरीन। इन्होंने सुबह की फोटो भेजी है, एकदम ताज़ा ताज़ा। मुझे लग रहा है मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। और एम के राज, राजेश वर्मा, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

और जैसा कि हम बातें कर रहे थे इंतजार के बारे में, इंतजार के अंतिम वक्त के बाद शुरू होता है उसी से एक तरफा बेपनाह मोहब्बत, और फिर आप इस बात में उलझ जाएंगे कि न जाने उस वक्त में ऐसा क्या था जो आप चाह कर भी वापस नहीं पा सकते हैं, और फिर ना ही किसी के लिए वो चाहत बचती है और ना ही इंतजार।

0: 7:52 हो गया है और मेरा नाम शिवम है और आप सुन रहे थे प्रोग्राम सदाबहार गीत, जिसमें आपने एक से बढ़ के एक गाने सुने। उम्मीद है कि मुझे ये प्रोग्राम अच्छा किया है मैंने और आपको ये पसंद आया होगा। वैसे आयुषी आई हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ का पिटारा लेकर, ढेर सारी बातें लेकर, ढेर सारे किस्से और कहानियां लेकर। खुद भी आई हैं कि रह गई रास्ते में?
1: नहीं नहीं, एकदम टाइम हुआ और दौड़ी चली आई।
0: हाँ बिल्कुल, फुल तैयारी के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ को एनर्जी और पूरा बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। तो 7:53 पे ये बेहतरीन सा गाना दे दे आयुषी, उसके बाद विदा लेते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ में आते हैं चाय पी के।
1: बिल्कुल, बिना देरी के।
0: बिना देरी के, जी हाँ। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
3: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
1: के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 20 विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पाद

0: भक्तों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
1: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
6: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।

0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तो 8:16 हो, जैसा कि वादा रहा कि हम वक्त के साथ चलते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं आपके, तो हम लेकर आ गए आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसे आप और हम सभी कहते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और हमारे साथ में जो बैठी हैं उनका तारुफ कुछ इस तरीके से हम कराएंगे कि अल्फाबेट में आता है पहले ए बी और सी कि अल्फाबेट में आता है पहले ए बी सी और हमारे साथ में बगले में बैठी है आयुषी।
1: वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। तो भाई मैं भी थैंक यू बड़े अच्छे अंदाज में कहना चाहती हूँ
0: इरशाद।
1: इस जुमले को सुनकर खुश हुए हम, आइए करते हैं जीएमएल शुरू। शिवम
0: वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मतलब देखिए दोनों तरफ से तैयारी तगड़ी है और भाई आपकी क्या तैयारी है आज की वो भी जानेंगे हम और आज के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। क्यों आयुषी?
1: बिल्कुल। और भाई जैसे कि शिवम बता रहे हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का पिटारा लेकर आ गए हैं आयुषी और शिवम आपके साथ 100.7 एफएम पर। शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये अमेजिंग सा सफर।
0: तो चलिए एक बेहतरीन सा गाना सुनवाइए फिर लौट के आते हैं ढेर सारी बातों के साथ।

0: और 8:24 हो गया है, दो दोस्त आपके साथ है गुड मॉर्निंग लखनऊ में, शिवम और आयुषी। और वो कहते हैं ना कि अब जब सुबह होती है और को बढ़िया से, मतलब एक चाय, बढ़िया सी एक कॉफी, बढ़िया सी बातें, बढ़िया से गाने और बढ़िया से थॉट्स।
1: वाह क्या बात है, आपने ये कहकर चाय की तलब लगवा दी।
0: बिल्कुल, तो जब थॉट की बात आती है तो हमारे यहाँ शुरू होता है
2: आज का मॉर्निंग मंत्र। मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
0: जी हाँ, तो आज का मॉर्निंग मंत्रा हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आयुषी, आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है?
1: देखिए, ये आज का जो मॉर्निंग

0: है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम ना रिग्रेट करते रहते हैं कि अरे कल बीत गया, या अब तक हम ऐसा कर पाए या कर लेते तो कैसा होता। खैर, कहते हैं हर एक दिन एक नया पन्ना है। अब आपके आगे के जीवन की कहानी कैसी होगी, ये आप रोज नए तरीके से नई कहानी लिखकर तय कर सकते हैं।
1: मतलब आज का मॉर्निंग मंत्रा है कि हर दिन एक नया पन्ना है, आपको आगे का जीवन की कहानी कैसी होगी ये रोज आपको तय करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ही हैं अपने कहानी के लेखक। तो आप अपनी कहानी में किस तरीके से रंग भरते हैं, किस तरीके से कहानियों को डिजाइन करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना।
0: बिल्कुल, और जीवन बहुत लंबा है। मान लीजिए कोई काम है ऐसा जो आप अभी तक नहीं शुरू कर पाए, तो बस नया पन्ना आज शुरू करिए आज से।
1: बिल्कुल, नई एनर्जी नई सोच के साथ दिन की शुरुआत करिए गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। और गुड मॉर्निंग लखनऊ में दो दोस्त जिनका नाम है शिवम
0: और आयुषी आपके साथ हैं।

0: और देखिए ना 8:33 हो रहे हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ पे आपके दो दोस्त शिवम और आयुषी आपके साथ हैं और बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं आपके साथ, पर फिलहाल
1: आज अब क्या वक्त हो रहा है ये भी बताते चले। मुद्दा आज का, जी हाँ 8:33 पर हम आपसे मुद्दा शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आयुषी मैंने जो कल आपको एक लिंक शेयर किया था कि आप इसे अपने ग्रुप में भेज दीजिए, क्या आपने उसे शेयर किया था?
0: सही बताऊं तो मौका नहीं मिला कि मैं उसकी फैक्ट्स एक बार जांच लूं, इसलिए नहीं किया। पर आपके जो मैसेजेस होते हैं मैं वैसे सीरियसली लेती हूं, लेकिन भाई अपनी जिम्मेदारी भी मैं निभाती हूं कि मैं एक बार जरूर देख लूं कि वो है क्या।
1: बिल्कुल
0: है ना। और शिवम, जैसे कि आजकल मैं पढ़ रही थी और शायद कल ही मैंने पढ़ा कि ऐसे छोटे छोटे जो हमारे पास किसी ना किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो बड़ी फनी भी लगती है, कभी बड़ा मन करता है, कभी इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगती है, या वो इतनी ही बेसिक चीज़ों कि भाई इस बीमारी में ये खाएं या इस बीमारी में ये ना खाएं, लेकिन उसको फॉरवर्ड करने से मैं देख रही थी कि मैंने सुना कहीं कि मान लीजिए आपने तो भेज दिया कि भाई इस बीमारी में नमक वाली चीज खा लेनी चाहिए, पर आपको उन जिनको भी आप भेज रहे हैं उन शख्स की बाकी हिस्ट्री नहीं पता, तो अगर उनको वो चीज नुकसान कर जाए तो जिम्मेदारी तो आपकी आ जाएगी, फिर आप कैसे सो पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आपने जो ये बात बोली कि फैक्ट चेक एक नाम लिया फैक्ट चेक करने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी लगी। तो ये बताइए कि अगर हम फैक्ट चेक करते हैं तो इससे हमें फायदा क्या होता है?
0: भाई देखिए फायदे तो बहुत हैं, आप बन जाते हैं एक जिम्मेदार नागरिक और आप वही आगे पहुंचाते हैं जो जरूरी है। छन्नी का काम करते हैं, चाय की बात कर रहे थे आप।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी बेस पे आधारित है कि अगर आपके पास कोई मैसेज फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। जैसे कि आयुषी ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस खबर की तह तक पहुंचकर उस खबर के बारे में जानकर ही अपने संबंध

0: को अपने दोस्तों तक वो मैसेज या वो लिंक फॉरवर्ड किया है। तो आज का मुद्दा क्या कहता है आयुषी?
1: देखिए, मुद्दा बस सीधा सा है कि क्या आप सोशल मीडिया पर मिली हर खबर पर फट से भरोसा कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, या पहले उसकी सच्चाई जांचते हैं?
0: मतलब कि अगर आपको कोई फटाफट मैसेज किए जा रहा है और आप भी फटाफट ग्रुपों में शेयर किए जा रहे हैं, तो क्या ये लापरवाही है या बहुत जल्दीबाजी है? तो आपको यहाँ एक मिनट के लिए रुकना है और इस बात पे सोचना है कि क्या हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सही है, क्या है क्या नहीं है, ये सब सारी जानकारी आपको तय करनी चाहिए। और ये मुद्दा आज क्यों रखा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप मुद्दा कहाँ शेयर करेंगे? fmakashwani@gmail.com पर।
1: बिल्कुल, और हम कर रहे हैं बेसब्री से आपका इंतजार। और याद रखें कि जब आप fmakashwani@gmail.com पर भेज रहे तो वी है, डब्ल्यू नहीं है, वी है।
0: जी हाँ, तो इस बात का खास ध्यान रखिए, ईमेल करिए और बताइए अपने विचार, दीजिए अपने सुझाव, लेकिन साथ में सुनिए ये बेहतरीन सा गाना सिर्फ आपके लिए।

0: भाई देखिए 8:41 पर आपके दो दोस्त शिवम और आयुषी गुड मॉर्निंग लखनऊ पर दे रहे हैं आपका साथ और हम सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन गाने। और भाई जब हम कहते हैं कि ये इंफोटेनमेंट प्रोग्राम है तो अगर म्यूजिक बजा तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी तो होंगी।
1: बिल्कुल, और जैसा कि आपने गाना बताया कि भाई मिलने की तमन्ना है तभी तो हम यहाँ भर भर के इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि भाई आज चलेंगे हम ये वाली सूचना देंगे, आज चलेंगे तो हम ये वाली सूचना देंगे और क्या क्या बातें बताएंगे और क्या क्या बातें आपसे लेके घर जाएंगे।
0: अरे वाह क्या बात है। तो अभी हम क्या बताने जा रहे हैं?
1: अभी हम ये बताने वाले हैं कि लखनऊ शहर में क्या कुछ प्रयोजन होने वाला है, कहां क्या प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में सूचना दे दे ताकि आप अभी से प्रिपेयर्ड हो जाए कि भाई हमें यहाँ जाना है तो हम कितने बजे घर से निकले। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि श्री सुखमणि साहिब पाठों का श्रृंखला गुरुद्वारा नाका इंडोला सुबह 5 बजे जो हो रहा है वो अभी भी स्टार्ट है।
0: ओके, और इसी के साथ भाई अनादि संस्था की ओर से नाटक एक बच्चे की डायरी का भी मंचन होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कब 6:30 PM, तो वहां भी आप जा सकते हैं।
1: जी हाँ, और दूसरा ये है कि आप श्री सुखमणि साहिब पाठों का श्रृंखला गुरुद्वारा आलमबाग 4:00 PM अटेंड कर सकते हैं।
0: और भाई उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन का अधिवेशन भी है सेतु भवन मालवीय मार्ग 12:00 PM।
1: जी हाँ, तो इन सारे प्रोग्रामों में आप शिरकत कर सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये भी बताएं आयुषि, कल का जो मौसम आपने अगर देखा होगा कि इतनी कड़क धूप होने के बाद अचानक से अंधेरा और धूल भरी आंधी,
0: ये बात तो है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल।
1: बिल्कुल, तो हमें ऐसे मौसम में अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर आंधी आए तो आप कोशिश करिए कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं, किसी पेड़ का सहारा बिल्कुल भी ना लें।
0: और मैं ये बात भी जरूर कहूंगी कि जब तक कि बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, और ये एक लड़ाई होती है जिसमें आपको खुद को बचाना है, हो सकता है कहीं 5 मिनट की देरी करनी पड़े तो करिए, जान संभालिए, आप बहुत बारिश आंधी में ड्राइव मत करिए।
1: बिल्कुल सही कहा, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और साथ में इस गर्मी आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो पानी पी के निकलिए, तरल पदार्थ आप साथ में लेके जाइए, खाने पे ध्यान रखिए। मेरा कहने मतलब ये है आयुषि कि आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन सैलेड ज्यादा खाइए और पानी ज्यादा पीजिए।
0: ये बताइए पहले आपने क्या किया, ये फॉलो किया आपने?
1: बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ। हाँ, बस मेरी कमी यही हो जाती है कि मैं इन सब चीजों के अलावा चाय जोड़ लेता हूँ।
0: तो मतलब आप जो डब्बा लाए साथ में वो खोलेंगे तो उसमें समोसा निकलेगा या खीरे निकलेंगे?
1: अब ये तो देखने में पता चलेगा ये घर वालों ने क्या दिया है, ये तो सरप्राइज रहता है।
0: अच्छा वैसे शिवम, इसी के साथ अगर हम ये बता दें कि भाई CBSE ने 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है, और जितने भी हमारे छात्र हैं जिन्होंने ये रिजल्ट देखा और सफल हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से। खुश रहिए और एक दिन अपने लिए जरूर निकाल के, टाइम निकाल के अपने लिए थोड़ा सा इंजॉय जरूर करिए।
0: देखिए इसी के साथ बस मैं एक चीज और कहूंगी,
1: क्या?
0: कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे वो अंक नहीं आए, वो मार्क्स नहीं आए जैसी मैंने सोचा था, तो आज का मंत्रा जो हमने बोला था ना वो याद रखिएगा कि हर दिन एक नया पन्ना है और आपके आगे के जीवन की कहानी कैसी होगी ये आप रोज नए तरीके से तय कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हार नहीं माननी है,
1: हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है, और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ फिर से शुरुआत करनी है। और ध्यान देना है कि हमें एक नई शुरुआत नए तरीके से नए अंदाज में करना है। और वैसे हम तो साथ में आपके हैं ही 8:45 पर, यह अगला गाना सिर्फ आपके लिए।

0: जी हाँ भाई, दुनिया से डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। कहीं भी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में इतने बेहतर होते हैं कि डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आयुषी?
1: बिल्कुल सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं। आज सुबह से हम यही कह रहे हैं, मंत्रा भी यही है और भाई जिंदगी का एक फलसफा भी यही है।
0: जी हाँ, तो आज एक और कुछ खास होने वाला है लखनऊ शहर में, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए।
1: देखिए, एक इम्पोर्टेंट सूचना है, अगर कोई निवेश से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए तो ई ऑक्शन की बात हम कर रहे हैं। गोमती नगर विस्तार बसंत कुंज योजना में आवासीय भूखंड फिर ऑनलाइन बोली लगाकर खरीद सकेंगे। एलडीए ने दोनों योजनाओं के 149 भूखंडों को ई ऑक्शन में लगाया है और 25 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के इन भूखंडों की नीलामी कराने के लिए 28 मई तक के लिए ई ऑक्शन पोर्टल खोल दिया गया है।
0: जी हाँ, और इच्छुक आवेदन जो आवेदक है वो संपत्ति के आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी जमा कराकर ई ऑक्शन में प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: तो भाई, अगर आप अगेन इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ देख रहे हैं तो आप जरूर इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भाई,
0: जी इसके अलावा ये है कि आज से झांसी व आगरा इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें लखनऊ आने वाली हैं। विस्तृत जानकारी की बात करें तो वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी, लखनऊ और आगरा लखनऊ इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें गुरुवार से लखनऊ तक आएंगी। शताब्दी एक्सप्रेस मुरादाबाद की जगह अपने निर्धारित रूट कानपुर के रास्ते ही लखनऊ पहुंचेगी। रेलवे ने कानपुर गंगा नदी पुल पर गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया है, इसलिए रेलवे ने 2 अप्रैल 13 मई से तक कार्य के चलते सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक कानपुर से आने वाली सभी गाड़ियां को ब्लॉक किया था, जो अब खुल चुका है। तो अब यात्री बिल्कुल छुक ट्रेन से आ सकते हैं।
1: और भाई देखिए, गर्मी की छुट्टियां आ रही है तो आपके लिए स्पेशल ट्रेन्स भी लॉन्च हो गई हैं, आप अपनी छुट्टियां अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो टिमटिमा रहे हैं ईमेल, इनका क्या ख्याल है पढ़ने का?
1: भाई मैं कहती हूँ जरूर पढ़ा जाए, क्योंकि हमने आज बड़ा प्यारा सा मुद्दा उठाया है। प्यारा क्या, जरूरी भी है हमारे जीवन शैली के लिए। और मुद्दा बस फटाफट एक बार और बोल देती हूँ कि क्या आप सोशल मीडिया पर मिली हर खबर पर भरोसा कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, या पहले उसकी सच्चाई जांचते हैं?
0: तो शुरू करते हैं पहला मेल प्यारे प्यारे लोगों का। योगेंद्र वर्मा जी ने लिखा है, नमस्ते सुप्रभात, हम सभी देश की खबरें पढ़ते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, आजकल चक्रवाती तूफानों का मौसम है। कल रात आए तूफान ने काफी जानमाल का नुकसान हुआ है, इसलिए इन्होंने अनुरोध किया है कि भाई एहतियात जरूर बरते। योगेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से, बहुत ही प्यारा सा ईमेल, पर मुद्दे से जरूर लिख के भेजेंगे, हम इंतजार करेंगे।
1: देखिए, हमारे पास एक मेल आया जिसमें मुद्दे पे कुछ लिखा है। मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी, हम लोगों को गुड मॉर्निंग कहा है और कहे हैं, लिंक की चमक में छपा है अंधेरा, जरा संभल के चलना, एक क्लिक की भूल पड़ सकती है जिंदगी भर महंगा।
0: क्या बात है।
1: अच्छा, कह रहे हैं कि कार्यक्रम पसंद करते हैं और आजकल किसी भी लिंक या मैसेज को बिना जांच परख के आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर फ्री में जी तो आईफोन या सस्ती दवाइयां, वजन घटाने की जादुई चाय, 1 रुपए में किराना या मुफ्त गिफ्ट हैम्पर वाले लिंक। इन लिंक्स पर क्लिक करते ही नकली दवाई से जान जा सकती है, मिलावटी खाने पीने की चीज से तबीयत बिगड़ सकती है और बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है। तो कह रहे

0: मेरा नियम सीधा है, मेरे पास कोई भी लिंक कैसा भी आए, चाहे वो दवाई का हो, खाने का हो, इनाम का हो, मैं डिलीट कर देता हूँ, ना खोलता हूँ ना भेजता हूँ। तो अपनी सेहत और मेहनत की कमाई दोनों को बचाइए, 2 सेकंड की लालच जिंदगी भर का नुकसान करा सकती है।
1: जी हाँ, ये बेहतरीन सा मैसेज आप तक पहुंचा है और ऐसे ही बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं जो हम आप तक भेजेंगे। लेकिन अब देखिए ना आयुषी, बात करते हुए, लोगों को बताते हुए, खबरों के साथ अपडेट करते हुए, अब हो गया है ये समय कि हम अपने फर्स्ट हाफ से लेंगे अनुमति।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल न्यूज ब्रेक के उस पार और छोटे से ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे।
1: जी हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं पे हैं, बस एक गाना सुनिए और न्यूज ब्रेक के बाद फिर से धमाका मचाने के लिए आते हैं।

प्रदेश के कई जिलों में कल आए तेज आंधी तूफान बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से जानमाल की भारी तबाही होने की खबर आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। अमर उजाला ने प्रदेश में आंधी तूफान से 96 लोगों की मौत शीर्षक से लिखा है कि आंधी तूफान की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंदुस्तान लिखता है कि प्रदेश में कल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आई, सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए। पूर्वांचल में 32 और प्रयागराज मंडल में 19 मौतों के साथ सबसे

कहना है कि प्रदेश में कल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आई, सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए। पूर्वांचल में 32 और प्रयागराज मंडल में 19 मौतों के साथ सबसे अधिक तबाही हुई है। गोरखपुर में 5, भदोही में 15, मिर्जापुर में 9, चंदौली में 2 और सोनभद्र में 1 की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पीड़ितों को अगले 24 घंटों में मुआवजा देने की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में पहल शुरू किए जाने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। काफिला कल्चर पर लग गया पावर ब्रेक, शीर्षक से नवभारत टाइम्स ने लिखा, प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की सलाह पर खुद अमल किया और अपने काफिले की गाड़ियों को 50% तक घटाने को कहा है। अमर उजाला ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले से 50% वाहनों की कटौती कर दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों ने भी अपने सुरक्षा और सरकारी काफिले को छोटा कर दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बुधवार सुबह अपने घर पर मौत होने की खबर भी अखबारों ने सर्व प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमृत विचार और नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बे एम्बोलिज्म यानी फेफड़े में रक्त के थक्के जमने के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है। हिंदुस्तान ने पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रतीक का अंतिम संस्कार आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा सोना चांदी व प्लैटिनम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने को दैनिक जागरण ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबार ने लिखा है, सोना व चांदी के आयात पर अब 6% की जगह 15% शुल्क लगेगा। इससे सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाएगा। बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 85.2% विद्यार्थियों के सफल होने की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। अमर उजाला, अमृत विचार, हिंदुस्तान ने लिखा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार उत्तीर्ण प्रतिशत में 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा नीट यूजी में कथित पर्चा लीक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की, अनियमित वेतन भुगतान मामले में आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने, 46 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने और डेयरी ब्रांड अमूल और मदर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक की भारी इजाफा किए जाने की खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 9:05 और आपके दो दोस्त वादे के मुताबिक हाजिर है फिर से गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ में। शिवम और आयुषी हैं आपके साथ 100.7 FM पर।
1: जी हाँ, और देखिए ना, जब बातें होने लगती है ना तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है आयुषी कि मतलब भाई साहब कितनी अच्छी बातें मतलब लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, या हम भी अनजाने अनजाने में बोल जाते हैं अपने अनुभव के आधार पे।
0: वैसे पता है, कहते हैं कि जिस तरह से खाना खाकर पेट भरता है वैसे ही अच्छी बातों से आत्मा तृप्त हो जाती है।
1: ये बात तो सही कही है, बिल्कुल सही कही इस बात से। अच्छा, मैं समझ सकता
0: हूँ। और अच्छा म्यूजिक सुन लो तो फिर
1: वो बिल्कुल एकदम तड़का हो जाता है, ऐसा लगता है दाल में दाल फ्राई हो गई।
0: वैसे हर मूड के हिसाब से एक म्यूजिक बनाए ना।
1: हाँ, ये भी बात है।
0: और अगर आप कितने भी दुखी हो तो भी आपका मन करता है यार कुछ ऐसा ही सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ, दिल को दिल के तार मिल जाएंगे, दिल से दिल के तार।
1: या तो तार मिल ही जाएंगे या तो तार जुड़ ही जाएंगे।
0: बिल्कुल। तो खैर इस पे आएंगे, अभी हम बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने के मूड में भी आएंगे और एक जबरदस्त तड़के वाली शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इसके पहले बस याद दिला दूं कि आपके झमाझम मेल्स आ रहे हैं और अभी आगे प्रोग्राम में आपके मेल्स पढ़ेंगे। तब तक अगर आपने अभी तक मेल नहीं भेजा है और अभी ज्वाइन किया है तो बस बता दूं, क्या आप सोशल मीडिया पर मिली हर खबर पर भरोसा कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं या पहले इसकी सच्चाई जांचते हैं? यही है मुद्दा आज का।
1: और आपको बताना है fmakashwani@gmail.com पर लिखकर, तो आप जल्दी से ईमेल करिए और हम जल्दी से गाना सुनवाते हैं आपको।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: 9:12 और देखिए गुड मॉर्निंग लखनऊ पे जो ईमेल्स की बौछार हो रही है, अब हम क्यों रुकें और क्यों रुकें इस सिलसिले को, और क्या कहते हैं शिवम, पढ़ लिया जाए?
1: बिल्कुल शुरू कर लिया जाए पढ़ना।
0: तो किसका ले रहे हैं हम पहला?
1: पहला मेल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है राधे श्याम जी का। ये लिखते हैं माशा राधे श्याम शाह काशगंज से, ये लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आकाशवाणी पर, आकाशवाणी की पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। और शिवम जी, आयुषी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग सिलेक्शन इनको बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ये आगे लिखते हैं भाई गार्डन गार्डन आज तो हुआ है दिल गाना सुनकर।
0: अरे वाह, आपको अच्छा लगा तो बस सफल हो गई मेहनत हमारी।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: देखिए मदन गुप्ता जी ने क्या लिखा है, कह रहे आज आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर आई खबरों पर तुरंत विश्वास कर लेते और बिना जाने समझे आगे पोस्ट कर देते। उन्हें लगता है कि सबसे पहले मैं पोस्ट करूं तो उन्हें व्यू मिलेंगे, लेकिन कभी कभी उल्टा पड़ जाता है ये। और इस संबंध में नया कानून आ गया है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। सभी से अनुरोध है कि बिना सोचे समझे ना पोस्ट करें कुछ भी। मदन गुप्ता गोमती नगर लखनऊ से लिख रहे हैं।
1: और वारिस अली खान जी लिखते हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से कि आवाज की दुनिया के दोस्तों को नखान परिवार का नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि जब वसूल पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा आना नजर जरूरी है। आगे लिखते हैं कि पिछले प्रोग्राम की तारीफ की है, कुछ गाने इन्होंने ऐसे सुने हैं जो इन्होंने पहली बार सुने हैं।
0: क्या बात है, अरे वाह। अच्छा खैर, बाबू अंसारी जी का भी मेल हम पढ़ रहे हैं। और देवकाली अहमदपुर बाजार 12 बंकी से लिख रहे हैं कि मैं किसी भी सोशल मीडिया पर खबर पढ़कर भरोसा करता ही नहीं हूँ, हर चीज कंफर्म कर लेता हूँ और मोबाइल में भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करता हूँ, पूरी तरह से जांच करता हूँ पहले। क्या बात है, बहुत बढ़िया,
1: सही बात है, बहुत अच्छी बात।
0: भाई देखिए कुलदीप जी का मेल दिख गया है मुझे, नागला विशुन इटावा से कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और एग्रीकल्चर में सेल्स में फील्ड्स का काम करते हैं और कार चलाते हैं और काम में मन लगा रहता है, बोर नहीं होता, ये प्यारी बात कही। हालांकि मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन चलिए कोई अपने काम को पसंद करता है ना शिवमी, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है।
1: सही कहा। सुल्तान रजा साहब ने ईमेल किया है, हेलो प्यारी मेम, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा साहब, और आपके प्रोग्राम की इन्होंने बहुत तारीफ की है। और इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के हाथ में जब मोबाइल आया तो ना किसी से बोलता है, ना किसी को देखता है और ना ही किसी के सुनता है, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल चलाता है। और लिखते हैं कुछ दोस्तों के नाम हैं इनके, रजा अफजल, रजा मोनीश रजा, सादिक रजा और मम्मी पापा।

0: छोटा सा अमन इन सभी लोगों के साथ ये ईमेल हम तक पहुंचाए हैं।
1: क्या बात है। देखिए इसी के साथ ब्रजेश सिंह, दीपू टहुआ, कैसरगंज बहराइच जी क्या लिख रहे हैं, हम दोनों को गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं और कह रहे हैं हम कोई भी मैसेज आता है बिना इसकी पुष्टि किए फॉरवर्ड नहीं करते। कोई लिंक आती है, लिंक पर क्लिक करते ही बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, कभी क्लिक नहीं करता हूं। और मैसेज अफवाह वाले आते हैं, जितना फॉरवर्ड करोगे उतनी अफवाहें फैलेंगी, धोखाधड़ी फ्रॉड से बचना। तुम्हारा एफएम रेनबो हमेशा सभी श्रोताओं को जागरूक करता रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा। राजेश वर्मा लिखते हैं, आयुषी जी एवं शिवम जी आप दोनों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग में स्वागत है। मनमोहक प्रस्तुति के साथ आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओ थैंक यू सो मच। और देखिए बहुत सारे लाल लाल लाल लाल फूल बनाकर नीलू यादव जी ने भेज दिया हमें, बंगला बाजार लखनऊ से आशियाना से, और इनकी दो बेटियां हैं अनुराधा श्रेया, उनका नाम लिखा है और हमें गुड मॉर्निंग कह रही है सोशल मीडिया पर जब तक सच ना हो कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं, चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है। ओके, और समाज से कटकर इंसान सोशल मीडिया हुआ जा रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया किसी वरदान से कम नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आयुषी, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कभी कभी जो हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं हम उस चक्कर में ये नहीं देखते हैं कि कितना टाइम हम सिर्फ बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते हुए या किसी वीडियो को देखते हुए या कोई मैसेज पढ़ते हुए हम बिता देते हैं, और शायद इसी की वजह से हम रात में देर तक सोते हैं और इसकी वजह से ही बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। फिर वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराजगी, या एक होता है ना कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दूसरों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी हो जाता है तब कि जब आप अपने घर में हो तो फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि आप जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, दूसरों के लिए भी टाइम निकालें, फैमिली के लिए टाइम निकालें, और सबसे बात है अपनी हड़बड़ी को 2 सेकंड कम कर दें, यानी अपने लिए टाइम निकालें। तो जो काम आप हड़बड़ी में कर देते हैं ना, फटाफट जल्दबाजी में क्लिक कर दिया, यही आप 2 सेकंड की सांस ले लेंगे ना तो शायद आप नहीं करेंगे।
0: तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हम तक और आप तक पहुंचाई जा रही है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है आयुषी कि जब जानकारी किसी को दी जाती है तो हम ये अपेक्षा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप अपने सगे संबंधियों और दोस्तों तक पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आप जो है जब चाहें और जब चाहें, आपके हाथ में कमान है, आपका फोन, आपका दोस्त आपके साथ है, तो उसको अपने बेहतरी के लिए यूज करें, उसे अपना दुश्मन ना बनाएं।

0: जी हाँ, 9:24 हो गए हैं और हम गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के साथ। ढेर सारी बातें हो रही हैं, ईमेल भी आ गए हैं और उसके साथ साथ हम अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे ट्रैफिक अपडेट की और मौसम विभाग की। फिलहाल आयुषी कौन है हमारे साथ?
1: देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी और पूछते हैं कि कैसा है ट्रैफिक का हाल लखनऊ में। सर बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं। चूंकि पीक आवर्स का समय है, ऐसे में जो थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट हमारा होता है, ये लखनऊ अयोध्या मार्ग का जो पॉलिटेक्निक से कमता तिराहा वाला थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रहता है, परंतु यहाँ हमारी नागरिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहकर सुगम यातायात संचालन करा रही है। आज जो है 10:30 लगभग ताज के पास में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान हमारा ताज अंडरपास से समता मूलक वाला रास्ता

0: थोड़ी देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में श्रोताओं से अनुरोध है कि आप अगर ताज अंडरपास का प्रयोग करना चाह रहे थे तो आप अम्बेडकर उद्यान चौराहा से होते हुए डिगडिगा हो करके आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं, और कहीं अन्य जगह कोई विशेष डायवर्जन नहीं है सर। यदि आपके कहीं डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं को अवगत कराएंगे।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, मैं ये भी कहूँगा कि सर, गर्मी जाड़ा बरसात कभी भी हो, धूप या लू, आपकी और आपकी पूरी टीम सेवा में रहती है हमारे शहर के लोगों के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि लगातार हम जो है आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंच पा रहे हैं, और श्रोताओं से हम अपना लखनऊ पुलिस की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देखिए हमें मिल रहे हैं ट्रैफिक के अपडेट्स, और कहां से, एकदम सीधे लाइव ऑन स्पॉट से, और इसका बस पालन करना आपकी जिम्मेदारी है और बाकी आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी हमारी है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो आप एक सजग नागरिक तो कहलाएंगे, जिम्मेदारी भी आपकी ये बनती है। क्योंकि 9:26 हो गया है आयुषी, बहुत से लोग ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो जब रास्ता बिल्कुल स्मूथ मिलता है ना तो ऑफिस पे चलने वाली उंगलियां भी बिल्कुल स्मूथ चलती हैं।
2: लेकिन भाई अब अगर आप बैठ चुके हैं तो 2-4 चीजें याद दिलाते, अपना वो टिफिन का डब्बा मत भूलिएगा, पानी की बॉटल मत भूलिएगा, लेकिन हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा।
1: जी हाँ, तो ये सब रही तैयारी हमारे ट्रैफिक अपडेट की जो विकास सिंह जी दे रहे थे। अब बाकी आगे की जिम्मेदारी आपकी है, और फिलहाल चप्पा चप्पा वाला गाना सुन लेते हैं भाई साहब।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me।
3: आ गए आप?
4: जी आ गया।
3: जन्मदिन मुबारक हो आपको।
4: ओह हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।

0: happy, happy birthday to everybody listening to 100.7 FM.
1: Rainbow Dhadkan, Lucknow ki. Aur Ayushi, जन्मदिन के बारे में मुझे बहुत ही excitement होती है कि जन्मदिन के दिन वो जो एक मोमबत्ती आपको याद है जो कितना भी फूक मारी है बुझती नहीं थी.
0: और पता है गलती से मान लीजिए जल जाती थी तो पार्टी में एक छोटा बच्चा होता था पड़ोसी का जो आकर तुरंत बुझा देता था.
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा. और एक खास बात ये भी होती थी कि वो अभी फिलहाल ये भी हो रही है कि अभी ना लोग जो है बड़ा इंतजार करते हैं भाई बर्थडे में देखें मोमबत्ती कितनी जलाई जाती है एज को लेके. तो अब क्या करते हैं लोग, पहले तो अभी भी आती है वो नंबरिंग वाली, भाई जितने साल के हुए उतने साल की नंबर वाली मोमबत्ती जो है जलती थी. अभी क्या है, कोई मोमबत्ती जलाते ही नहीं है, एक मोमबत्ती जला लेता है चाहे कितनी भी एज हो.
0: और बड़ी सारी मैजिकल मोमबत्ती आ गई, मतलब वो अपने आप में एक मशीन है, उनको चलाना सीखना अपने आप में एक उपलब्धि है. आप समझते हैं अच्छा आप मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं मोमबत्ती जला लूं.
1: बिल्कुल. और मैं ये सोचता हूँ कि मतलब लोग देखिए कितनी तरीके से, कितने नए नए तरीके से और नए नए अंदाज में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना.
0: वैसे पता है मैं कई बार ना ऐसे यादों में चली जाती हूँ, मुझे वो बचपन की वो बर्थडे पार्टी के जो इन्विटेशन होते थे ना, सब सादे से एक कागज पे लिखा, बस आ जाना, हम चले गए और घर की एक माहौल में प्यारा सा केक कट गया, छोटी सी पार्टी हो गई. अब वो देसी पन, वो पुराने दिन बड़े याद आते हैं.
1: बिल्कुल याद आएंगे. लेकिन हम आपको भी याद दिला दें कि आज अगर आपका जन्मदिन है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत भर के शुभकामनाएं
0: भाई. और इसी के साथ हम कहेंगे अगर आपकी एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशंस, कुछ अचीवमेंट है तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशंस, कोई एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट.
1: जी हाँ, तो आप अपना जन्मदिन किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी बताते चले आयुषी.
0: देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना जरूरी है और हर किसी को भारत में जानना जरूरी है क्योंकि ये बात हमारे संविधान से जुड़ी है, इतिहास से जुड़ी है. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का जन्मदिन हुआ था 14 मई को 1883 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था. और भारत के प्रसिद्ध न्यायविद हैं, संविधान विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं, प्रख्यात और एक

0: प्रख्यात वकील भी रहे हैं और भारत संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रमुख सदस्यों में से एक थे।
1: जी हाँ, और आपको बताते चले कि आज ही मृणाल सेन का जन्म हुआ। 14 मई 1923 को फरीदपुर में हुआ था। वे समानांतर सिनेमा और भारतीय सिनेमा के प्रमुख फिल्मकारों में गिने जाते हैं। उनकी फिल्में समाज, राजनीति और आम आदमी के संघर्ष को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है उनकी फिल्मों में।
0: बिल्कुल, और उनकी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला, कई सारे बड़े सम्मान मिले। हम उनके योगदान को याद रखते हैं भाई, भारतीय सिनेमा में योगदान रहा है। और भारतीय सिनेमा की बात करें तो भाई आज मनुषी चिल्लर का भी जन्मदिन है, और 14 मई 1997 को रोहतक हरियाणा में उनका जन्म हुआ और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और 17 साल बाद किसी भारतीय ने ये प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया था जब उन्होंने ये खिताब जीता।
1: जी हाँ, और ये बहुत बड़ी बात होती है।
0: और इसी के साथ भाई और आगे बताते चलिए भाई।
1: जी, आज जो जिनका जन्मदिन है वो मुझे लगता है कि सभी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर आपके फोन में जरूर होंगे। और इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ, ये 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनका जन्म हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में से एक मेटा यानी फेसबुक के संस्थापक हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान फेसबुक की शुरुआत की थी, मतलब पढ़ते टाइम ही इन्होंने अर्निंग शुरू कर ली थी।
0: और इसके साथ
1: ये है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान का जन्म 14 मई 1987 को मुंबई में हुआ। उन्होंने 2010 में फिल्म वीर में सलमान खान के साथ अपने करियर की शुरुआत की। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा और अभी भी देखते होंगे गाना, क्योंकि बड़ा ही ट्रेंड में है ये वाला इनका। इसके बाद वो हाउसफुल 2 और हिट स्टोरी में आई जैसे बहुत ही शानदार फिल्में थी। पंजाबी सिनेमा में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उन्हें फिल्म जट जेम्स बॉन्ड के लिए पंजाबी फिल्म अवार्ड में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था।
0: भाई ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, लेकिन एक और नाम है जिनके बारे में बात करने से ही तन मन में एक लहर जाग उठती है। भी हम ही अपने आप में फील करते हैं कि बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वॉरियर्स रहे, ऐसे ऐसे वीर रहे जिन्होंने हमारे देश के लिए भाई अपने प्राण भी जब न्यौछावर करने का वक्त आया तो बिल्कुल समय नहीं लगाया, और जिनके नाम सुनते ही दुश्मन जो है वो डर जाता था।
1: बिल्कुल, जो आप जिस तरीके से बखान कर रही है, सच बताएं मेरे रोम रोम बिल्कुल पुलकित हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, और इस बात के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप जल्दी से उस नाम का जिक्र कीजिए।
0: देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें और उनका जन्म 14 मई को हुआ था महाराष्ट्र के पुरंदर किले में, और छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे।
1: जी हाँ, बहुत कम उम्र में उम्र से ही उन्होंने युद्ध कौशल, राजनीति और कई भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। कहा जाता है कि उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी सहित कई भाषाओं की जानकारी थी।
0: और वैसे ये बात सही है शिवम, योद्धा ही नहीं थे वो, विद्वान भी थे। उन्हें बुद्ध भूषण जैसे ग्रंथ की रचना की उन्होंने, और शिवाजी महाराज के निधन के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की जो कमान संभाली, अपने शासनकाल में मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े, और पता है जानने वाली बात क्या है, 120 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे।
1: क्या बात है, और उनकी बहादुरी और स्वाभिमानियों की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने धर्म और स्वराज की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयां झेली। 1989 में मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
0: तो भाई इसी के साथ हम याद करते हैं संभाजी महाराज को और उनको करते हैं नमन।

0: 9:44 हो गया। देखिए समय इतना तेज भाग रहा है बिल्कुल बदलते हुए मौसम से, और अगर आपको याद होगा कल का मौसम तो आप बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कल मौसम क्या था, तो आज का मौसम कैसा क्या होने वाला है उसकी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी के साथ। उन्हीं के जमाने जानेंगे कि आज का मौसम क्या होने वाला है।
1: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 100.7 FM पर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
1: जी गुड मॉर्निंग सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कैसा मौसम का हाल है लखनऊ और इर्द गिर्द इलाकों में।
2: देखिए मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिलेगी और शाम तक होते होते थोड़ा सा मौसम खुशनुमा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से अब आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिन तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी
1: जी।
2: और उसी को देखते हुए जो बुंदेलखंड रीजन है, साउथ का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, वहां से लू का अलर्ट कल परसों से जारी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए तापमान में धीरे धीरे इजाफा होने की संभावना है
1: जी। ओके,
0: मतलब कि और आगे हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
2: जी बिल्कुल, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ से जो पिछले करीब 10 दिन से काफी खुशनुमा मौसम था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में थोड़ा गर्मी का एहसास दोपहर में लगेगा।
0: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए।
1: थैंक यू सर जुड़ने के लिए।
2: ओके धन्यवाद।
0: 9:45 पर जब

0: आप ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि आप आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ने वाला है, तो इस बात की जिम्मेदारी आपकी ही है कि आप अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं कि गर्मी जब बढ़ेगी तो क्या एहतियात, क्या उपाय आपको करने हैं।
1: और फिलहाल जब तक कि मौसम हल्का सा अपने रंग दिखा रहा है, तब तक आप अपने हाथ में एक छाता भी रखिए और अपने साथ बहुत सारी सावधानी भी रखिए।
0: जी हाँ, तो कुछ कमर्शियल, उसके बाद एक बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: 9:51 और आपके दो दोस्त शिवम और आयुषी आपके साथ हैं और आपके प्यारे प्यारे मेल्स पढ़ने को बेकरार हैं। और इसी सिलसिले में पहला मेल कौन सा ले रहे हैं हम शिवम?
1: जी हाँ, मोनू सेठ हैं, लिखते हैं, बीती कुछ सदियों से विशेषकर औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है और अंधाधुंध शहरीकरण, प्लास्टिक और रसायनों के अत्यधिक उपयोग में प्रकृति के समान चक्र को बिगाड़ दिया है और आंधी तूफान को न्योता देता है। तो मोनू भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए और मुद्दे से जुड़ा और भी चीजें जरूर बताइएगा।
0: देखिए इसी के साथ हम मनोज विश्वकर्मा का ले रहे हैं मेल और गुड मॉर्निंग बोला है और कार्यक्रम अच्छा लगा, कह रहे कोई भी फ्रॉड कॉल या फ्रॉड मैसेज पर बिल्कुल विश्वास ना करे, बर्बाद कर देगा क्योंकि एक बार मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से लिखा है।
1: जी हाँ, कोमल तिवारी लिखती हैं, जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए समय ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। कोमल तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: देखिए राजेश यदुवंशी हथरौना अमेठी से ये कह रहे हैं कि हम किसी भी फर्जी मैसेज या फर्जी न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं और लालच नहीं करते, फॉरवर्ड नहीं करते, ऐसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: जी धीरपाल यादव नगहुआ गोविंदपुर जैतीपुर से इन्होंने मेल किया है, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आजकल जितने भी लोग ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं अननोन लिंक से ही हो रहे हैं, इसीलिए सतर्क रहें और जागरूक रहें।
0: देखिए गीतांजलि गुप्ता गोमती नगर से कह रही हैं, उन्हें सारी जानकारियां अच्छी लग रही हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, अवेयरनेस मिल रही है, अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ राजेश कुमार जी को भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है लेकिन मुद्दे पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो थैंक यू।
1: सुनील कुमार जी लिखते हैं कि मुद्दे पे कि आप किसी भी फैक्ट चेक को ध्यान दीजिए, कोई मैसेज आता है तो उसको ध्यान से देखिए, कई बार परखिए, क्योंकि हमें किसी गलत मैसेज कर भेज कर र्यूमर फैलाने से बचना चाहिए। सुनील प्रांजर विकास नगर लखनऊ से।
0: इसी के साथ अरविंद गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी गोविंद दीपा श्याम कुमारी कह रहे हैं, नमस्कार, कह रहे हैं कुछ लोग रिवॉर्ड पाने के चक्कर में एक लिंक को दसों को भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। शिल्पी मिश्रा लिखती है बख्शी तालाब लखनऊ से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और गानों की तारीफ की है।
0: देखिए इसी के साथ गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से लिख रही हैं, कह रही हैं सभी अफवाहों पर ध्यान नहीं देती हूं, सबसे अच्छा हमारा एफएम रेनबो है और सबको सुनाओ और पसंद कर दिए कार्यक्रम, थैंक यू गुलफ्सा।
1: और ये लिखते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर एक संदेश जहां जाना तो सही नहीं था, तब से सोशल मीडिया को सही तरीके से संज्ञान लेकर भी कहीं मैसेज भेजता हूं, अब क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है इसीलिए बहुत ही सावधान रहता हूं, ऐसा कह रहे हैं घनश्याम सिंह नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से।
0: इसी के साथ जावेद अख्तर जी का मैं मेल पढ़ रही हूँ, कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, सोशल मीडिया की खबरें आती हैं तो मैं ना फॉरवर्ड करता हूँ ना उस पर ध्यान देता हूँ। और रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रक्की बाश शाहीन।
1: अजय दुबे जी जो मलहौसी जिला और रैया से हैं, हम दोनों को नमस्कार लिखते हैं और लिखते हैं कि समाज में तनाव पैदा करता है फेक मैसेज, आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है मैसेज, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के किसी को मैसेज फॉरवर्ड करें।
0: देखिए राम मोहन गुप्ता जी ने भी हमें मेल लिखा है, कहाँ लखीमपुर खीरी से, और राम मोहन गुप्ता अमर नाम से लिखते हैं और बहुत प्यारी सी पोएम भेजी है। देखिए वक्त की कमी है, मैं पोएम तो नहीं पूरी पढ़ूंगी लेकिन दो लाइन फिर भी पढ़ देती हूँ। कह रहे बगैर सोचे समझे कर लेना ऑनलाइन समाचारों पर विश्वास, डाल सकता है मुश्किल में, पहुंचा सकता है मुसीबतों के पास।
1: वकील अहमद जी, वकील अहमद ने मुद्दे को लिखा है कि बहुत अच्छा है मुद्दा और ये अहमद मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर से हमें ईमेल कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ भाई पिंकी बारी जी का भी मेल मैं ले लेती हूँ, कह रही हैं अगर लिंक लीगल भी है फिर भी मैं उसको टच नहीं करती, शेयर नहीं करती क्योंकि कैसे पता चलेगा हमें कि ये सही है कि नहीं है। और भी थोड़ी बातें लिखी हैं कि कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो पहले मैं उसको जांच लेती हूँ, अमीनाबाद से कह रही हैं, थैंक यू।
1: जी हाँ, तो ये थे आप सभी के मैसेज, उम्मीद है कि आपको आज का गुड मॉर्निंग लखनऊ बहुत ही पसंद आया होगा, इसमें हर एक जानकारी आपको समझ में आई होगी और अगर

0: आपको जानकारी समझ में आई है तो ये जानकारियां औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो आयुषी हमें ये बताइए कि अब जो हमने मुद्दा दिया है इससे हमको क्या सीख मिलती है?
1: भाई देखिए, सबसे पहली सीख ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कई कई बार एक छोटा सा कदम, हमें नहीं पता कि एक छोटी सी तीली पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा भेज दिया जिसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए, पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाए, तो आपको भी अच्छी नींद नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले बस यही करना है कि कोई भी अनजाना लिंक खोले ही ना, कुछ फॉरवर्ड करे ही ना।
0: बिल्कुल, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। और फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ से मुझे यानी शिवम को दीजिए अनुमति।
1: भाई मैं तो रहूंगी आपके साथ, अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारे एंजॉय करना है साथ में। तो इसी के साथ भाई, प्यारे से सॉन्ग के साथ मैं और शिवम फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ करते हैं वाइंड अप।
0: तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। टाटा एंड बाय बाय।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में कल आए तेज आंधी तूफान बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जबसे अधिक मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 लोगों की मौत हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित लोगों को हर संभव

सहायता उपलब्ध कराने और अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और निदेशालय में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग और आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इसे सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे, अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है।

मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इसे सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे, अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों को और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा में 17,68,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 85.2% यानी 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं की उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
4: दस बज के 5 मिनट और सुपर हिट सॉन्ग्स लेकर आ चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त आयुषी आपके साथ, और रहेगा ये म्यूजिकल सफर चलता रहेगा एक घंटे तक। हम सुनेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे भूले बिसरे और आपके दिलों में बसने वाले सदाबहार से वो गाने जिनके लिए कभी हम थिरक उठते थे और आज भी हमारे दिलों पर वो करते हैं राज।

10:21 और सुपर हिट सॉन्ग्स का सफर जारी है 100.7 एफएम पर आयुषी के साथ, जहां हम निकाल कर ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर वो प्यारे प्यारे

अरे गाने जिन्हें हम बस बरबस कभी सुन लिया करते थे, यूं ही रेडियो पर, टीवी पर और जहन में बसा लिया करते थे और जुबा पर सजा लिया करते थे।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM पर सुन रहे हैं आप सुपर हिट सॉन्ग्स आयुषी के साथ 10:37 हो रहे हैं और प्यारे प्यारे सुपर हिट सॉन्ग्स गानों का ये जो सफर है ना ये जारी है, अपने शबाब पर है और आपके साथ है। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

10:55 हो रहे हैं, सुपर हिट सॉन्ग्स सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। लेकिन देखिए ना, हर अच्छी चीज को भी हमें वाइंड अप करना पड़ता है, क्योंकि उससे भी अच्छी चीज तो आ सकती है ना, ये स्कोप रखना पड़ता है। और भाई ये म्यूजिकल सफर ऐसा ही होता है कि कितना भी कर लीजिए, एक गाने से दिल नहीं भरता, लेकिन हजारों गाने हैं जिन्होंने हमारे दिल में अपनी जगह बनाई है। और दिल तो बहुत बड़ा है ना, और दिल तो जुड़ा रहता है एफएम रेनबो के साथ। तो सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं नहीं जा रही हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा अच्छी के बाद एक और अच्छी चीज और संदेश आपके गीत हमारे लेकर आपके साथ वापस से फटाफट जुड़ जाऊंगी। तब तक एंजॉय करिए ये सॉन्ग और मिलते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार संदेश आपके गीत हमारे लेकर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयला, लिग्नाइट, गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। चित्रकूट के कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन मद से जिलाधिकारी द्वारा 60 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है।

योजना किसानों के समग्र विकास और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य जिले के किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और उनके प्रसंस्करण को माध्यम से मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल

चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 63 करोड़ 39 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ 11:07 हो रहे हैं। और कहाँ सुन रहे हैं भाई, सुन तो आप 100.7 FM पर ही रहे ना। और भाई देखिए, ऐसा है कि संदेश आपके गीत हमारे का इंतज़ार जितना बेसब्री से आपको रहता है, हमें भी रहता है। और क्योंकि आपके प्यारे प्यारे संदेश सुनने को मिलते हैं और मज़ा सा आ जाता है, और हमें भी पता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। और इसी के साथ बिना देरी के कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं क्या लाइन पर। हेलो
1: हेलो
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: अल्तमस से बात हो रही है, ग्राम
0: तनसरिया,
1: जिला लखीमपुर।
0: अल्तमस, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप
0: बताइए। जी तो क्या, मैं भी एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लखीमपुर के।
0: और क्या संदेश लाए हैं आप? मतलब आप दूसरों से प्यार से बात करें तो आपको भी वो प्यार वापस मिलता है, ये कह रहे हैं आप? चलिए थैंक यू। किसी को अपना मैसेज डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: निशा जी हैं और वो मेहनाज जी हैं और एहनाज जी हैं, सहनाज जी हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। देखिए हमारे पास कॉल्स तो आने लगी है बहुत सारी, बत्ती टिमटिमाने लगी है बहुत सारी, लेकिन हमें आपके मेल्स का भी इंतज़ार है। और बिना कहे वैसे मेल्स भी आने लगे हैं, लेकिन fmakashwani@gmail.com पर आप अपना संदेश लिखकर भी हमें बता सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा जानकर कि आप हमें सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ जान रहे हैं और अच्छे अच्छे संदेश लिख रहे हैं अपने पास। तो सुनते रहिए फिलहाल आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना।

0: 11:12 हो रहे हैं और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो जी, किससे बात हो रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा तेज बोले।
1: जी मैम, प्रीति
0: प्रीति बात कर रही है। कहाँ से बात कर रही है प्रीति?
1: मैम बिजनौर।
0: बिजनौर से? तो प्रीति ये बताइए कि क्या लेकर आई हैं संदेश आप हमारे लिए? अच्छा, ओके। तो आप कह रही हैं कूड़ा कचरा ना रखे, सही बात है। क्या होता है, क्या दिक्कत हो सकती है?
1: मैम बहुत सारी व्यक्ति होते हैं, वो जागरूक होते हैं पर हमें देखने में पता नहीं चलता, हमसे बीमार पड़ जाते हैं।
0: ओके ओके ओके, तो ठीक है, सही कह रही हैं आप। देखिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं कूड़े कचरे से, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं एक छोटी सी लापरवाही अगर हम तो, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे परिवार को भी तो हो सकती है ना, दूसरों के लिए दिक्कत भी हो सकती है, हमारे भी परिवार में वो डिजीजेस फैल सकते हैं। सो थैंक यू प्रीति, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। हेलो जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और नेटवर्क पर सबसे पहले असर डाल रहा है, क्योंकि हमारे कॉलर्स बड़ी शिद्दत से प्यार से हमें कॉल तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी आवाज़ कट जा रही है। कोई बात नहीं, चलती का नाम गाड़ी और इस गाड़ी को भी हम थोड़ी ना रुकने देंगे। फिलहाल आपके लिए और एक प्यारा सा ट्रैक लेकर आई हूँ मैं जो दिल पर करेगा आपके राज। फिलहाल ये आपके लिए।

0: और देखिए 11:18 हो रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ आयुषी। और देखते हैं कि भाई हमारे साथ वापस से फोन कॉल पे कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: मैनाज से।
0: मैनाज कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से, तो क्या लाई हैं आप हमारे लिए संदेश?
1: पृथ्वी बचाओ पेड़ लगाओ।
0: प्रकृति बचाओ पेड़ लगाओ। अच्छा, आप क्या करती हैं मैनाजी, बताइए।
1: हम पढ़ाई भी करते हैं।
0: तो क्या पढ़ाई कर रही हैं आप, किस क्लास में हैं?
1: एट्थ में।
0: एट्थ में पढ़ती हैं, तो क्या रेडियो सुनती रहती हैं?
1: बहुत सुनते हैं।
0: अरे वाह, ये बताइए फिर पेड़ लगाती हैं कि नहीं आप भी?
1: लगाती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, स्कूल में सिखाया जाता है।
1: बहुत लगे हैं।
0: तो ये बताइए कि जब स्कूल में सिखाया जाता है तो ये बताइए पेड़ लगाने से फायदा क्या है?
1: वो छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई मैंने आज आपने। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और आपको कुछ कहना हो तो बताइए, किसी का नाम लेना है? नहीं, चलिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: हेलो।
0: हाँ, चलिए, अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। भाई प्यारे प्यारे बच्चे भी हमें सुनते रहते हैं, और अगर हमारी जितनी भी हम नॉलेज देते हैं यहाँ पर, हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो उन बच्चों की स्टडीज में काम आए, इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे रेडियो FM 100.7 सुन रहे हैं, उन सबको हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे सफलता हासिल हो। तो देखिए प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ मेल्स अगर मैंने नहीं लिए तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। देखिए राजकुमार डूडी जी, गांव फ्रांसी हिसार से, उन्होंने नाम लिया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और कुछ लिखा नहीं संदेश, पर कोई बात नहीं। झग्गर राम साहू जी का मेल आया है, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और इन्होंने भी कोई संदेश नहीं लिखा, पर कोई बात नहीं, आप सुन रहे यही संदेश है। देखिए भाई जावेद अख्तर जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर वाले ने आपके खर्च से ज़्यादा दिया है तो दूसरे लोगों की मदद ज़रूर करें, यही इंसानियत और अच्छे इंसान की पहचान है, क्योंकि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रक्की बादशाहीन तूबा आफरीन का नाम लिया है। भाई इतने प्यारे प्यारे मेल्स आप कर रहे हैं, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com खुला हुआ है, आप करते रहिए मेल्स और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप सुन रहे हैं रेडियो। देखिए एक इंद्रपाल मिश्रा जी का भी मेल ले रही हूँ, ग्राम अमृता महोली।

सीतापुर से। इंद्रपाल मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, कह रहे जब भी आंधी आए तो पेड़ के नीचे ना खड़े हो। बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं ये, क्योंकि बिजली कड़कने का भी, बिजली गिरने का डर रहता है, और आपको किसी अच्छी जगह पे शेल्टर लेना चाहिए, पेड़ पे शेल्टर ना ले, उससे खतरे हो सकते हैं। भाई छोटी छोटी बातें होती है जो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से हमारे साथ शेयर करते हैं, और ये नॉलेज को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसी के साथ इतनी सारी बातें हो रही है लेकिन प्यारा सा गाना ना बजे तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा ना, बिना देरी के आपके लिए।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: देखिए 11:26 हो रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ आयुषी और हम बात कर रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे में और बहुत सारे संदेश मैं आपके पढ़ भी रही हूँ, देख रही हूँ। आप बहुत

0: प्यार से हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजते रहते हैं और ये आपका प्यार हम तक पहुंचता रहता है। देखते हैं, फिलहाल हमारे साथ लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो हेलो जी, किससे बात हो रही है?
1: मैं होल पूरे से तिवारी बोल रही हूँ।
0: ऋषि जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं करवा से बोल रही हूँ, जिला लखनऊ से।
0: जिला लखनऊ से। तो क्या आप लेकर आई हैं हमारे लिए प्यारा सा संदेश, ये बताइए।
1: मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को मारे मत, डांटे मत, क्योंकि छुट्टियां होने वाली है ना, तो बच्चे एंजॉय करेंगे।
0: ये बात तो आप सही कह रही हैं कि भाई कभी कभी उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स होने का अधिकार मिलना चाहिए।
1: जी मैम,
0: बच्चों के हक में बात कर रही हैं आप।
1: जी बच्चे, अगर बच्चे होते हैं तो घर में सब कुछ अच्छा होता है, अगर बच्चे नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। है
0: सही
1: तो सब
0: बात
1: कुछ
0: है।
1: बच्चों का
0: और
1: ही मैम।
0: छोटे छोटे मासूम कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं उनके, है ना।
1: जी मैम, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो समझ लो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर वो घटेंगी नहीं, सी बढ़, जब तक बच्चे बढ़ेंगे तब तक उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती ही रहेंगी।
0: चलिए, थैंक यू कि आपने इस बारे में बात की और आप हमसे जुड़ी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू मैम।
0: देखिए, इतनी प्यारा मैसेज है बच्चों के लिए, और बच्चे जो है ना भाई, उनसे ही सारी रौनक रहती है, उनसे ही घर की एक खुशहाली रहती है। और बच्चे जो है ना, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी उम्र के हिसाब से, अगर आप उनकी उम्र को ज़रा सा असेस करिए, तो वो अपनी उम्र कंधों पर अपनी उम्र से ज़्यादा बोझा उठाकर दिन भर स्कूल जा रहे हैं, वहाँ का होमवर्क कर रहे हैं, वहाँ पर तरह तरह के बच्चों के साथ बैठ कर अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट कर रहे हैं। यानी तमाम तरह की अपने लेवल पे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। कभी टीचर से डांट खा रहे हैं, कभी कहीं पीछे रह जा रहे हैं, कभी किसी रेस में हार जा रहे हैं। उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, और ये गाना आपको याद दिलाएगा कि एक छोटा सा बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में कितनी हसल, कितना परेशान है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। आपका बस उसे थोड़ा सा प्यार चाहिए।

11:32 संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और देखते हैं अगला मेल किसका है। हमारे पास अगला मेल है मोहम्मद आसिफ इंसारी जी का, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे भाई। और संदेश कह रहे हैं कि अक्सर लोग गांव में तालाब के किनारे कचरा डालते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। और तालाब का पानी प्रदूषित होता है, और जब गाय या भैंस उस पानी को पीती है तो बीमार होती है। और अगर हमारे किसान भाइयों के तालाब के किनारे खेत है तो खेत में कम कीटनाशक का प्रयोग करें, ताकि बारिश होने के खेत का पानी तालाब में जाता है तो तालाब का पानी जहरीला ना हो जाए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात तो सही है। आप जरा तो सोचिए कि कई कई बार आप तालाबों में जब साबुन डालकर अपने कपड़े उपड़े धोते तो भी तालाब का इकोसिस्टम जो होता है वो बिगड़ जाता है। यानी ना तालाब का पानी आपके पीने लायक रहता है, और जीव जो होते हैं, जो जल जंतु होते हैं, उनके लायक भी वो पानी नहीं बचता। और आपके खेतों में भी तो वही जा रहा है, तो और वही सब्जियां आपके घर वाले भी तो खाएंगे, तो थोड़ा सा बस आप ये बात का ध्यान रखें। प्यारी बात कही है मोहम्मद आसिफ जी, थैंक यू सो मच। और देखिए मुनेश कुमार राज भानपुर हरौआ लखीमपुर खीरी से क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं व्हेन क्लाउड्स रोर एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स स्टे अलर्ट। सही बात है, क्या कह रहे हैं कि जब बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। और कह रहे हैं कि अगर लाइटनिंग हो तो आप पेड़ों के अंदर पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, अंदर जाएं और अपने टीवी फ्रिज मोबाइल चार्जर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसको अनप्लग कर दें, यानी स्विच बोर्ड से उसको निकाल दें। और अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो जो कमज़ोर दीवारें हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनके इर्द गिर्द ना जाएं। और भाई देखिए इसके साथ ही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह के नीचे चल रहे हैं जैसे कोई ब्रिज है जिसके टूटने की संभावना हो सकती है, तो मत चले, किसी निचले स्थान पर ना रहे। अगर बाढ़ या ऐसा कुछ लगे आपको डर तो आप हायर ग्राउंड पे यानी ऊंची जगह पर जाएं, और अगर आप बाहर हैं तो आप थोड़ा झुक जाएं और अपने पैरों को आपस में बांध लें, लेकिन ज़मीन पर लेटे ना। तो ये सब खराब मौसम से बचने के कुछ उपाय इन्होंने बताए हैं, थैंक यू। और अब देखते हैं हमारे पास राजेश यदुवंशी हथरौना अमेठी से किसका मेल है। कह रहे कल का तूफान बहुत ही भयंकर था, जिसमें अलग अलग स्थानों में लगभग कई लोगों को नुकसान हुआ है, और ऐसे में हम सबका सावधान रहने की ज़रूरत है। तूफान आए तो टिन शेड और पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रहे। ये बात देखिए हर कोई यही कह रहा है, शायद अपने अनुभव से कह रहे हैं, आसपास की बातों को मद्देनज़र रखते हुए कह रहे हैं, और ज़रूरत है इन सब बातों को सुनने की। भाई हर किसी का अपना जो अनुभव है वो दूसरे के लिए काम आता है। कहीं बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने, और उसमें लिखा था कि हम इस पूरे जीवन काल में खुद गलती कर करके सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, इतना समय ही नहीं है हमारे पास। यानी हमें दूसरों की गलतियों से कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई सिलेबस नहीं होता, हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ना। चलिए इसी के साथ एक और प्यारा सा मेल ले लेते हैं, इसके पहले कि हम प्यारा सा गाना भी सुन ले। देखिए ब्रजेश सिंह दीपू अटहुआ कैसरगंज बहराइच से क्या कह रहे हैं। जो लोग बाइक चलाते समय अपनी फिक्र तो नहीं करते, लेकिन सामने से आ रहे व्यक्ति की फिक्र करो, क्या पता परिवार का इकलौता परिवार चलाने वाला कोई व्यक्ति हो। प्लीज कोई भी गाड़ी ड्राइव करे तो सुरक्षित करे, अपना भी ख्याल रखे और सामने वाले का भी। ये बात बहुत प्यारी है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप 2 मिनट देर से ही पहुँचे लेकिन सुरक्षित पहुँचे। आपके घर पे आपको नहीं मालूम कौन कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और सामने वाले के घर पे भी कौन किसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और अगर हम सावधानी से नहीं चलाएंगे तो नुकसान सिर्फ दूसरे को तो नहीं होगा ना, हमें भी तो होगा ना। तो थैंक यू ब्रजेश सिंह दीपू जी, आपने प्यारे प्यारे हमें संदेश भेजे। और अब भाई मेरी भी जिम्मेदारी है प्यारा सा गाना सुनाने की, तो आपके रेडियो सेट्स पर ये रहा

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki. ग्यारह बज के 40 मिनट और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन जुड़ चुके हैं. हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: गुलफ्सा सिद्दीकी से बात हो रही है, संडीला से.
0: गुलफ्सा संडीला से, ये बताइए संडीला का क्या मशहूर है?
1: लड्डू.
0: अरे वाह, तो लड्डू पसंद है आपको?
1: जी मैम बहुत पसंद है, उधर तो निकलते हैं जरूर लेते हैं.
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. तो ये बताइए कि आप क्या संदेश लेकर आई हैं हमारे लिए, ये बताने के अलावा कि लड्डू बहुत अच्छी चीज होती है.
1: जी मैम, आप और शिवम सर सुबह से गुड मॉर्निंग लखनऊ कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छे गाने बजाए आप लोगों ने, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया.
0: बढ़िया, आपको मजा आया, बस हमारी वो सफल हो गई मेहनत.
1: जी मैम, मेरा संदेश यही है, जो लोग मोटर खोल के अपनी गाड़ी धोते हैं वो लोग प्लीज ऐसा ना किया करें. जितनी देर में हम गाड़ी की मिट्टी छुड़ाते हैं ना, उतनी देर में मोटर से कितना पानी बह जाता है, सोच के देखिए आप लोग.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, सही बात है कि थोड़ा थोड़ा जो
1: ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े काम करें तभी अच्छा होगा, छोटे कामों से ही शुरुआत कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, और जो आप कह रही हैं इससे रिलेटेड बात ये भी है कि कई बार हम लोग जैसे ब्रश करते हैं तो भी जितनी देर ब्रश कर रहे हैं उतनी देर
1: भी है, तो मोटर खोल के बहुत लोग नहाते हैं. जितनी देर में आप शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उतनी देर में मोटर से कितना पानी बहता है.
0: बिल्कुल, पानी की कद्र करनी चाहिए क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स है.
1: कप में भर लीजिए, तब करिए वो काम.
0: बहुत अच्छी बात बोली, थैंक यू.
1: करना बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को.
0: आप फॉलो कर लेती हैं, आसपास के लोगों को टोकती हैं?
1: हम कभी मोटर खोल के ना किसी को नहाने देते हैं ना गाड़ी धोने देते हैं. मेरे हस्बैंड करते हैं लेकिन मैं मना कर देती हूँ उनको.
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात.

0: है, थैंक यू गुलाब साहब, आप जिम्मेदार नागरिक का रोल निभा रही हैं। बिल्कुल
1: जी, समा परवीन है, साहिबा अंसारी हैं, सादिया अंसारी हैं, निशान अंसारी हैं, महक अंसारी, ममता गौतम है संडीला से, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके, थैंक यू सो मच गुलाब साहब, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू
0: भाई, देखिए प्यारी बातें आ रही हैं, प्यारे संदेश आ रहे हैं, और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे मैं कहते कहते अब मैं ही करने लगी हूँ, मैं अपनी एक डायरी में छोटी छोटी चीज़ें नोट करने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं है या हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है, पर हम भी व्यस्त हो जाते हैं और कभी कभी तमाम परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और ये सारी बातें दिमाग से उतर जाती हैं, पर कोई बात नहीं, ये रिमाइंडर है और करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, और आपको याद आता रहेगा, आप करते रहेंगे। चलिए देखें, रवि कुमार राहुल रवि ने क्या लिखा है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से सुन रहे हैं, और कई सारे नाम लिए हैं, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, और संदेश कुछ नहीं लिखा, पर चलिए आप हरियाणा से हमें सुन रहे हैं, अगली बार आप संदेश लिखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। रामराज जी क्या लिख रहे हैं, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, मधु, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, और संदेश है कि हमारे यहाँ बारिश, ओले, आंधी, तूफान बहुत ही तेज़ी से आया है, और सब सुरक्षित रहें। और भी प्यारा संदेश, अगर आप और भी डिटेल संदेश लिखेंगे रामराज जी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपने इतना बताया हमें अच्छा लगा। देखिए इसी के साथ अब हम ले रहे हैं मेल, रामराज जी ने दोबारा मेल किया, आप अश्योर्ड रहिए रामराज जी, हमारे पास मेल आता है तो हम पूरी जान लगाते हैं कि सबका मेल पढ़े। कौशिक जी ने लिखा है, वढ़वाड़ा परिवार से कौशिक, अस्मिता राजकोट गुजरात से सुन रहे हैं, और मुझे कहा है हेलो नमस्ते, और कहा है केम छो, और जैसे कि आपका पहले भी एक बार मेल आया और मैंने कहा कि इतनी ही आती है मुझे गुजराती, केम छो का उत्तर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, मजा माँ। और आज का मौसम अच्छा, आपके यहाँ भी मौसम अच्छा हो रहा है क्या, धूप है, खोई हुई कह रहे हैं चीज़ें हमेशा सुंदर लगती है, जैसे वक्त और बचपन, हाँ ये बात तो है, और बचपन के गाने भी है ना कौशिक जी, सुन रहे हैं आप गाने, पुराना टाइम याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा चलिए इसी के साथ वारिस अली खान जी का भी मेल ले लेते हैं, 11:44 हो रहा है, मेल तो ये पढ़ा जा सकता है, प्यारा सा मेल लिखा है। कह रहे हैं, हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। और भाई देखिए कह रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और अब पक्षियों के लिए छत के किसी कोने में मिट्टी के बर्तन में पानी रख दें, पानी बदलते भी रहें, इतना ही नहीं आपस में मिलकर बेजुबान जानवरों के लिए ये हौदियाँ बनवा दें, उसमें पानी भर दें जिससे जानवर भी पानी पी सके। मैंने देखा है कि प्यासे होने पर गाय नाली का पानी पी रही थी। तो एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, और हम सभी से कहेंगे कि बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें और उनके लिए भी जो बन पड़े वो सब ज़रूर करें। फिलहाल आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे संदेश जब मिल जाते हैं ना तो इससे ज़्यादा प्यारा गाना सुनने का मन करने लगता है ना। चलिए इसी के साथ प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: ग्यारह बज के 50 मिनट होने को हैं और देखिए हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ चुके हैं क्या लाइन पर। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: साहिबान सारे मेहरवागंज लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: कहाँ से? अच्छा ओके, क्या प्यारा सा संदेश लाई हैं आप?
1: मैम संदेश ये ला, मैं अपना और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखती हूँ मैम। हम जैसे कि मौसम भी खराब होता है और जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं मैम। किसी का मैम घर नहीं बना है मैम, किसी का बना है, तो जिसका नहीं बना अपने घर बुला सके उसको।
0: ये तो बहुत प्यारे ख्यालात हैं साहिबा, बहुत सही बात है कि कभी किसी को जरूरत हो तो आप अगर मदद करने की स्थिति में है तो कर दे, यही कहना चाह रही हैं आप भी, है ना?
1: जी मैम, अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहिए।
0: बहुत प्यारी बात है, थैंक यू सो मच साहिबा।
1: नाम भी लेंगे?
0: बिल्कुल लीजिए, आपका पूरा अधिकार लीजिए।
1: मोहम्मद आसिफ भाई हैं, तेज अंसारी भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, बाबू अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, तालिब अंसारी भाई हैं, गुलाफा सिद्दीकी अप्पी हैं, शमा परवीन अंसारी हैं,
0: ओके
1: अंसारी हैं, सादिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं।
0: थैंक यू।
1: आपके बाद आने वाली है उनका भी हम नमस्ते।
0: अरे वाह, बिल्कुल पहुंचा देंगे आपका नमस्ते, पहुंच जाएगा आपका नमस्ते। थैंक यू, ओके थैंक यू भाई। बहुत प्यारे प्यारे आज हमें संदेश सुनने को मिलते रहे, बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल एक मेल भी मैं पढ़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकलने लगे और मेल रह जाए, है ना? देखिए श्रेया यदुवंशी गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से क्या कह रही है, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम पहले ही हार चुके हो, लेकिन अगर तुम अपने अंदर ये विश्वास भर लो कि मैं कर सकता हूँ तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। बहुत प्यारी बात कही आपने, थैंक यू सो मच। और भाई जैसे कि हम कहते हैं प्यारे प्यारे संदेश का जो एक हम एहसान चुका सकते हैं, प्यारे से गीत से ही चुका सकते हैं ना, तो बस आ रहा है आपके पास प्यारा सा ट्रैक।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और देखिए इतने सारी प्यारी प्यारी बातें करते करते 11:55 हो गए हैं और स्टूडियो की क्लॉक कह रही है बस आयुषी अब तुम्हें करना पड़ेगा वाइंड अप, क्योंकि भाई स्टूडियो में प्यारी सी स्माइल लिए राधा आ चुकी है और राधा अब आपके साथ रहेंगी कुछ घंटे और बिखेरेंगी अपनी मुस्कुराहट का, अपनी बातों का, अपने गानों का जादू आपके साथ। लेकिन उसके पहले बस जाते जाते मैं भी आपको एक प्यारा सा संदेश दे दूँ कि भाई आपको रखना है अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल, और अपनी ही सेहत का नहीं अपनी मेंटल हेल्थ का भी, यानी फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ का भी। स्ट्रेस ना लेना है ना देना है, प्यार से रहिए, खुश रहिए, हंसते बोलते रहिए, गाते बजाते रहिए। बस आयुषी को फिलहाल दीजिए संदेश, आपके गीत हमारे से इजाजत, और फिर मुलाकात होगी इसी फ्रीक्वेंसी पर किसी और दिन। फिलहाल ख्याल रखिए अपना।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की ये दूसरी मुलाकात होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। गाजियाबाद में आज आयोजित NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि NDRF के कर्मी जब भी राहत और बचाव कार्यों के लिए दुनिया में कहीं भी जाते हैं उन्हें हमेशा लोगों का प्यार और विश्वास मिलता है। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि बढ़ती लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए कंपनी ने दूध कीमतों में ये बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण

संरक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रु।

दोपहर के सुनहरी बेला में आपका दिल से स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त राधा, जो लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा। ये शो है आपका, यानी हर उस महिला की आवाज जो घर संभालती है, रिश्ते निभाती हैं, सपनों को सजाती हैं, हर दिन जिंदगी को नए रंग से भरती हैं। तो अगले एक घंटे तक हम और आप साथ रहेंगे कार्यक्रम शत्रुपा में। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों आज है दिन गुरुवार और शत्रुपा में आज हम आपसे बातें करेंगे बागवानी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पौधों की मिट्टी को भी सांस लेने की जरूरत होती है? अगर मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए महीने में एक बार गमले की मिट्टी को हल्का हल्का ढीला जरूर करना चाहिए। आपके पौधे ज्यादा खुश और हरे भरे दिखेंगे। जैसे पौधों को चाहिए खुली हवा, वैसे ही दिल को चाहिए प्यारे प्यारे नगमे, है ना? तो भाई देर ना करते हुए आपको मैं गाना सुनाती हूँ जिससे आपका मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक।

0: ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं राधा। और जो घड़ी है ना, बता रहा है कि 12:18 और ये 30:31 हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको चाय जो होती है ना हर वक्त पीने का मन होता है, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, मतलब चाय लवर होते हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि चाय पत्ती है ना उसको मत फेंकिए। जी हाँ, उसे धोकर सुखा लें और मिट्टी जो है, पौधे की मिट्टी है, उसमें मिला दें। आप सोचेंगे ऐसा क्यों भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मिट्टी में ना पोषण बढ़ जाता है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है। यानी कि आपकी सुबह की चाय अब आपके पौधों को भी मुस्कान देगी, है ना अच्छी बात। भाई पौधों को मुस्कान मिल रही है तो हम चाहते हैं ना कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आए। और मुस्कान के लिए क्या करना होगा भाई, सॉन्ग सुनाते हैं आपको प्यारा सा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी में 12:25 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा। अच्छा ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लेट उठते हैं। भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेट मत उठिए। पता है जब आप सुबह उठते हो ना तो पूरा दिन आपके पास होता है। सोचिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, है ना? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लेट से उठते हैं तो सारी जो चीज़ें हैं दिनचर्या उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। पौधे तो लगाते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है कि दिन में पौधों को पानी दे, इसलिए वो रात को या फिर हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो रात में पौधों को पानी देते हैं। तो क्या रात में पौधों को पानी देना सही है? जी नहीं, रात में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से फंगस लग जाते हैं और पौधों को ना सुबह सुबह ही पानी देना सबसे अच्छा माना जाता है, इससे पौधे दिन भर फ्रेश रहते हैं। जी हाँ, तो जब बात हो रही है फ्रेश रहने की तो क्या करें, हम भी आपको एक ऐसा गाना सुनवाते हैं जिससे सुनकर आपका भी मूड जो है ना फ्रेश हो जाए।

0: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी से संबंधित बात। जब बागवानी की हो रही है तो एक्सपर्ट से भी बात करना बहुत जरूरी है कि वो हमें बताएं कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होती है, जिसे सुनने के बाद से हमारे श्रोताओं को काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी जो हमारी एक्सपर्ट हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों पे ना लोग किचन गार्डनिंग अपना रहे हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता है कि किचन गार्डनिंग क्या होती है। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि मैम कि किचन गार्डनिंग होती क्या है और अगर कम जगह हो तो कैसे उसे शुरू कर सकते हैं।
1: देखिए किचन गार्डनिंग एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब मुझे लगता है घर में रह रही हर गृहिणी जिसके पास थोड़ा वक्त हो, थोड़ा

0: भी काफी है और थोड़ी जगह बहुत ज्यादा है इस काम के लिए। किचन गार्डनिंग आप कहीं भी छोटा सा आपका आंगन हो, छत छत हो, छत नहीं है बालकोनी हो, या जहाँ हवा आ रही हो उस जगह पे आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको उसके लिए, छोटी सी जगह चाहिए और आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उगा सकते हैं। गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं, घर में पड़े वेस्ट मटेरियल है जिसके इस्तेमाल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको ताजी शुद्ध घर की सब्जियां मिलेंगी, सब्जियां फल जो भी आप लगाएं कुछ भी लगा सकते हैं आप इसमें।
1: जी मैम, तो कभी कभी क्या जी तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कितनी खाद डालनी है, कितनी मिट्टी डालनी है, संतुलन कितना होना चाहिए।
0: संतुलन की बात हम करें, आप छोटी चीज में लगा रहे हैं, अगर आप छोटे गमले ले रहे हैं या छोटा आपका जो भी ग्रो बैग है उसके अनुसार आपको जो है मिट्टी या जो भी चीजें आप उसमें मिला रहे हैं, आजकल बहुत सारी कोकोपीट चली हुई है उन्हें आप यूज कर रहे होते हैं तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। खाद मिट्टी या जिस चीज का भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह से लिया जाए कि भाई ना मिट्टी कम हो और ना ही उसमें आप जो भी पौधे लगा रहे हैं उसको जरूरत के अनुसार मिलना चाहिए। आप ये आराम से देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, आप मान लीजिए मेथी लगा रहे हैं, आजकल गर्मी का मौसम है मेथी लगा रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार लगना पड़ेगा। गमला आपका छोटा है आप उसमें उतना ही इस्तेमाल करिए, मिक्सचर आधा आधा रख के रखिए कि ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो पौधा आपका बिल्कुल भी उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। तो ड्रेन होना बहुत जरूरी है। मिट्टी कितनी लेनी, कोकोपीट कितना लेना, इसका मिश्रण आप अपने अनुसार लगा सकते हैं कि आधा हमने ये ले लिया तो आधा हम उसका इस्तेमाल कर ले।
1: जी मैम, तो बात जब प्राकृतिक
0: जितनी जगह हो गमले के अनुसार।
1: जी मैम, बात जब आप खाद की कर ही रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खाद जो हमें घर में जो चीजें मौजूद हैं उनसे कैसे बना सकते हैं।
0: देखो प्राकृतिक खाद बहुत इजी है, आपके पास कुछ नहीं है आप नीम ले सकते हो, नीम हल्दी अवेलेबल है, नीम का तेल आप ले सकते हो, कीटनाशक से बचाएगा सबसे पहली चीज। और घर में अगर हम बात करें तो भाई केले के छिलके, चाय पत्ती, केले के छिलके का फर्टाइल बहुत अच्छा बनता है। आप उसको जो है थोड़े दिन के लिए पानी में रख दें और हिलाते रहे और जब वो फर्टाइल तैयार हो जाए 3 से 4 1 हफ्ते के अंदर तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं महीने में 2 बार या जिस तरीके से भी आपके लग रहा है आपको जरूरत है आपके पौधे को इस्तेमाल की आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पौधे जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे और अच्छी इनको ग्रो भी मिलेगा, बढ़ने के लिए भी वो आसानी में रहेगा।
1: और मैम अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग पौधे लगा भी देते हैं और वो ग्रोथ भी करता है लेकिन फिर अचानक से वो सूख जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो इससे बचने के लिए कोई घरेलू उपाय।
0: घरेलू उपाय यही है कि आप नीम का पानी, मैंने बताया ना नीम हर चीज का तोड़ है और सबसे बढ़िया आसान तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगी, नीम का पानी बना लें। नीम का तेल का छिड़काव में हफ्ते में 2 बार, शुरुआत में आप देख लीजिए कि ज्यादा खराब है, पत्तियां सूख गई हैं, कीड़े लगी हुई हैं तो उनको छांट के अलग कर दें, खरपतवार जो गमले में एक्स्ट्रा लग जाते हैं उनको हटा दें। सबसे पहले ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपको, बहुत जरूरी रहेगी कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है सूखी पत्ती ना रह जाए, कीड़ा लगा पत्ती ना रह जाए, उसको तुरंत आप हटा दें, वहां से निकाल के उसको दूर कर दें और उस पर नीम का छिड़काव करें। और साथ ही साथ जो भी आपके पास बाजार में बहुत अच्छी आपको वो मिल जाते हैं क्या बोलते हैं कीटनाशक की, वो भी ले सकते हैं। और घर में बनाना है तो घर में आपकी नीम ही बहुत है, आपके लिए नीम की जो नीम का तेल है आप उसको पानी में मिला के उसके बाद छिड़काव करें, वो काफी है आपके घरेलू पौधे के लिए। बहुत बड़ी आप जैविक खेती नहीं कर सकते लेकिन घर में जो आप कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल के लिए इतना काफी है।
1: मैम इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, मुझे उम्मीद है जो हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया आपका, और सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि घर में किचन गार्डनिंग जरूर करें।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी 12:43 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ है आपकी दोस्त राधा। और जैसा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम महिलाओं पे, लड़कियों का ये कार्यक्रम है, तो जो हम लड़कियां होती ना, हम महिलाएं जो होती ना, हम ऑलरेडी खूबसूरत होते हैं, है ना, हमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं होती है। लेकिन अगर कोई घरेलू उपाय अगर हम लगा लें ताकि खूबसूरती में 4 चांद बढ़ जाए, तो क्या गलत होगा? नहीं ना। तो जो एलोवेरा है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, भाई आप यूज़ करते ही होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो यूज़ करिए। एलोवेरा जो होता है ना, वो स्किन के लिए अच्छा भी होता है, और गर्मी में आप लगाते हैं तो आपका जो फेस है हाइड्रेट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है एलोवेरा लगाने के बाद से। लेकिन क्या आपको पता है, एलोवेरा सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, पौधों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप एलोवेरा जो जेल होता है उसको पानी में मिलाकर पौधों में डालते हैं ना, तो उससे आपके पौधे हेल्दी रहते हैं। मजा आया ना सुन के, मतलब हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी स्किन भी और हमारे पौधे भी। भाई पौधे हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि अभी सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत, है ना।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। दोस्तों आपको पता है परिवार भी एक पौधे की तरह होता है जिसे समय पर प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए। जैसे पौधों को रोज पानी देना होता है, वैसे ही रिश्तों को भी रोज पानी प्यार देना होता है। जी हाँ, समय देना पड़ता है। अगर आपने रिश्तों में प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया, रिश्ते की देखभाल नहीं की, तो वो सूख जाएगा। जैसे पौधे सूख जाते हैं, वैसे रिश्ते भी आपके खराब हो जाते हैं। परिवार का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। और कल है 15 मई और कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। परिवार, माता पिता कितने जरूरी हैं। घर से, घर में हम जब आते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज लगाते हैं? मम्मी पापा, है ना, माँ बाप। जीवन का अनमोल तोहफा।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: तो आज के शत्रुपा कार्यक्रम में इतना ही। आज के कार्यक्रम से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं अगले कार्यक्रम जो कि है होठों पे तेरी बात में।

नमस्कार, दोपहर के एक बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में 51,46,000 रुपए की गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम वरुण ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अमरोहा, इटावा व अमेठी में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिए सरकार ने 1,46,25,96,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत औद्योगिक कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, पेयजल, सीवरेज जल निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। आइए, समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में संचालित 8 आवासीय निशुल्क आईएएस व पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 18 जून तक विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी। परीक्षा परिणाम 28 जुलाई तक आने की संभावना है। नया शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त 2026 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे कम हो। ऊर्जा उत्पादन और सोलर पैनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट में 85 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जिले को ऊर्जा के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल से अवाड़ा एनर्जी ने चित्रकूट में इस प्रोजेक्ट को लगाने की तैयारी कर ली है। ये परियोजना करीब 200 एकड़ सरकारी लीज भूमि पर स्थापित होगी। निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है और वर्ष 2000

2027 तक इसके चालू होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया है। प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि ये निर्णय किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्थन मूल्य में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से प्रदेश के किसानों की आय में भारी वृद्धि होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, और बहुत सी बातें होनी है आपसे, आपके अपने खास कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में, जहां आज मैं हूं आपके साथ में आपकी दोस्त राधा। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। तो इलाकाई खबरों के बाद में हम करते हैं ढेर सारी बातें और पूछते हैं आज का सवाल, और मुझे है आपके मेल का इंतजार। थोड़ी देर में सुनिए इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक्कदा तब्दीली हिंद के 90 साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर जा सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनक्कदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज NDRF की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो NDRF के साथ SDRF पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, NCC, NSS और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवियत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए MSP में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज नेस से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम के कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने

0: 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरियस्त असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली के पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफ़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी ज़रूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरीट और डायरेक्ट्रेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, 1:15 हो चुके हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, होठों पे तेरी बात, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हम जितना जुड़ते जा रहे हैं उतना ही हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। और आज होठों पे तेरी बात में वो बात मैं आपके होठों पे लाने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा सवाल है जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और इसका जवाब देने में आपको मजा भी आएगा। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको पूरा दिन, यानी एक पूरा दिन यानी 24 घंटे तक बिना मोबाइल फोन के रहना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे? खालीपन, सुकून, बेचैनी या खुद से मुलाकात? है ना भाई, मोबाइल फोन कितना जरूरी है हम सब जानते हैं, लेकिन वाकई बहुत जरूरी है। तो ये सवाल मेरा आज का है और अगर आपको जवाब देना है तो आप कहाँ जवाब देंगे भाई? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे जल्दी से हमें मेल कीजिए और बताइए कि अगर आपको पूरा एक दिन 24 घंटे बिना फोन के रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
7: जी हाँ, घड़ी में 1:22 हो रहा है और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। और आज का जो सवाल है, जो होठों पे आपकी बात आने के लिए जो सवाल है, वो ये है कि अगर आपको पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे बिना मोबाइल फोन के रहना हुआ तो आपकी लाइफ पे इसका क्या असर होगा। तो हमारे पास मेल भी शुरू हो गए आने, लेकिन अभी जो अगला मेल, जो मैं पहला सबसे पहला कार्यक्रम का जो मेल पढ़ रही हूँ, वो सुधाकर जाधव जी का है, जो ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद जिला जालना मराठावाड़ा महाराष्ट्र से इन्होंने लिखा है। वाओ, अच्छा, इनके साथ और भी लोग हैं, श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार।

अच्छा, इन्होंने ना बहुत प्यारा सा एक प्लांट यानी कि एक पेड़ भी बना के भेजा है, गुलाब का फूल भी भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि प्रेम पूर्वक नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि मैडम आज होठों पे तेरी बात इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा हटकर अभिप्राय दे रहा हूँ कि आज गुरुवार को रात 12:35 को मेरे को ना नाती हुई है, यानी लड़की हुई है, तो मेरे को नात होने की वजह से हमने हॉस्पिटल में ज़ोर से उसका वेलकम किया, स्वागत किया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वागत किया, वेलकम किया। तो और भी मेल हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे पास आया है रामेश्वर जी का, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन राधा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बहन राधा जी, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम होठों पे तेरी बात हमें बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी। इन्होंने लिखा है ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। अच्छा, तो इन्होंने और तो कुछ नहीं लिखा, तारीफ की है, कोई बात नहीं, तारीफ की उसके लिए शुक्रिया। हम जो सवाल हमने पूछा है देखते हैं, ये आया है हमारे पास रामराज जी का मेल। श्री गणेशाय नमः, होठों पे तेरी बात जिला रायबरेली गांव पहाड़ी पुर से रामराज राजू भानु पप्पू पासी मनीष नीरज मधु भुइया मिर्जा इमरान बेग, पहली बार आपको कार्यक्रम में सुन रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बारिश ओले आंधी तूफान कल बहुत तेजी से आए थे, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेल किया। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपको एक दिन बिना फोन के रहना पड़ा तो आप कैसे महसूस करेंगे, अगर उसके बारे में भी आप लिखकर भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भाई कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपकी रेडियो सेट पे।

0: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और कार्यक्रम है होठों पे तेरी बात, जहां आज का विषय है कि अगर आपको पूरे एक दिन यानी 24 घंटे बिना फोन के रहना पड़ा तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। ये बात हमने बाहर जाके भी लोगों से पूछा, तो सुनिए कि वो क्या सोचते हैं।
1: मेरा नाम सुहेल शर्मा है और मैं एक टीचर हूँ। आपका क्वेश्चन था जैसे कि क्या आप फ़ोन के बगैर एक दिन रह सकते हैं, तो हम रह सकते हैं फ़ोन के बगैर, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो फ़ोन पे ही अपनी लाइफ को डिपेंड कर दे रहे हैं। उनकी लाइफ जो है फ़ोन से स्टार्ट होती है और फ़ोन से ही ख़त्म भी होती है। फ़ोन के बगैर भी पहले के लोग रहते थे, जैसे कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करना, बड़ों के साथ बैठना, ये सब चीज़ें आज के समय में ख़त्म हो जा रहा है। हम अपने बच्चों को, रोते हैं बच्चे तो हम फ़ोन पकड़ा देते हैं उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को स्वयं समय देना चाहिए उनको, ताकि वो फ़ोन की दुनिया से बाहर निकले और एक बाहर का जो कलरफुल दुनिया है उसका इंजॉय करे। है, मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ, और जैसे कि राधा मैम ने पूछा क्या क्या एक दिन बिना फ़ोन के रह सकते, तो बिना फ़ोन के नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है तो वो फ़ोन से ही करना पड़ता है, और जैसे या ऑनलाइन शॉपिंग करो या ऑनलाइन कुछ भी मंगवाओ तो वो तो फ़ोन से मंगवाना पड़ता, तो वो तो फ़ोन कुछ भी मंगवाओ तो वो तो फ़ोन से मंगवाना पड़ता है, और जैसे पेमेंट भी करना रहता है तो वो फ़ोन से ही हो जाता है, तो बिना फ़ोन के तो नहीं कोई रह सकता। राधा मैम, मैम बिना फ़ोन के तो हम तो नहीं रह पाएंगे, जीवन तो बहुत मुश्किल रहेगा बिना फ़ोन का।
0: तो जैसा कि आपने देखा कि
1: मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ,
0: तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग तो रह सकते हैं फ़ोन के और कुछ बिना फ़ोन के नहीं रह सकते हैं, तो मिली जुली बातें हैं। लेकिन अभी भी मुझे आपके मेल का इंतज़ार है कि आप क्या कहते हैं। तो एक प्यारा सा जो

मेल है मेरे सामने आया है, वो लिखा है बसंत कुमार सिन्हा जी ने। वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रसारक मैडम राधा जी आपको नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। मैम आगे लिखते हैं कि मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और ये रोज रेडियो सुनते हैं और इनको सारे जो हमारे आरजेस है वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, हमारे आरजे सारे आपको अच्छे लगते हैं। और इन्होंने लिखा है कि जो आपका आज का सवाल है कि बिना मोबाइल के, तो राधा जी एक दिन क्या, मैं तो 40 दिन बिना मोबाइल के मैंने गुजारा किया है। अच्छा, और रेडियो प्रोग्राम सुनते रहे और कुछ कारण से दूर भी हो गए, अब मोबाइल फिर मेरे पास आ गया है, फिर रेडियो की दुनिया से मैं जुड़ चुका हूं और इनको अच्छा लगता है हमारा कार्यक्रम। और ये इन्होंने लिखा है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध बाबू, और इन्होंने थैंक्स भी लिख दिया है कि थैंक यू नाम शामिल करने के लिए, दिल से शुक्रिया दीदी जी। अच्छा, आपको पता था कि मेल आपका शामिल हो जाएगा, तो भाई और भी हमें मेल भेजिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिना फोन के वो रह सकते हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ, तो फिर आप क्या सोचते हैं बिल्कुल हमें बताइए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तभी अभी सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग जो आ रहा है आपका रेडियो सेट पे।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात। 1:40 हो चुके हैं और आपके मेल भी हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। जो ये मेल हमारे पास आया है वो है मीनाक्षी इंडियन जी का है और इन्होंने लिखा है कि मैम, ये इन्होंने त्रिवेणी नगर लखनऊ से लिखा है। मैम लिखती हैं कि आपको हमारा प्यार भर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बस आपको उस दिन संदेश नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मैं आपको रेडियो पर सुन लेती हूँ और ये हमें मैसेज करती हैं, मेल करती हैं, तो बस इतने ही से के लिए ही। बस सच बताइएगा मीनाक्षी जी, क्या सिर्फ इतने के लिए ही आपको फ़ोन की ज़रूरत होती है? तो भाई जाहिर सी बात है कि फ़ोन तो ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा समय अपनों के लिए भी निकालना चाहिए ताकि हम अपनों से बातचीत कर सके, है ना। ये मेल है गुलफ्सा सिद्दीकी जी का। गुड आफ्टरनून राधा मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। अगर मुझे बिना मोबाइल के एक दिन गुजारना पड़ा तो मैं बहुत आसानी से गुजार लूँगी क्योंकि मैं मोबाइल कम ही चलाती हूँ। अगर ऐसा हो भी जाए तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत दिनों से पड़े होते हैं, वो ज़रूर हो जाएंगे। बात तो आपकी सही है कि बहुत सारे काम घर के होते हैं, लेकिन अच्छा ऐसा भी होता है ना कि हम पहले का दौर देखिए ना, पहले के दौर में जो टेलीफोन था वो बहुत कम लोग के घर में होता था और जिनके घर नहीं होता वो PCO पे जाते थे, PCO है ना, और कॉइन्स डालते थे, बात करते थे। लेकिन अभी ये मोबाइल देखिए कितनी सुविधा, डिजिटल ज़माना है कि हमारे पॉकेट में है और ये मोबाइल सिर्फ बात ही नहीं करते, मतलब एक समझिए कि वो जादू की छड़ी जैसा है ना, कि अगर हमें फ़ोन से हमें अगर किसी को कॉल तो करना, कॉल कर ही सकते हैं, साथ में हम उसे देख भी सकते हैं। हम कुछ भी खरीदना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी खाने का मन मंगवाना, मतलब हर चीज़ जो है हम फ़ोन से मंगवा सकते हैं ना। लेकिन जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं से बातचीत की तो नैन्सी जी ने और शैल जी ने भी बोला कि एक ने तो बोला कि हाँ रह सकते हो, एक ने बोला कि नहीं। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फ़ोन के इतने ज़्यादा वो एडिक्ट हो चुके हैं कि वो खाना खाते हैं तो उनको फ़ोन चाहिए, अगर वो रोने लगते हैं तो पेरेंट्स भाई चुप हो जाओ और फ़ोन ले लो, तो ये अच्छी बात है क्या? तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि अगर एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए आपको बिना फोन के रहना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और जल्दी से हमें मेल भेजिए, हमारे पास मेल आ चुके हैं और बहुत सारे मेल आने चाहिए। भाई ये सवाल बहुत ही अच्छा है, भाई आपकी जिंदगी पे क्या असर होगा मुझे जानना है क्योंकि कार्यक्रम का नाम है होठों पे तेरी बात। तो हमें मेल करने के लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, fmakashwani@gmail.com। तो देर ना करते हुए सुनिए और एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: स्टे ट्यून टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, घड़ी में 1:50 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात। और जहां आज मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त राधा, और आपके बहुत प्यारे प्यारे मेल्स भी हमारे पास आ गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। जो अगला मेल हमारे पास आया है वो आया है जावेद अख्तर जी का, और वो लिखते हैं, गुड आफ्टरनून राधा मैम, जितना खूबसूरत नाम उतनी ही मीठी आवाज, नटखट चंचल भरा अंदाज, थैंक यू सो मच जावेद जी आपकी तारीफ करने के लिए। ये कहते हैं कि मेरा ये कहना है कि अगर 24 घंटे बिना मोबाइल के रहना पड़े तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आजकल टेक्निकल युग में हमें मोबाइल की बहुत जरूरत पड़ती है। बात तो सही आपकी, अगर आज मोबाइल नहीं होता तो हम FM रेनबो कैसे सुन पाते और ना ही आपको हम मेल कर पाते। अच्छा, ये तो बात आपने बहुत सही कही, और सही मायने में मोबाइल हर चीज़, मैंने बोला ना कि वो जादू छड़ी है जो हर एक क्लिक पे हमें हर चीज़ मिल जाता है, लगभग सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। और इन्होंने लिखा है, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, शमशुल कमर राही बेगम, रुखसार रकीबा शाहीन तुबा आफरीन। तो बात तो आपकी सही है कि अगर बिना फ़ोन के रहना पड़ा तो कठिनाई तो है ना। अभी एक और हम मेल लेते हैं सत्यम जोशी जी का, ये कहते हैं, सत्यम जोशी मंगलपुर कानपुर देहात से, मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ मैं। अच्छा, वो कैसे? आगे लिखते हैं कि कल ही मेरा फ़ोन स्कूल में छूट गया था, तो पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो। अच्छा, मतलब ऐसा लगने लगा आपको, बट एक बात अच्छी लगी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब समय ही नहीं कट रहा था। अच्छा सत्यम जोशी जी, बहुत ही मज़ेदार आपने मतलब बात कही, और बात तो सही है आपकी, जब अगर, लेकिन आपने बताया स्कूल में छूट गया था, इसका मतलब या तो आप स्टूडेंट हो या तो टीचर हो, अगर स्टूडेंट हो तो भी आपके पास बहुत सारा काम है, अगर आप टीचर हो तो भी आपके पास बहुत सारा काम है, तो काम तो बहुत सारे रहते हैं, फिर ऐसा क्यों लगा कि बहुत सारा वक्त है आपके पास जो कट नहीं रहा था। और अगर आपके पास वक्त सारा, बहुत सारा था, तो आप रेडियो सुनिए।

बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो जो अगला मेल आया है वो आया है एम के राज जी का। न्यू आरजे राधा जी को शुभ दोपहरिया। जी आपको भी शुभ दोपहरिया। मैं मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, हरहुआ जिला लखीमपुर खीरी से। आपकी कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है और रोज लाइव आया करिए। थैंक यू सो मच। मोबाइल है जीवन का अंग, अगर ये ना मिलेगा तो हो जाएंगे तंग। ओ भाई दिल की बात है कहनी जरूरी, पर होठों पे चुप्पी लगे मजबूरी। कह दो जो दिल में छुपा है आज, कल ना रहे ये मौका ना रहे ये राज। प्यार की भाषा सबसे न्यारी, एक मुस्कान लगे सबसे प्यारी। बातें होठों से नहीं आंखों से होती हैं, सच्चे जज्बात वहीं से बोती है। आपका श्रोता मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से। भाई बात तो आपने बहुत अच्छी कही राज जी। और ये जो लिखा था आपने ना, आप लिखते भी अच्छा है। तो प्रोग्राम आपको अच्छा लगा इसके लिए भाई शुक्रिया। और भाई बातें हो गई हमारी कि क्या आप सोचते हैं, लेकिन अभी क्या जरूरी है, अभी जरूरी है कि प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। तो एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों, आपसे बात करते करते जो समय है ना, बिल्कुल धीरे धीरे अपने वाइंड अप की ओर आ गया है भाई, समाप्ति की ओर आ चुका है। तो आज आपसे बात करके कि भाई बिना फोन के आप कैसे रह सकते हैं अगर 24 घंटे रहना पड़ा, तो मिली जुली जो बातें आपकी हमारे पास आई कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं रह भी सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं रह भी रह सकते हैं। तो बात तो सही है कि फोन जरूरी भी है, लेकिन उतना ही उपयोग करें जितना आपको आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो अब अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं जिसका नाम है हॉटमेल, जहां आपकी पसंद के गाने बजाए जाएंगे।

नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच एक वर्ष से चल रही उच्च स्तरीय सहभागिता में तेजी के बाद हो रही है। इस वर्ष जनवरी में शेख मोहम्मद की पिछले एक दशक में भारत की 5वीं यात्रा और यूएई के राष्ट्रपति के रूप में उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। प्रदेश में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बीते लगभग 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में जनहानि, पशुहानि समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। श्री योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद और मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट देने के लिए भी कहा गया है। यूपी के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल हानि की जानकारी सामने आई है। वहीं खराब मौसम की वजह से काफी संख्या में मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि संबंधित विभागों के साथ मिलकर मुआवजा जारी किया जा सके। मथुरा रिफाइनरी ने आज 1,24,00,000 रुपए की लागत की फैको मशीन एवं अन्य अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा उपकरण भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल को प्रदान किए। इस कार्यक्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मथुरा रिफाइनरी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को माध्यम से समाज के समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल ने बताया कि ये पहल ब्रिज क्षेत्र के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बांदा जनपद के कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आज एक निजी वाहन के ट्रक से टकराने के कारण हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें।

0: हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की 100.7.
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, दोपहर के 2 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा हॉटमेल। जी हाँ, 2:04 और 5 मिनट हो चुके हैं और कार्यक्रम में हमें आपके मेल का इंतजार है, क्योंकि ये कार्यक्रम है खास जिसमें आपकी पसंद के गाने बजते हैं। तो अपनी पसंद के गाने आप हमें भेजिए fmakashwani@lucknow.gmail.com पर। भाई कार्यक्रम है हॉट मेल और आपके जो गाने हैं ना बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, तो एक गाने की फरमाइश आ भी चुकी है, तो चलिए हम पहले उसे सुनवा देते हैं।

जी हाँ, कार्यक्रम है हॉट मेल, और हमारे पास आपके मेल जो है ना एकदम इतने झमाझम आ रहे हैं जैसे बारिश होती है ना वैसे. तो अभी जो मेल मैं पढ़ रही हूँ ये है बोधराज खोरवाल जी का. इन्होंने लिखा है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश. अच्छा, इन्होंने कहा है इस फिल्म का इन्हें ये गाना सुनना है. बिल्कुल सुनवाएंगे आपको. और ये भेजा है संजय संजय ढिंगिया जी ने, बागपत उत्तर प्रदेश से. संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, नमस्कार मैम, हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए. बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि सबकी मेल पढ़ें और सबकी फरमाइश भी पूरी करें. तो ये जो मेल हमारे पास आ गया है ये है उदय भान पाल जी का. और अच्छा, इन्होंने बड़े अच्छे से मतलब डेकोरेट करके देखिए ना, बहुत सारी पत्तियां हैं, कलरफुल डिज़ाइन बना के इन्होंने भेजा है. कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार. किसी भी गीत में शामिल करें. अच्छा, ये वाले जो श्रोता होते हैं हमारे, मैंने बड़े स्मार्ट होते हैं. मतलब मेल पढ़ लीजिए आप हमें, चाहे गाना, अब आपको पता भी है कि गाना तो अच्छे अच्छे ही बजेंगे भाई. आप ही लोग में से किसी एक का गाने की फरमाइश होती है तो गाने तो अच्छे होंगे ही. और इन्होंने भेजा कहाँ से है मैं भी बता दूँ. उदय भान जी ने भेजा है ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से. श्रोता उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और परिवार. तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके मेल हमारे पास इतने ढेर सारे आ रहे हैं ना कि सबकी फरमाइश एक साथ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में आप सबकी फरमाइश जो है, जिन जिन गीतों की आपने फरमाइश की है वो पूरी की जा सके. अभी फिलहाल सुनते हैं ये गीत जो आप लोगों में से ही किसी एक ही फरमाइश की है.

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

जी हाँ, 2:19 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपका फेवरेट हॉट मेल। और आपके मेल जो है ना, बहुत प्यारे प्यारे से मेल आ चुके हैं। जो ये मेल मैं पढ़ रही हूँ, ये है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से लिखा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और इन्होंने लिखा है कि मैडम जी हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए। और ये दिग्दर्शन गौर जी लिखते हैं मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौर, हमारी प्लेलिस्ट में से या कोई भी अन्य सदाबहार गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद शुक्रिया। अच्छा इन्होंने ना बहुत सारे फिल्म के गाने, भाई बहुत आपकी जो प्लेलिस्ट है दिग्दर्शन जी और कविता गौर जी बहुत लंबी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें से एक गाना तो आपको ज़रूर, मतलब आपने इतनी इसलिए लिख दिया है ताकि एक गाना हमारा इसमें से मैम ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल आप ही का शो है, बिल्कुल आपकी पसंद के गाने हम सुनवाएंगे। ये अगला है मेल हमारे पास नरेश जी का आया है। नमस्कार जी, आरजे जी हमें भी शामिल कर लीजिए, दीदी जी इंतज़ार कर रहे हैं। दीदी जी प्लीज़ नाम पूरे पढ़ना। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने लिखा है खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। थैंक यू, मतलब पता था आपको कि शामिल तो ज़रूर होना है। हाँ ये लिखा है राजेश वर्मा जी ने, अपने पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और इन्होंने थैंक यू भी लिखा है। भाई मेल तो बहुत सारे हैं और जल्दी से हम आपकी पसंद के गीत भी सुनवा दें, है ना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हॉट मेल, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। और पता है आपके बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूं कि सबकी पसंद के गाने मैं सुनवाऊं। अच्छा एक बात ये भी है, जिनके गाने बज रहे हैं अगर वो चाहें, उनका मन हो, उनकी इच्छा हो, तो हमें थैंक यू मेल भेज सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अगला मेल पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है वारिस अली खान जी का, ये एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं। आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, आपको भी सलाम। इन्होंने लिखा है, शोलों पर भी नहीं लड़खड़ाते उनके कदम, जिनकी परवरिश ठोकरों ने की हो। वाह बहुत ही अच्छा, मतलब आपने मैसेज दिया है कि भाई जाहिर से बात है आप लाइफ में कुछ भी परेशानी आए, अगर आपने सोच लिया है कि हमें ये काम करना ही है तो आप ज़रूर सफल होते हो। अच्छा ये आया है आफ्ताब अंसारी जी का मेल हमारे पास, आरजे सिस्टर जी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी नमस्कार आफ्ताब भाई, प्रोग्राम को पेश करने का अंदाज़ बहुत ही शानदार है, ओ थैंक यू सो मच। और इन्होंने प्यारे से बहुत सारे फ्लावर बना के भेजे हैं, और शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, ये सारे भी साथ में हैं। शाहरून नूर अंसारी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए दीदी जी, धन्यवाद। ग्राम और पोस्ट हरहरपुर मटककली ज़िला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरिशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मेल करने के लिए। और ये आया है मेल हमारे पास में मोहम्मद अमीन जी का, मोहम्मद अमीन विलेज बिदहा पोस्ट बहरोली गंगागंज लखनऊ। अच्छा इन्होंने बोला है इस फिल्म से ये गाना सुनवा दीजिए, मेरा मेल क्यों नहीं शामिल कर रही हैं। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि हम आपका मेल नहीं शामिल कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं सबका मेल शामिल करने का। अच्छा समय तो होता है एक घंटे का, तो उसमें सोचिए हम सबका कैसे शामिल कर पाएंगे और सबकी फरमाइश भी कैसे पूरी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी हमसे नाराज़ ना हो, अगर फिर भी कुछ लोग छूट जा रहे हैं उसके लिए दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी बोलती हूँ कि अगर आपका गाना मैं बजाने की कोशिश करी नहीं बजा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बजा देंगे। मेरा मेल क्यों नहीं शामिल, अच्छा आपकी शिकायत मुझे उम्मीद है कि ये क्या लिखा है परवीन जी, मोहम्मद फैज भरी रिंकी पिंकी जी को सुनना चाहते हैं। रिंकी पिंकी जी को आप यहाँ कैसे सुन पाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। ये मेल है सीबा बानू जी का, हाय मैम हाउ आर यू, आई एम उमरा अंसारी हुसबा अंसारी श्रीनगर, नहीं सीरीन नगर लखीमपुर से मेल कर रही हूँ। अच्छा इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सुनवा दीजिए भाई, गाने बहुत सारे हैं और हमने क्यू भी लगा रखा है, आप में से ही किसी की एक पसंद का गाना बजने वाला है। तो अगर जिनका गाना है ये, तो अगर उनका मन हो तो थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू मेल भेज सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इन्जॉय करिए इस सॉन्ग को।

0: जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है हॉट मेल, जहाँ आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। और हमारे पास ना, पता है, मतलब प्यारे प्यारे तो मेल आ ही रहे हैं, और कुछ हमें मतलब ऐसे गुस्से वाले मेल आ रहे हैं ना, कि मतलब अभी देखिए मैं इनके स्टाइल में पढ़ती हूँ। जैसे इन्होंने भेजा है, अब्बासी जी ने भेजा है,
1: हद हो गई राधा जी, पूरे 40 मिनट हो गए हैं, अभी तक आपने मेल देखा ही नहीं।
0: ओ अब्बासी जी, मतलब देखिए हम सबका मेल देख रहे हैं, अगर आपका मेल थोड़ा लेट में देखे तो नाराज मत होइए ना प्लीज़। और इन्होंने बोला है कि हमें मैम इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए, ऊपर कोट, अच्छा ये इनका एड्रेस है, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अच्छा देखिए अब्बासी जी, आपने कितने अच्छे से अपना मेल कलरफुल भेजा है, फूल भी भेजा है, तो नाराज़गी इतनी ज़्यादा मत करिए ना, हम सबके मेल को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना, आपका भी मेल शामिल हो गया, तो हम धीरे धीरे देखिए सबके मेल शामिल करेंगे। प्लीज़ हमारे श्रोता, कोई भी हमसे नाराज़ मत होइए प्लीज़। ये स्वर्ण सिंह ने लिखा है, स्वर्ण सिंह ने लिखा है, नमस्कार जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुना दो, हमारा नाम ज़रूर शामिल करो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। और ये है जाकिर जी ने भेजा है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत कर्ता जी को नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हमारा नाम भी शामिल कर लीजिए, धन्यवाद। और इन्होंने ना बहुत प्यारी प्यारी ग्रीनरी, मतलब वाकई ये भी हमने मॉर्निंग में शत्रुपम बात की, बागवानी की, तो इन्होंने ढेर सारे पौधे, पत्तियाँ, फूल, मतलब एकदम हरियाली हरियाली, आँखों को बहुत सुकून मिला देख के। भाई गर्मी इतनी है, और ऐसे में अगर आपने हरियाली भेजी है ना, सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड, मुंगेसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मेल करने के लिए। रामराज जी लिखते हैं, अच्छा ये आपका तो मेल, चलिए कोई बात नहीं, रामराज जी ने लिखा है कि जिला रायबरेली

पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, पवन कुमार यादव, बच्चू पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, हमको कोई भी गाना सुनवा दीजिए, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा धन्यवाद। बिल्कुल, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि आपको शामिल करें। ये तुलसी मस्कीन जी ने लिखा है, प्रिय होस्ट राधा जी, हमें लगता है आप हमसे नाराज़ हो, अभी तक नो रिस्पॉन्स, इन्हीं सॉन्ग में तो मेल ले ही लो। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबके मेल पढ़ें, सबकी फरमाइश पूरी करें, लेकिन अगर कोई छूट जा रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए, अभी एक जो गाना आ रहा है, आप ही लोगों में से किसी की पसंद का गाना है, और अगर सुन के इंजॉय कर रहे हैं तो साथ में एक थैंक यू मेल भी भेज दीजिएगा।

जी हाँ, 2:43 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है हॉट मेल। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। और जहाँ मैं चाहती हूँ कि आप सभी की फरमाइश पूरी कर सकूँ, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी आरजे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि हम एक घंटे में सबके गीत की फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। देखिए, जो लंबे लंबे गीत हैं, बहुत लोगों की जो फरमाइश है, तो भाई उनको आनंद भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबकी फरमाइश मैं पूरी कर सकूँ। चलिए पढ़ते हैं अगला मेल। हमारे पास जो है वो प्रकाश बोरगांवकर का है। आदरणीय प्रसारक जी को प्यार भर नमस्कार, इसका ये गाना हमें सुनवा दीजिए। ये लिखते हैं छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, बेबी, ओवी, आपका दिल से शुक्रिया। भाई मेल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राधे कुमार विद्यार्थी जी ने हमें लिखा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से। अच्छा, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली और फलना जी। अच्छा, चलिए हमने आपके मेल को शामिल कर लिया। मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौशल प्रजापति लिखते हैं नमस्ते मैडम जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैम कौशल प्रजापति यशोदा नगर कानपुर से मैं लिख रहा हूँ, कैसी हैं मैडम जी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, काफ़ी दिन बाद मैसेज किया है। प्लीज़ मैडम जी, बिल्कुल आपका जो मैसेज है, काफ़ी दिनों बाद आपने शामिल भेजा है, तो हमने शामिल भी देखी कर लिया है। और इन्हें इस फिल्म का ये गाना सुनना है, मैं अपनी शॉप पर हूँ, सभी दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, प्लीज़ मैडम जी ये गाना प्लीज़ सुनवा दीजिए। तो चलिए बिल्कुल, हम जितने मेल हमने अभी पढ़े हैं उनमें से किसी एक ही फरमाइश है गाना जो है ना, तो चलिए हम सुनवा देते हैं। तो इंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

जी हमारे पास आपके मेल ढेर सारे आ रहे हैं, और जो समय है धीरे धीरे जो है ना, मतलब वाइंड अप की ओर है, तो मेरी कोशिश है कि इस समय मैं आपके मेल्स भी पढ़ लूँ और आपके गाने भी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके गाने की फरमाइश पूरी करूँ। अभी जो हमारे पास मिला है जॉन डिकेस्ट्रो जी का आया है, इन्होंने लिखा है, ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम, और इन्हें गुड आफ्टरनून आपको, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने लिखा है, दिल बना के बढ़िया सुंदर सजा हो जाके भेजा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, और इन्होंने बोला है मैं इस फिल्म का ये गाना हमें मैम सुनवा दीजिए। और अभी आया है ताज मोहब्बत जी का, आदरणीय मैडम जी आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब, आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहान, आज़ाद नगर, लक्सार, हरिद्वार, उत्तराखंड से। मैडम जी हम भी कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी हमारा मेल शामिल हो और हम अपना नाम सुने और खुशी से झूम उठे। तो देखिए हमने आपको खुशी से झूमने का मौका दिया ना, आप खुश हो जाइए। ताज मोहम्मद जी आपका गाना जो है हमने प्ले कर दिया है। एम के राजी न्यू अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये सतीश अनेजा जी का है, नमस्कार राधा बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इन्होंने लिखा है चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और उन्होंने थैंक यू भी लिख दिया है। तो थैंक यू, हमने आपका मेल तो पढ़ लिया, पूरी कोशिश करेंगे कि गाने की फरमाइश भी हम पूरी कर सकें। ये आया है हमारे पास मेल जो है, ये आया है संदीप जी का आया है, फिल्म इस फिल्म का हमें ये गाना सुनना है, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगला वाला चौक, गोरिया, जलंधर, पंजाब से। अच्छा मतलब कितनी दूर दूर से मेल आया है भाई। देखिए समय जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम जल्दी से आपकी पसंद का गाना सुनवा दें, है ना।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात, और धीरे धीरे जो है हम कार्यक्रम के वाइंड अप की ओर आ चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से सबके नाम तो पढ़ ही दे। हमारे पास बहुत सारे जो मेल आए हैं उसमें से दिलीप रामेकर और शंभू दयाल, रणधीर गुप्ता, अब्दुल गफ्फार, मास्टर खीलू परवेज, मोहम्मद अमीन, लाल गिरी और स्वर्ण सिंह, संदीप मक्कर और रोज़ी डिकैस्ट्रो, शहरून नूर अंसारी, वारिस अली खान, ताज मोहम्मद, एम के राज और सतीश अनेजा, जोन डिकैस्ट्रो, उदय भान जी, अहमद फूलवाले, विराज मौर्या, अहमद फूलवाले, नवी हसन। अच्छा ऐसा है ना, नवीन हसन, बिट्टू। अच्छा ऐसा है कि आप एक ही व्यक्ति ना कई मैसेज उन्होंने भेज रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो नए मैसेज हैं वो रह जा रहे हैं। तो अगर आपने एक मेल कर दिया है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ढेर सारे मेल एक साथ भेजते रहेंगे ना तो जो नए मेल हैं वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बिट्टू गंगनेजा, मोहम्मद अमीन, नवी हसन, सतीश अनेजा और उत्तम कुमार भगत, मुकेश कश्यप, संजय साहू, है ना, ये सारे आप लोगों ने गाने की जो फरमाइश की है। तो चलिए हम वो गाना, इस प्रोग्राम का अंतिम गाना, क्योंकि जो कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है और अगला कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए सतरंगी दुनिया, तो इस आखिरी गीत को इंजॉय करिए हॉट मिल में।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान देशवासियों ने एकजुट होकर संकट का सामना किया था, पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच उसी सामूहिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय भावना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक संकट है जिसका असर ईंधन, खाद्य व उर्वरक आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऐसे समय पर हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाकर देश के आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूती दे। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक निजी मीडिया समूह द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपदा के समय NDRF, SDRF पंचायतों, राज्य निकायों, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी, गौपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, डेयरी क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। इस दौरान दुग्ध समितियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया, जहां अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा सैफई परिवार मौजूद रहा। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब यारी।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, 3:05 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया, जहां सतरंगी दुनिया में आज मैं हूं आपके साथ में आपकी दोस्त राधा। 3 बजे की दोपहर जहां धूप भी थोड़ी ड्रीमी लगती है और दिल में कहीं ना कहीं एक रील चलती रहती है सपनों की, लाइक्स की, फॉलोअर्स की, क्योंकि हम सिर्फ जीते नहीं खुद को शोकेस भी करते हैं। कभी फिल्टर से चमकती मुस्कान, कभी कैप्शन में छुपी फीलिंग्स, कभी दुनिया को दिखाने की कोशिश कि मैं परफेक्ट हूं। लेकिन एक सवाल, क्या हमारी लाइफ भी उतनी ही कलरफुल है जितनी हमारी टाइमलाइन है? तो मैं आपकी दोस्त राधा आज इसी पर सतरंगी दुनिया कार्यक्रम में बात करूंगी, जहां रंग असली भी होंगे और थोड़ा रियलिटी चेक भी होगा। अभी फिलहाल एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी 3:17 और 34:35 36 सेकेंड हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है सतरंगी दुनिया, जहां बातें सतरंगी भी हो रही हैं और वो बातें हो रही हैं जो आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। अच्छा ये बताइए, कितनी बार ऐसा लगा है आपको किसी की ट्रैवल रील देखकर कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, लेकिन वही रील बनाने के पीछे कितनी रिटेक्स होते हैं, एडिटिंग, फेक स्माइल और कितनी मेहनत, कभी आपने सोचा है? ये सोशल मीडिया एक स्टेज है जहां हर कोई हीरो बनना चाहता है, पर बैक स्टेज की कहानी कौन जानता है। आज हम बात करेंगे उस गैप की जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, और मूड कलरफुल रखने के लिए आज का जो गाना है ना, मतलब बैठे बैठे मुझे पता है आप बैठे बैठे वहां से डांस करने लगेंगे कि गाना ही इतना बेहतरीन है। तो चलिए हम भी और आप वहां से और हम यहां से डांस करते हैं।

जी 3:24 हो चुके हैं और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। आज हम बात करें रियलिटी चेक की। आजकल चेहरा नहीं, फिल्टर जो है ना, वो मूड डिसाइड करता है। स्मूथ स्किन, ग्लोइंग फेस, परफेक्ट जॉ लाइन। लेकिन एक छोटा सा सवाल, अगर हम खुद को बिना फिल्टर के पसंद नहीं करते

क्या वो कॉन्फिडेंस असली है? जो फिल्टर है वो फन है, लेकिन जब वो रियलिटी को रिप्लेस करने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि असली ग्लो तब आता है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करता है। आप ही सोचिए, क्या आपने कभी बिना फिल्टर की फोटो अपडेट की है, डाली है, आपने पोस्ट किया है, या फिर संकोच कर लिया कि भाई हम फिल्टर में ज्यादा अच्छे लगते हैं? क्या हमें दुनिया से पहले खुद को इंप्रेस करना जरूरी नहीं? जी हाँ, बात कर रहे हैं सतरंगी दुनिया में रियलिटी चेक की। सोशल मीडिया की रियलिटी आखिर क्या है? और सोचिए ना, वो दौर था जब हम टेलीफोन पे बात करते थे, और टेलीफोन का दौर जो है अब मोबाइल के दौर में आ चुका है। और अभी हम आपको सुना रहे हैं ऐसा ही प्यारा सा सॉन्ग जो आप सुन के पुराने दौर में चले जाएंगे।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जो आजकल की दुनिया है ना दोस्तों, दिखावे की दुनिया है। किसी की लग्जरी कार, किसी का एक्सपेंसिव कैफे, किसी की परफेक्ट कपल गोल्स वाली पोस्ट, और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया हाईलाइट दिखाता है, पूरी स्टोरी नहीं। कोई ईएमआई नहीं दिखाता, कोई झगड़े नहीं दिखाता। तो क्या हमें दूसरों की लाइफ देखकर अपनी हैप्पीनेस डिसाइड करनी चाहिए? क्या सच में खुशी लाइक से मिलती है या सुकून से? थोड़ा सोचिए, क्योंकि असली खुशी हमेशा कैमरे के पीछे छुपी होती है ना? तो अभी जो ये प्यारा सा जो सॉन्ग आ रहा है, उसे एंजॉय करिए और सुनते रहिए सतरंगी दुनिया।

जी 3:38 हो चुके हैं और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया। दोस्तों आज का जो यूथ है ना वो बहुत ही क्रिएटिव है, खुद को प्रूव करने की उसमें आग है, सोशल मीडिया ने उसे प्लेटफॉर्म भी दिया है, लेकिन जब वही प्लेटफॉर्म प्रेशर बन जाए तब बैलेंस जो है ना बिगड़ जाता है। ऐसे में आपको अपना बैलेंस संभालना बहुत जरूरी है। सपनों को उड़ान दीजिए लेकिन खुद को बोझ मत बनाइए। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ वायरल होना नहीं, खुश होना भी है। क्या हम अपने सपनों को जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं? आजकल कहीं भी कोई जाता है, खाना हो या कोई भी चीज खाने के लिए जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है, तो वो इंजॉय ना करके उसकी फोटो लेना जरूरी समझता है, सेल्फी लेना जरूरी समझता है। क्या ऐसा करने से जहां आप घूमने गए हैं

दोस्तों 3:44 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है सतरंगी दुनिया। कभी कभी ऑनलाइन रहते रहते हम ऑफलाइन फीलिंग्स जो है ना इग्नोर कर देते हैं। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे का डर जो है ना, ये धीरे धीरे अंदर जमा होता रहता है। और सच कहूँ इसमें ना ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। फोन साइड में रखिए, अपने पसंदीदा इंसान जो भी आपके घर में हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे बात करिए, म्यूजिक सुनिए और थोड़ा सुकून का पल खुद को दीजिए। मुझे बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद को सोशल मीडिया से छुट्टी दी थी? क्या कभी आपने खुद को बिना नोटिफिकेशन के वक्त दिया है? तो चलिए अभी आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग जो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है आपको। तुझे तक तक

तो दोस्तों, आज की सतरंगी दुनिया में हमने ये देखा कि सोशल मीडिया की चमक और उसकी सच्चाई, फिल्टर्स लाइफ को कलरफुल तो बना सकते हैं, लेकिन असली रंग हमारे अंदर है। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी है, हम जो हैं हम बेस्ट हैं। खुद के लिए समय निकालिए, खुद पे मेहनत कीजिए और एक ऐसा गोल जो आपको पाना है उसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए और देखिएगा ना, सफल एक दिन आप जरूर होंगे। फिलहाल अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, सोशल मीडिया जो है ना, वो ऐसा एक अस्त्र है जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एकदम बन जाएगी। लेकिन बस ध्यान ये देना है कि उसको खुद पे हावी नहीं होने देना है ना। सीखना है, आगे बढ़ना है, क्रिएटिव करना है, लेकिन अपने दायरे में रहकर। और देखिए ना, आपसे बात करते करते धीरे धीरे जो ये कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया अपने माइंड अप पे आ गया है। तो भाई अभी हमारे स्टूडियो में तरन्नुम जी भी आ गई हैं, तो अभी 4 बजे से आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर, लेकिन उसके बाद आपको आपके साथ होंगी तरन्नुम जी। तो भाई बहुत सारी बातें होंगी उनसे। और अभी अभी के लिए फिलहाल अभी अपनी दोस्त राधा को दीजिए अनुमति। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई सतरंगी दुनिया आपने सुना, सोशल मीडिया के बारे में आपने सुना, और सुबह हमने बात की थी बागवानी के बारे में, तो बहुत सारी बातें हुई आप लोगों से। और तरन्नुम जी भी आ चुकी हैं, तो भाई कैसी हैं आप?
1: राधा बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन वक्त तो बहुत कम है क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर, तो वाइंड अप कर दें।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देर ना करते हुए अब अगला कार्यक्रम आप सुनिए, और मुझे इजाज़त दीजिए और खुश रहिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात

0: आपकी सही है
1: जी
0: क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी,
1: जी
0: बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी
1: जी
0: वजह से वो रिटायर्ड शब्द है और वो मेरे लिए है पक्का. और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स.
1: दैट्स सो सो ब्यूटिफुल. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है? कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
0: विनीता जी, मैं आपको बता

0: सो ब्यूटीफुल. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है? कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज़ है जो मुझे विरासत में मिली है.
0: जी
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े. उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल. और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना. तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन के तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था. जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की. ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं. जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं. बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का. और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी.
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा. तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया. बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया. जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ. हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है. तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे.
0: अच्छा.
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह. तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी. इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था. सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली. एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती. सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है.
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की. उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है, कि हम मैसूर पहुंचे.

0: और मेरे फ्रेंड्स एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को, कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपकी इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा वो भी एयरफोर्स में।
1: जी हाँ।

0: सर्विंग है विंग कमांड अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं कभी हम उनके लिए गाते हैं.
1: बहुत ही बढ़िया. अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया, क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
0: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी. और उस लास्ट थॉट्स लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची सो एक वो अलग दुनिया थी. जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है. और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है.
1: So amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं. दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी. ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात. अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
0: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग.
1: रनिंग?
0: जी हाँ. ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में. बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो. सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने. लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था.
1: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना.
0: हो सकता है.
1: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
0: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल भी आसान नहीं है. डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी जो आपको लाइफ आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं. तो

0: फॉर यू, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन्ड है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है. मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
1: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
0: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी. क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही कैपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस

एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेज में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर. और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे. और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी. मैं

बहुत सारी बातें कर रही हूँ प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था?

0: टफनेस पे जाती है बिकॉज वो आसान नहीं होता है. वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
1: पूरे 14 किलोमीटर.
0: बिल्कुल. तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले. और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने.
1: True.
0: So, जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के श्री प्रणब मुखर्जी जी और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर मिस्टर बराक ओबामा. सो एक वो जो सलामी थी
1: जी.
0: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ. बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था बट वो एक हर महिला हर लड़की इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था सपना. कि उस राजपथ पे मैं चलूं. क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे दिमाग में होती है. और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं. तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था.
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें. बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके. प्रतीक्षा जी एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है. क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का. लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी. तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है.
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया. बहुत ही सुंदर. अच्छा प्रतीक्षा

0: बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का. पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया.
0: क्या बात है.
1: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि मी 17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं.
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है.
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ. और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है. और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे. और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है. तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
0: जी.
1: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है, लेकिन आपको उड़ना सिखाती है. लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था. तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ.
0: ओह माय गॉड.
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे. क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो.
0: इनर स्ट्रेंथ.
1: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है. दैट इज एक्चुअल फ्रीडम. एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो.
0: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी.
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता. ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी.
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
0: बहुत सुंदर.
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ, इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी

0: डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी।
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए पहली बात और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए
1: जी विनीता जी ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके सो तैयारी के हिसाब से देखिए मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए पढ़ाई में मन लगाइए क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए अच्छे नंबर लाइए और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं एफ कैट है जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है एक एग्जाम होता है तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी उससे आपका कोई निजात नहीं है उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है नहीं ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती मेरे लास्ट डे तक भी जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी पीटी परेड रनिंग जिससे मैं बहुत डरती थी वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के और अभी भी करती हूँ और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ तो ये कुछ प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते
0: कलाम साहब ने ये बात कही जी बहुत सुंदर और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है जानना है लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर

कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइसी वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी. दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं. बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं. आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए. तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए. ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी. नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ. आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है. नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी. देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते. सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए.

0: के कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें
1: जी,
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है। बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

0: विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: स्टे ट्यून टू 100.7।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार
1: लखनऊ की। नमस्कार, शाम के बजे हैं 5। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और LPG कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बरेली में नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर कहा कि यह राष्ट्रहित का मामला है और राष्ट्रहित के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेलवे ने कानपुर गंगा नदी के पुल पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया है। इस कारण आज से प्रतिदिन 8 घंटे के मेगा ब्लॉक को समाप्त कर दिया गया है। रेलवे ने 2 अप्रैल से 13 मई तक कार्य के चलते सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कानपुर से लखनऊ आने वाली डाउन लाइन का मेगा ब्लॉक लिया था। इस कारण मुंबई, पुणे, झांसी व आगरा सहित कई रूटों से आने वाली ट्रेनों को कानपुर में निरस्त कर दिया गया था। कुछ ट्रेनों को प्रयागराज होकर सीधे रवाना किया जा रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस मुरादाबाद के रास्ते प्रतिदिन लगभग 2 घंटे की देरी से आ रही थी। अंबेडकर नगर के सभी 899 ग्राम पंचायतों में पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को लेकर कल सुबह 9 से 10 बजे तक ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों से ग्रीन चौपाल के सफल आयोजन की अपील की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल 5:03 हो चुके हैं। प्रोग्राम टॉप 10 लेकर हाजिर है तरन्नुम, लेकिन आज टॉप 10 में पूरे 10 गाने अब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि पहुंचाएंगे बहुत ही खूबसूरत सी वार्ता जिसे की है प्रवीण कुमार ने और हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला, लेकिन कुछ ही देर में। उससे पहले कुछ ऐसे ट्रैक हम आप तक पहुंचाएंगे जो अपने ज़माने में काफ़ी हिट हुए, काफ़ी नाम किया और हर गली, हर मोबाइल, हर मोहल्ले में वो सुनाई दिए, जिसमें से है नंबर 1 पे ये ट्रैक।

जी हाँ, इस ट्रैक ने तो भाई आपके जो पैर है ना उनको थिरकने पे मजबूर कर दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट जो ट्रैक है जो कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाला है, इसमें जो आवाज़ है वो है सोनू निगम की और अलका याग्निक की, और स्क्रीन पर इस गाने के एनर्जी को और भी ख़ास बनाया था ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान ने। अब अगर हम इस गाने की बात करें तो सिर्फ ये एक सॉन्ग नहीं था बल्कि 2000s की यादों का एक कलरफुल पैकेज है, डांस, रोमांस और फुल मस्ती का साथ। जब ये ट्रैक बजता है फीट ऑटोमेटिकली डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ते हैं। तो बस क्या कहें, आप अपने मूड को करिए रिफ्रेश और इन्जॉय कीजिए ये धमाकेदार ट्रैक। ट्रैक कौन सा है, प्ले करते हैं, सुनिए।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: Stay tuned to चैनल सतरंगी रे।

और अब आप तक जो नेक्स्ट सॉन्ग पहुंचने वाला है, और क्योंकि 2000 जब सन आया था और ये जो गाने थे ये उस दौर के क्या सुपरहिट गाने हुआ करते थे, मतलब हर इंसान इसमें बस डूबा नजर आता था और जैसे ही ये गाने सुनाई देते थे तो लोग बस एकदम कह सकते हैं ना थोड़े सेंटी हो जाते थे। और कुछ गाने ऐसे थे, सच में ऐसे थे कि जिनकी म्यूज़िक पे काम किया गया था, जिनके अल्फाजों पे काम किया गया था, जिनका पिक्चराइजेशन पे काम किया गया था, मतलब एकदम फुल डोज जिसे कह सकते हैं वो पेश किया गया था। और अब जिस गाने की हम फरमाइश, मतलब आपने नहीं की है, दिल से मेरी फरमाइश थी कि ये ट्रैक हम आप तक पहुँचाएँ, और वो ट्रैक ऐसा जिसे अपनी एनर्जेटिक म्यूजिक और क्यूट केमिस्ट्री की वजह से फैंस ने बहुत प्यार दिया। इस गाने की मस्ती, रोमांस और कैची बीट्स आज भी प्लेलिस्ट को फ्रेश बना देते हैं। तो अगर आप भी किसी की यादों में हल्का सा खो गए हैं या चुपके से किसी को अपना आप दिल दे बैठे हैं, तो फिर ये जो नेक्स्ट ट्रैक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यस, दिल डूबा फ्रॉम द मूवी खाकी।

और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पत्रकार से वार्ता यानी रोंदेवों के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला से प्रवीण कुमार की बातचीत सुनते रहिए द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी.

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पत्रकार से वार्ता रोंदे वो यानी वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला से प्रवीण कुमार की खास बातचीत, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। दोस्तों, हम रोज खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं और टीवी पर देखते भी हैं, अब तो न्यूज पोर्टल पर भी देखते हैं। पत्रकार के पीछे का संघर्ष क्या है? समाचारों के चयन के दौरान उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? कैसे कुछ खबरों को लेते हैं जबकि शेष को छोड़ देते हैं? यह सब होता कैसे है? न्यूज पोर्टल में खबरों का चयन किस आधार पर किया जाता है? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। साथ ही कुछ समसामयिक मुद्दों पर उनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पत्रकार से संवाद के इस अंक में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद प्रवीण जी।
0: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि शैलेश जी करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिलहाल एक अग्रणी न्यूज पोर्टल में कार्यरत हैं। तो शैलेश जी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के इस दुनिया में कदम रखने का वह पहला विचार या प्रेरणा कहाँ से आई? बचपन का सपना था या किसी खास घटना का असर?
1: मैं कारगिल युद्ध के समय पे मुझे जो है काफी कुछ रुचि जगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पढ़ने और उनके बारे में जानने, डिफेंस से जुड़ी हुई खबरों को समझने, और उससे

0: मैं काफी प्रेरित हुआ, फिर मैं इलाहाबाद आया और यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करना शुरू किया। इस बीच में मैं करीब 5-6 साल लगातार पेपर पढ़ता रहा और पेपर से मेरी जो जुड़ाव है वो बहुत ही गहरा हो गया। मुद्दों को समझना, उनके बारे में तर्क वितर्क करना, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करना, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो समाचार आते थे उनको सुनना काफी पसंद करने लगा। तो जब मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने एक फ्रेशर्स के कार्यक्रम में मैंने न्यूज पढ़ी, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से समाज में न्यूज दिखाया जा रहा है। उस समय न्यूज के नाम पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती थी और अंदर कुछ और रहता था, तो काफी मतलब वो एक हास्य न्यूज था और उसको काफी लोगों ने पसंद किया। तो मेरे अंदर वहां से प्रेरणा जगी कि क्यों ना मैं, समाज में पत्रकारों के प्रति एक गलत भावना बन रही है, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर कुछ भी गलत दे दिया जाता है, तो मैं उसको सुधारूं और एक जो पढ़े लिखे तबके है उसको टारगेट करने की कोशिश करूं। और इसीलिए मैंने जो है पत्रकारिता की पढ़ाई किया मखलाल चतुर्वेदी से, फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत की।
1: जी, यानी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ने आपको पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया।
0: जी,
1: तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई?
0: मेरी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर जिले से हुई है, वहाँ पे मेरा गांव है बिलकथुआ और मेरे पिता जो है वो टीचर हैं, अभी वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने काफी मुझे प्रेरित किया पढ़ाई लिखाई के प्रति। मेरे दादाजी जो है वो आकाशवाणी पे आ चुके हैं, 1960 के दशक में मेरे खेती के कार्यक्रम को आकाशवाणी ने उसको कवर किया था। मतलब लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की हमेशा से जो है वो ललक रही थी और मैंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। फिर इलाहाबाद जब आया तो वहां पे जो है मेरे अंदर थोड़ा पत्रकारिता की तरफ रुझान बढ़ता गया, इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई किया, फिर मैंने उसके बाद एमजे किया, मास्टर इन जर्नलिज्म किया और फिर मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। और इसके बाद से लगातार मेरा जो रुझान रहा वो विदेश की खबरों पे ज्यादा रहा। इसके बीच में मैं कुछ दिनों तक यूपी की खबरों पे फोकस किया, मैं बनारस में रहा, पेपर में ज्वाइन किया वाराणसी में, वहां पे मैं सिटी डेस्क पे था, उसके बाद में फ्रंट पेज पे आया, मुझे वो काफी पसंद आया। ये जो दौर था पूरा 2009 से लेकर 2017 तक का गोल्डन पीरियड था वेबसाइट्स के लिए, लोगों के पास नए नए मोबाइल फोन आ रहे थे, डाटा का दाम था वो भी काफी कम हो गया, तो लोग मोबाइल पे न्यूज पढ़ना शुरू किए, तुरंत न्यूज मिलने लगी लोगों को, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता था। जब मैं बनारस में आया तो यहाँ मुझे सबसे अच्छा जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अवसर मिला वो चुनावी कवरेज था, वो करने को मिला। 2013 में पहली रैली कवर किया भदोही के पास में हुई थी और वहां से मेरे अंदर जो है एक जुनून आया कि क्यों ना मैं इस पत्रकारिता को अपने और आगे बढ़ाऊं। और उसके बाद मैंने पूर्वांचल के कई जिलों में जो है रैली कवर की और वो सारी चीजें मैंने अपने वेबसाइट को दिया और उस इनपुट का असर ये रहा कि कई बार मुझे अप्रिसिएशन भी दिया गया मेरे संपादक के जरिए, मेरे जनरल मैनेजर के जरिए। ये मेरे लिए प्रेरणादायक रहा और फिर मैंने और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की।
1: बिल्कुल, यानी करियर की शुरुआत तो आपकी हो गई इस तरह से जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या आपको आज भी वह अपनी पहली स्टोरी याद है जिसने आपको एक नई पहचान दे या पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एस्टेब्लिश किया?
0: एक चीज हुई थी, अभी पूरा जो मीडिया है वो एक्स यानी कि पहले का जो ट्विटर है उससे काफी खबरें बना रहा है। साल 2009 में 10 में करीब मेरे एडिटर थे उस समय, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं रिएक्शन आ रहे हैं उस पे न्यूज बनाना शुरू करूं। तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर न्यूज की समझ डेवलप हुई। हमारे उस समय के जो पॉलिटिकल एडिटर थे उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया, उनकी कॉपियां पढ़ता, उन्होंने मेरी कॉपियों को काफी पढ़ा, तो मुझे काफी प्रेरित किया कि ऐसे ही खबरों को पेश किया जाए और उनमें एंगल क्या हो और 5W1H का ध्यान रखना, ऑथेंटिसिटी का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। उससे जो मुझे न्यूज को सूंघने की जो आदत थी वो मेरे अंदर आ गई और आज भी मैं जो है दुनिया के 20 से 25 न्यूज़पेपर्स को पढ़ता हूँ, 4 से 5 बड़ी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी न्यूज को देखता रहता हूँ और अभी मैं पिछले 6 साल से करीब मैं विदेश डेस्क का प्रभारी हूँ ऑनलाइन में। और जो ट्रेनिंग हुई और वो जो मैंने खबरें बनाई उसका मुझे बहुत फायदा होता है। मैं एक मिनट में समझ लेता हूँ कि किस खबर में मुझे क्या चीजें उठानी है, किस चीज पे एंगल पे फोकस करना है, जनता के लिए क्या जरूरी है, भारत के लिए क्या जरूरी है। तो ये चीजें मुझे जो है उस समय से सीखने को मिली और आज भी उसका मुझे लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि विदेश से जुड़े हुए खबरों को बनाना या उसकी स्टोरी को बनाना आपको ज्यादा पसंद है, तो ये खबरें को लेने का स्रोत क्या होता है, कैसे आप उनको एस्टेब्लिश करते हैं कि सत्य है या असत्य है, विशेष करके आज के युग में जब कई सारे फेक न्यूज चल रहे हैं?
0: प्रवीण जी, ये जो दौर चल रहा है ये डीप फेक का दौर आ गया है। अब इसमें यह है कि आदमी का वीडियो बना करके, उसकी वॉइस भी बना करके एक नकली वीडियो बना दिया जा रहा है, पता ही नहीं चल पाता जो सामने वाला देख रहा है असली है या नकली है। इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेनिंग किया जिसमें फेक न्यूज की, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से फेक न्यूज को पहचाना जा सकता है। और जहां तक रही बात सोर्सेज की, तो हमारे सोर्स जो है उनमें न्यूज एजेंसी है, जैसे जो न्यूज एजेंसी है ये हमें काफी खबरें देती रहती है, तो हर देश का जो मीडिया है वो लगातार हमें खबरें देता रहता है और हमें उसको पहचानना कि हमारे एंगल से क्या जरूरी है, भारत

0: के लिए क्या जरूरी है, एक लार्जर ऑडियंस है वो क्या पढ़ना चाह रही है। तो ये जो एजेंसियां हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक खबरें देती हैं, और हम इसको लेने के बाद भी एक दो बार क्रॉस चेक करते हैं दूसरी एजेंसियों पे, उनको देखते हैं कि ये क्या दे रही हैं। तो जो हमारा सोर्स होता है वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि उसको ऑथेंटिक रखा जाए। तीसरा स्रोत ये होता है कि जैसे आज दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं तो ये अपनी बात खुद ही जो है लिखते रहते हैं, हम वहां से सीधा उनका इनपुट उठाते हैं और जो भी बातचीत रहती है या जो भी उनका बयान रहता है हम वहां से लेते हैं। तो जो ऑथेंटिक सूचना है वो जनता तक पहुंचती है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहती है जो भी किसी नेता का बयान है उसके पीछे की क्या कहानी है, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों को अपने पाठकों को हम बताते हैं, जिससे क्या है कि एक कंप्लीट नॉलेज है वो हमारे पाठकों को मिलती है और उनको वैश्विक मामलों की एक समझ डेवलप होती है।
1: बिल्कुल, यह तो बात होगी पत्रकारिता की। और क्या आपकी निजी रुचि है?
0: मुझे जो है वो पढ़ना और पढ़ाना काफी पसंद है। मुझे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस के जरिए जो बड़े मुद्दे रहते हैं मैं लोगों को समझाऊं कि क्या है और उसके पीछे की क्या कहानी है। इसके अलावा मुझे गाने सुनने भी पसंद हैं, तो मैं कई बार गाने भी सुनता रहता हूँ।
1: बिल्कुल, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मुझे काफी पसंद है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैं इसको सुनना पसंद करता हूँ।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दिनों जो पत्रकारिता की बात करें, तो अच्छी खबर लिखने के लिए भाषा पे पकड़ बेहद जरूरी होता है, विशेष करके जब आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख करके लिख रहे हों, उनके बेस पे लिख रहे हों। तो भाषा पे पकड़ के लिए आप क्या कुछ किया?
1: देखिए, जो भाषा है उसको समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। कई बार चीजें कही जा रही हैं और उसके पीछे का मतलब बहुत कुछ दूसरा होता है। तस्वीर से जो भाषा है इसको आपको समझ के लिखना पड़ेगा। दूसरा ये है अंग्रेजी, अगर आप हिंदी में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ रखनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप स्थानीय स्तर पे कर रहे हों या आप वैश्विक स्तर पे पत्रकारिता कर रहे हों। तो भाषा की समझ जो है वो आपको मदद करती है। किसी विषय पे मान लीजिए आप स्थानीय स्तर प्रदूषण पे खबर लिखनी है, तो आप उसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो अच्छी जानकारी आपको इंटरनेट पे अंग्रेजी में काफी मिल जाएगी। तो आप उसको जब समझ पाएंगे तभी आप प्रदूषण के बारे में खबर लिख पाएंगे कि ये प्रदूषण क्या है और इसका क्या असर पड़ता है। किसी एक्सपर्ट का कोट डाल सकते हैं। तो भाषा जो है आना जरूरी है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो भाषा पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है। तो ये दिक्कतें हैं। अगर कोई नया आना चाह रहा है इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो भी खासकर हिंदी की पत्रकारिता में, तो उसको हिंदी में कम से कम लिखना आना चाहिए, उसमें टाइपिंग करना आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा कि एक और पहलू ये है कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो आम जन के बोलचाल की भाषा हो, जिसमें सब लोग समझ सके, चाहे वो जनरेशन जेड का आदमी हो और वो चाहे आपके बुजुर्ग हो, सब उस भाषा को समझ सके। तो ऐसी भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो सबको समझ में आए और जनता उसको इस्तेमाल कर रही हो। हमारी हिंदी जो है वो कई तरीके की बोलियों में बटी हुई है। बिहार में कुछ और तरीके की भाषा है, राजस्थान में कुछ और है, पता लगा कि हरियाणा में कुछ और तरीके से बोला जा रहा है। हमें लार्जर ऑडियंस के लिए अगर खबर लिखनी है या बोलना है तो उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सभी लोग बोलते हैं, मानकों के हिसाब से हो वो।
0: तो भाषा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
1: मेरा मानना है कि किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे जो लेखक हैं उनकी किताबों से आपको ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि जो आपकी कमियों को दूर करेंगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएंगी और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगी कि किसी भी मुद्दे को किस तरीके से पेश किया जा सकता है। तो किताबों को पढ़ना, साथ ही साथ आकाशवाणी है, इसमें मैं देखता हूं कि हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी न्यूज दी जाती है तो उसमें हिंदी बहुत ही अच्छी होती है। तो एक जो मानक हिंदी है उसका आकाशवाणी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपनी हिंदी सुधारनी है तो आकाशवाणी को सुनना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, अखबारों को पढ़ना चाहिए, इससे आपकी समझ विकसित होती है।
0: बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में खबरें बिल्कुल एक क्लिक पे उपलब्ध हैं, लेकिन जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, कैसा बदलाव देखते हैं उस दौर की पत्रकारिता और इस दौर की पत्रकारिता में?
1: देखिए, उस समय जो है जब मैंने करियर शुरू किया 2009 के आसपास, तो उस समय जो न्यूज एजेंसीज होती हैं या रिपोर्टर होते थे यही जो है खबरों के स्रोत होते थे। ये अब जो दौर आया है, अब खबरों के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं। आप देखिए, ट्रेन में ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो आपको लगता ही नहीं कि ये किसी पत्रकार ने शूट किया है या किसी आम आदमी ने। इसी को कहा जा रहा है एक सिटीजन जर्नलिज्म जो है,

0: वो बढ़ रहा है। ये जो 2009 से 2026 का मैं जो देख रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि मिसयूज भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। इससे क्या है कि सूचनाएं लोकतांत्रिक हो गई हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का कार्टेल था कि कुछ खबरों को दबा दिया जाता था, कुछ खबरों को वो अपने हिसाब से पेश करते थे। लेकिन अब जो ये नया दौर आया है, इसमें आप देखिए यूट्यूब पे या एक्स पे या फेसबुक पे हर आदमी अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके के जो फर्जी सूचनाएं हैं, इनकी एक बाढ़ सी आ गई है। तो जनता के पास कचरा वाली नॉलेज जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये नया दौर है, ये खतरनाक भी है और अच्छा भी है।
1: यानी कहीं ना कहीं व्यूज के लिए भी ऐसा किया जाता है
0: जी।
1: लेकिन कई बार ये भी देखने में आ रहा है, युवा पीढ़ी में पढ़ने और सुनने की आदतें बदल रही हैं। उन्हें समाचारों से जुड़े रखने के लिए, ऑथेंटिक खबरों से जोड़ने के लिए क्या कुछ हमारे चैनल या अखबार या फिर आपके न्यूज पोर्टल क्या कुछ खास कर रहे हैं?
0: देखिए, ये चीजें हम लोग भी फेस कर रहे हैं और अब हमारा मुकाबला हर आदमी से होता है। अब कोई फर्जी सूचना दे दे रहा है, उसको बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं। अभी जो नए कोर अपडेट आए हैं, उसके हिसाब से ऑथेंटिक वेबसाइटों को आगे बढ़ाना शुरू किया है जो सही सूचनाएं दे रही थी। और हमारे स्तर पे ये प्रयास हो रहा है, जो डिजिटल मीडिया है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स के जो है वो पेजेस जो होते हैं उनको वेरीफाइड कराया जा रहा है और उनसे ऑथेंटिक सूचनाओं को दिया जा रहा है। हर खबर को 2 से 3 बार उसको चेक किया जाता है। वेबसाइट्स आ गई हैं जो फर्जी सूचनाओं को प्रसार पे तुरंत काम कर रही है। अगर कोई सूचना ऐसी आ रही है तो उस पे तुरंत लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं।
1: बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनना चाहेंगे।
0: मुझे थोड़ा देशभक्ति के गाने भी काफी पसंद है, तो मैं एक गाना सुनना चाहूंगा, ऐ जाते हुए लम्हों। ये गाना मुझे काफी पसंद है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला जी, और हम बातें कर रहे हैं पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में। तो शैलेश जी, पत्रकारिता में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, AI का क्या प्रभाव देखते हैं?
1: देखिए, AI जो है वो काफी कुछ बदलने जा रहा है, और मैं जनता से या श्रोताओं से भी कहूंगा कि AI को लेकर के थोड़ा सजग रहें और खुद को AI के लिए तैयार करें। स्थिति ये है कि मीडिया हो या IT सेक्टर हो या कोई ऐसा समाज का सेक्टर नहीं बच रहा है जहां पर AI का असर नहीं आ रहा है। AI जो है वो पत्रकारिता में कई तरीके से प्रभाव डाल रहा है। जैसे पहले जो डिजिटल पत्रकारिता में हम लोग खबरें बनाते थे, उनको प्रसारित किया जाता था, और पहले जो सूचनाएं हम लोग देते थे या जो भी खबरें हम देते थे उसको गूगल पे लोग सर्च करके पढ़ते थे, अब वो चीजें खत्म हो रही। AI से जो सूचनाएं हैं उनके लिए कोई भी खबर आती है तो हमें रिसर्च करना काफी आसान हो गया है, ये फायदा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी विषय पे सर्च करते थे, पहले 4 से 5 वेबसाइटों को पढ़ना होता था, अब ऐसा नहीं है। AI से आप वीडियो भी बनवा सकते हैं, आप AI से फोटो जनरेट करवा सकते हैं, AI से आप वॉइस भी बनवा सकते हैं किसी भी चीज का। तो इसका बहुत तेजी से इस्तेमाल मीडिया में होने लगा है। AI एंकर आ गए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल जो है AI एंकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीडिया आने वाले 2-3 सालों में काफी बदलने जा रहा है। मेन चीज रहेगा कि आपका ब्रांड कितना मजबूत। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं जो न्यूज देते थे, पहले वो केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, अब उन्होंने यूट्यूब पे बकायदा अपना चैनल बना लिया है और लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये ह्यूमंस को खत्म नहीं कर पाएगा। हमें अपने आप को ऑथेंटिक सूचनाओं पे, ऑथेंटिक

0: स्टोरीज पे काम करना पड़ेगा। तो अब जो जमाना आएगा पत्रकारिता का, उसमें आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, और जो डेस्क वर्क करते थे उनके लिए भी अब ये रहेगा कि उनको अपनी जो तार्किक क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि कोई सूचना उनके पास आ रही है तो उसका असर क्या होगा और उसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब बताना आना चाहिए।
1: बिल्कुल, जो कि सिर्फ मानव ही कर सकता है या एक हमारे मददगार हो सकता है, लेकिन पूरे एंगल को समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना और लोगों के हित में क्या हो सकती है सूचनाएं, उसे सिलेक्ट करने का काम सिर्फ मानव ही कर सकता है। वह खबर जिसे कवर करना आपका सपना हो, वैसे तो आपने बहुत सारे खबरें कवर की हैं।
0: मौका मिले तो मैं एक बार अपने विदेश मंत्री का इंटरव्यू करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि उनका जो एक पर्सपेक्टिव था पिछले 4 से 5 सालों में, जो भी उन्होंने बातें कही उसका पूरी दुनिया में असर हुआ। वो एक ऐसे नेता उभरे जिन्होंने इंडिया का जो ब्रांड था उसको काफी आगे बढ़ाया। हम जहां भी वैश्विक मंचों पे देखते हैं वो बहुत ही सटीक तरीके से और फैक्ट के साथ जवाब देते हैं, और अगर कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं उनका इंटरव्यू जरूर करना चाहूंगा।
1: जी, चलते चलते जानना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता को अपना करियर बनाना चाहती है या जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में सक्रिय हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
0: देखिए, मुझे जो लगता है गिग वर्क्स को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी पत्रकार को अब वर्सटाइल होना पड़ेगा, उसको एडिटिंग भी आना चाहिए, उसको न्यूज कवरेज भी आना चाहिए और उसको वॉइस ओवर भी आना चाहिए, उसको हर तरीके से पारंगत होना पड़ेगा, तभी वो आने वाले दौर में खुद को जो है प्रासंगिक बना पाएगा। और दूसरा ये कि मुद्दों की समझ बहुत जरूरी है। आज जो जमाना आ रहा है उसमें पढ़ने लिखने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, वो बस केवल चाहते हैं कि फटाफट उनको जो है सफलता मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हमें किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। चीजों को जब आप समय देंगे तो मुद्दों को समझ पाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। आप कुछ समय के लिए हो सकता है वायरल हो जाए, लेकिन अगर लंबे समय तक काम करना है तो आपको एक पत्रकारिता का जो बेसिक वसूल है 5W1H, उनको आपको याद रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: श्रोताओं, आज के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

फंसे हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए। सभी जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले, तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपदा के समय NDRF, SDRF, पंचायतों, राज्य निकायों, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के क्रम में आज अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित कार्यालय तक साइकिल से पहुंचे। श्री खन्ना ने कहा कि डीजल एवं पेट्रोल जैसे ईंधनों की बचत करना प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है, क्योंकि देश में लगभग 85-86% पेट्रोलियम उत्पादों का आयात विदेशों से करना पड़ता है, जिस पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय होती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को 17 मई 2026 तक के लिए पुनः विस्तारित किया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। संत रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्राकृतिक आपदा

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, जाने वो कैसे मुखद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। उनसियत का सलाम आदाब सत श्री अकाल। 4:04 प्रोग्राम शाम आवर तरन्नुम है आपके साथ सुनते।

इम्प्रूव कर लें तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत दूर जा सकती हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई ये गर्मी आ रही है, ऐसे में शरबत अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसको पी लेते हैं, फ्रिज में गया ठंडा ठंडा पानी पी लिया, लेकिन जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं उनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। देखिए सौंफ की बात की, इसकी जो तासीर होती है यानी जो इसकी क्वालिटी होती है वो ठंडक देना होता है हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को। दूसरी चीज़ क्या है कि शरबत में अगर हम बात करें बेल का शरबत, यानी गर्मियों में जितनी भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, कब्ज़ होता है, एसिडिटी होती है और मोशंस होते हैं, लूज मोशन होते हैं, और पेट की गर्मी के लिए रामबाण है ये बेल का शरबत। और अगर आप इसको लेते हैं, रोज़ लेते हैं, तो लू से आप बचे रहते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। और अगर आप रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। बहुत महंगा नहीं है, घर में आप इसको ला के बना सकते हैं। बच्चों के सामने जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, बच्चे जब ये सब देखेंगे तो पर ये बात एक कहानी नहीं बन जाएगी। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये बेल का शरबत क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। बच्चे आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे ये कहेंगे कि भाई अगर आप शरबत पी रहे हैं बेल का तो फिर हमें भी दीजिए एक गिलास। फिलहाल एक ट्रैक आप तक।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: हुआ झुमका।
1: अब देखिए लोग कहते हैं कि भाई एक ज़िंदगी है, क्या है ज़िंदगी कट जाएगी, अरे अब बहुत कट गई ज़िंदगी, इतनी सी बाकी है ज़िंदगी वो भी कट जाएगी, अब क्या करना है, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन भाई ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ कम से कम 100 झमेले हैं। 100 झमेले का मतलब ये है कि भाई खाना भी खाना है, अब लाइट है तो लाइट भी जलानी है, लाइट का बिल भी देना है, खाना ख़रीद के लाना है, ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए हैं, पैसे के लिए मेहनत करनी है, मेहनत के लिए क्या करना है कि आपको इधर उधर हाथ पैर जो कहते हैं ना लोग मारते हैं वो सारी चीज़ें करनी है। यानी मेहनत मशक्क़त से जो पैसे मिलते हैं ना उसमें जो बरकत होती है, उसमें जो कह सकते हैं कि एक ख़ास बात होती है, वो आपको ऐसे कोई पैसे दे दे, मतलब आप रोज़ किसी के दरवाजे पे खड़े हो भैया 200 रुपये दे दो, भैया 1000 रुपये दे दो, एक बार दो बार कोई दे देगा, लेकिन बार बार अगर आप किसी से मांगते हैं या एक बार भी अगर आपने मांग लिया तो ये जो मांग है ना ये फिर हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसलिए क्यों ना भाई ऐसा किया जाए कि आप खुद कुछ मेहनत कीजिए, खुद कुछ ऐसा काम कीजिए कि भले थोड़े पैसे ही सही, ख्वाहिशें तो कहा जाता है ना कि कहावत है कि ख्वाहिशें तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं, राजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो एक फ़कीर होता है, भिक्षुक होता है, उसकी भी पूरी हो जाती हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपकी ख्वाहिशें हैं या आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत आपको ज़रूर उतना मिलता है, ऊपर वाला उतना देता है जितनी की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल सही 100% बात सही है। लेकिन भाई ये भी है कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि भाई उसको देखो कितना पैसा उसके पास, उसको देखो गाड़ी कितनी अच्छी है, उसको देखो उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो फिर भाई मेहनत कीजिए कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। फ़िलहाल अब ज़िंदगी में क्या है, लाइट की ज़रूरत है और बिजली, मतलब आसमान वाली बिजली, उससे भी बच के रहना है। लेकिन जो ये वाली बिजली है इससे बच के हम आप नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अब आदत हम लोगों को ऐसी है कि बिजली अगर ज़रा सी देर के लिए भी चली जाए या बिजली कनेक्शन ना मिले या बिजली का बिल ना जमा हो तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि शहर से लेकर गाँव तक फ्राइडे से यानी कल से 15 मई से 8 दिवसीय मेगा बिजली शिविर लगाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इस कैंप में जो गलत बिल हैं उनको सही करने से लेकर नए कनेक्शन देने तक का काम होगा। अब क्या है कि इस शिविर में राजधानी के यानी लखनऊ के जितने भी खंड हैं उनके इलाकों में 15 से 22 मई तक ये शिविर जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है। और दिल अगर सुकून में आ जाए यानी दिल को अगर ठंडक पहुंच जाए तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, दिल अगर आपका मुतमईन है, सेटिस्फाई है आप, तो फिर कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती है। फ़िलहाल एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैक है जो थोड़ा सा डांस नंबर है और 6:24 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध तरन्नुम में आपके साथ, सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
5: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
4: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
5: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
6: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

अब से कुछ ही साल पहले तक लड़कियां अपना बड़ा ध्यान रखती थी, मतलब खुद से वो फेस पैक बनाती थी, खुद से वो अपनी कलाइयों को देखती थी, खुद से वो बेसन का लेप लगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी अपने बालों में दही लगा रही हैं, कभी अपने आईने में जाके चेहरे को देख रही हैं, कभी अपने कपड़ों को निहार रही हैं। और ये भी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़के भी जो हैं वो थोड़ा सा लड़कियों को देखते थे कि भाई चलो ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत कायदे की है। लड़कियां भी कहती थी कि भाई ये जो लड़का है बहुत काबिल लड़का है, बहुत पढ़ाई लिखाई करती है। लेकिन अब आप देखिए, लोग एक दूसरे को देखते ही नहीं है, लोग सिर्फ मोबाइल को देखते रहते हैं। और स्पेशली जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो मोबाइल है कितनी सारी चीज़ों की जड़ है, मतलब दुश्मनी की जड़ ये मोबाइल है, घर में जो ग्रह में जो कलेश होते हैं उनकी जड़ क्या ये मोबाइल है, लड़कियों की जो सेहत ख़राब हो रही है उसकी भी जड़ ये मोबाइल है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IAS बने हैं, PCS बने हैं, जिन्होंने इस मोबाइल से ना जाने कितनी तरक्की की है, कितनी कामयाबी हासिल की है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका एक टाइम मैनेजमेंट होता था, उनका एक टाइम मैनेज करके चलते हैं कि इतने घंटे हमें स्क्रीन को देना है, इतने घंटे हमें सोना है, इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी है और सोशल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल में रहें, मतलब आप अगर सामाजिक नहीं हैं, समाज में रह के अगर आप कट के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आप नुकसान उठा लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आप मेल मुलाकात रखिए, क्योंकि सबसे पहले वही लोग काम आते हैं, और उसके बाद आप मोबाइल को देखिए। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।

जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग नज़र आते हैं, दूसरों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं हैं, तो जो अमीर लोगों की बहुत ज़्यादा महफिलें होती हैं, जो उनकी पार्टीज़ होती हैं, उनसे जहाँ तक हो सके बचिए, मत जाइए आप, अगर आपके पास नहीं है। अब ये थोड़ी ना कि आप उधार ले रहे हैं या आप कहीं हाई क्लास में जा रहे हैं, तो ये किसने कहा है आपको, आप मत कीजिए, आप सिंपल लाइफ जीजिए अगर आपके पास जो पैसे हैं। लेकिन अब स्क्रीन की लत है, उसमें क्या हो गया है कि जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाओं की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी में से एक है ओवेरियन सिस्ट। और ये जो हो रहा है, ये जो गांठ बन जाती है ओवरी में, इसका सबसे जो पहला के जीएमयू में जो रिसर्च किया गया है 31 से लेके 50 साल की जो महिलाएं हैं उन पे, तो इसके होने से क्या है, कैंसर का खतरा है, और आप मम्मी भी नहीं बन सकती हैं, बांझपन होने का ख़तरा है। इसलिए सोचिए ज़रा, बार बार केजीएमयू बता रहा है, बार बार एक से एक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा पैकेट बंद डिब्बे के आप खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स आप ले रही हैं, तो सोचिए ज़रा कि आपकी लाइफ में, मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें शादीवादी नहीं करनी, हमको अपनी लाइफ पसंद है, लेकिन हर चीज़ का एक तय होता है टाइम, कौन सी चीज़ कहाँ पे कब करनी है, ये सारी चीज़ें कुदरत ने हमें और आपको समझा के भेजी हैं। इसलिए बहुत सारी जल्दी जल्दी चीज़ों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत देर कर देते हैं, जो कि जल्दी करनी चाहिए, तो फिर मुसीबत खड़ी होती है। और चलिए ठीक है भाई, अगर आपको नहीं लाइफ अपनी नहीं चाहते आप कि आप मैरिड लाइफ जिए, नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ से बिल्कुल श्योरिटी है कि आपके अंदर ओवेरियन सिस्ट नहीं होगी। तो अपनी सेहत को आपको बनाना है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत दरकिनार करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई हमने अपना करियर बना लिया है, मम्मी शादी करनी है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, केजीएमयू के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको मम्मी बनना है, तो आप 30 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके आप मम्मी बन जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इससे बचने के लिए क्या है, सबसे पहला उन्होंने बताया है कि सबसे पहला जो काम है वो स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका जो वज़न है, आपका जो शरीर है, उसको आपको बैलेंस रखना है, नियंत्रित करना है। और दूसरी चीज़ ये स्क्रीन लत है, लत है, इसको कम कीजिए, लाइफ स्टाइल को सुधारिए, मेंटल स्ट्रेस से बचिए, नमक बहुत ज़्यादा मत लीजिए डाइट में, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, इन सारी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो पहले से आपको आगाह किया जा रहा है, पहले से, इससे पहले कि बीमारी बहुत ज़्यादा गहराती जाए, बहुत ज़रूरी है कि आप संभल जाइए। और गहराने से याद आया कि 6:39 हो चुके हैं, और अरिजीत गहरा हुआ जो ट्रैक है, यस, ये ट्रैक आप

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: और आपको वक्त बता दें, 6:44 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है शाम में, तरन्नुम है आपके साथ। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

और सच में जिस चीज का इंतजार था लोगों को वो दिन आज आखिर आ ही गया। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई ट्वेल्थ में जो बेटियां थीं, जो बेटे थे, उनकी जो इंतजार था कि कितने परसेंटेज आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, वो सारा इंतजार आज खत्म हो गया। आज सिर्फ पढ़ाई की, इस वक्त हम पढ़ाई की बात करेंगे। और भाई नो डाउट ये जो ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है ना, इसमें बेटियों ने जो है वो बाजी मारी है और 86.30% जो सक्सेस है वो उनको मिली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लड़कियों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और पढ़ाई की अगर बात करें तो भाई अगर आपका बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, जो हमारे लिसनर हैं उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो उनके पास जाके बैठना शुरू कीजिए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए जो पढ़ाई करते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे टाइम टेबल को मेंटेन करना है, कैसे वक्त निकालना है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ों को स्किप करना है, ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे। और पढ़ाई भाई अब ट्वेल्थ हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब एलयू की तरफ लोग रुख करेंगे। कुछ लोग हैं जो अपना और कोई कोर्स करेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय और AKTU में अब आपको बता दें कि सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी। और ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि नो व्हीकल डे जो है वो भी मनाया जाएगा। तो AKTU में एक दिन नो व्हीकल डे है। और साथ ही साथ ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी ईंधन बचत की अपील के बाद ये डिसीजन लिया गया है, फैसला लिया गया है कि अब 5 दिन ही पढ़ाई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको अब अपनी बात करें, मतलब ये जो फैसला इन लोगों ने लिया बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिल तारीफ ये फैसला लिया गया है। लेकिन अगर हम अपनी और आपकी बात करें तो जितना हो सके ये जो फ्यूल है, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, इसको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है, आप अकेले तन्हा जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही बुज़ुर्ग है या कोई ऐसा मतलब काबिल एतमाद जिसे कहते हैं, भरोसे के लायक कोई आपको लग रहा है, तो आप उसे लिफ्ट दे सकते हैं, आप उसे कुछ दूर छोड़ सकते हैं। या अगर आप कोई ऐसी कॉलोनी में

रहते हैं, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, उनका बच्चा भी स्कूल जाता है, तो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, एक ऐसी खूबसूरत मोहब्बत का माहौल बनाया जाए जिससे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। और जो बहुत पहले हुआ करता था कि लोग पूरे पूरे घर की चाबियां, घर के जेवर सब कुछ दे जाते थे मोहल्ले वालों को, और इतना ट्रस्ट होता था कि कुछ भी खाना बन के आ रहा है, इधर से खाना बन के उधर जा रहा है, त्यौहार में सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अगर कर ली जाएँ तो बहुत सारी चीज़ों से हम और आप ज़िंदगी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो बस एक चीज़ ये भी है, ये भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों ना कर लिया जाए।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।

0: करता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 5:56 हो चुके हैं, तो आप तरन्नुम को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम शामियत को वाइंड अप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो एफएम। डायल कीजिए 2238852 2238842। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

नमस्कार। शाम के बजे हैं 7। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रदेश में कल बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की हो गई मौत। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर सर्वे पूरा कराने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि NDRF ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का जीता विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक निजी मीडिया समूह द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाकर देश के आत्मनिर्भरता अभियान को दे मजबूती। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध शासकीय और वित्त पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रदेश

पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर में कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज लखनऊ में प्रदेश के आयुष महाविद्यालय, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 26 का किया गया आयोजन। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया उद्घाटन। रेलवे ने कानपुर गंगा नदी के पुल पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया है। इस कारण आज से प्रतिदिन 8 घंटे के मेगा ब्लॉक को किया समाप्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा सैफई परिवार रहा मौजूद। और बांदा जनपद के कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आज एक निजी वाहन के ट्रक से टकराने के कारण हुए हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो तरन्नुम के साथ।

और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम स्वागत खुश आमदीद 7:02 प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर हाजिर है तरन्नुम डायल कीजिए 22 37 745 22 37 752 और ये है नंबर्स जिन पे आप सुन सकते हैं अपने रिक्वेस्टेड नंबर्स

0: पर एक नंबर है जिस पे लाइन पे हमारे साथ कोई हंस बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी बताइए कौन बोल रहे हैं। अल्तमश आप ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो कर उठे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: सो कर नहीं मैम, बताएं आपसे पहली बार बात।

0: और एक नंबर है जिस पे लाइन पे हमारे साथ कोई हंस बात करते हैं। हेलो हेलो जी बताइए कौन बोल रहे हैं। अल्तमश आप ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो कर उठे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: नहीं मैम बताएं, आपसे पहली बार बात हो रही तो।
0: अच्छा डर डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी है ना? क्यों डर लग रहा है आपको?
1: नहीं सोच रहे थे कैसे मिलाएंगे कैसे बोलेंगे आपसे।
0: तो ऐसे ही मिलाया आपने और ऐसे ही बोल रहे हैं आप, तो ऐसे ही बोलिए आप। क्या करते हैं अल्तमश?
1: मैम आपको हम सुनते थे रोज, लेकिन मैम कॉल कभी नहीं लगाना आपसे बात ही, लेकिन आज लगा रहे थे तो लग गया तो आपसे बात भी हो गई।
0: अच्छा लग गया, चलिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। क्या करते हैं अल्तमश, पढ़ाई करते हैं?
1: हाँ बस पढ़ाई ही करते हैं।
0: अल्तमश मतलब क्या है इसका?
1: अल्तमश पता नहीं, अल्तमश अली नाम है पूरा।
0: अच्छा अल्तमश अली, अली तो वही पता है हमें, लेकिन अल्तमश का मतलब क्या है आपने बताया नहीं। अलतश का मतलब ये होता है कि भाई बहुत प्यासे हैं, लेकिन अल्तमश का मतलब नहीं पता हमें, बताइए आप, आपको नहीं पता?
1: मैम हमें भी नहीं पता है।
0: तो किसने रखा आपका नाम, मम्मी पापा?
1: नहीं हमारी जो बुआ थी उन्होंने ही रखा है।
0: बुआ थी मतलब अब नहीं है?
1: नहीं जैसे हमारे मोहल्ले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा मोहल्ले में है। अच्छा तो बुआ से पूछ लीजिए कि भाई आपने अल्तमश नाम रखा है तो इसका मतलब क्या है।
1: नहीं मैम एक धारावाहिक आती थी पता नहीं कौन सी, तो उसी में से देखकर नाम रख दिया, कहते थे कि बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा हीरो था।
0: तो आप अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं।
1: नहीं मैम हम कहाँ खूबसूरत।
0: अरे अब ये थोड़ी ना कहा जाता है, जैसा आपको बनाया है ना ऊपर वाले ने, आप बहुत खूबसूरत इंसान है, पता है आपको, बहुत अच्छे इंसान है आप। हमेशा आप ये सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आप बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छे अच्छे काम करते हैं आप, लोगों की मदद करते हैं?
1: बहुत मदद करते हैं, बूढ़े लोगों को पानी भी दे देते हैं और सबसे छोटे बच्चों से अच्छे से बोलते हैं।
0: क्या बात है, आप कितने बड़े?
1: हम बड़े हैं मतलब।
0: हाँ मतलब कितनी एज, कितनी है आपकी
1: एज? है 16 साल।
0: अरे अरे अभी तो आप बहुत छोटे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप छोटे हैं बड़े हो जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करते रहिए। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और गाना जो आपने पसंद किया एकदम यूनिक गाना है, बताइए किसको सुनवाएंगे?
1: ये मैम आपको सबसे पहले सुनवाना चाहते हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: सोच रहे थे कि आप रोज आए और बहुत दिन से आपको से यानी सुना नहीं आपकी आवाज।
0: अच्छा तो आज आपने सुन ली, चलिए बहुत अच्छा लगा। और दोबारा आप कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? आपकी पसंद का ट्रैक आ रहा है अब तक। वेल 7:10 प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

0: 7:14 हो चुके हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग टू यू टू। कौन बोल रहे हैं?
1: जगपाल यादव।
0: जगपाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बस हम भी ठीक हैं, कुशल मंगल है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: प्रोग्राम आप बहुत अच्छा करती हैं, कई दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन नहीं लग रहा था, लगता था लेकिन कॉल नहीं रिसीव होती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज देखिए आपकी कॉल रिसीव हो गई।
1: जी, रिसीव हुई तो आपसे बात हुई।
0: जी, हमसे पहली बार बात हो रही है। क्या करते हैं जगपाल जी आप?
1: फार्मर हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस चीज की फसल उगा रहे हैं अभी आप?
1: गन्ना है, धान लगा हुआ है, काटा नहीं जो लगता।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये गन्ने को जो ये गुड़ बनाते हैं और फिर जो शक्कर बनाते हैं उसे खांड कहते हैं ना, जो बहुत रिफाइन नहीं की जाती है, नुकसान नहीं करती, खांड है ना?
1: जी।
0: तो आप इस्तेमाल करते हैं वो?
1: हाँ, करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो उसके बड़े फायदे भी सुने हैं। गन्ना अन्ना तो भाई क्या बात है, गन्ने का जूस तो आजकल देखिए सब तरफ मिल रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बिना बर्फ का गन्ने का जूस पीते हैं। आपको
1: तो
0: क्या पसंद है सबसे ज्यादा? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
1: किसमें?
0: यही सारी चीजों में, खाने आने में।
1: अरे सब कुछ खाने में पसंद है, जो अच्छा लगता है वो खाते, मन करता
0: है जो मिल जाए ऐसे।
1: मिल नहीं जाए, जो मन करता है।
0: अच्छा, जो मन करता है, तो मतलब मेरा रुजी है आपके घर में
1: जी।
0: अच्छा, खाना ना बना रही होंगी है ना?
1: और क्या,
0: सही बात है। क्या पकवा रहे हैं आज आप
1: जी?
0: क्या बनवा रहे हैं आज आप?
1: अभी तो पता नहीं है, हम बाहर बैठे हैं, जो आएगा सामने वो खाया जाएगा।
0: ये हुई ना बात, जो उनका मन होगा वो बनाएंगे, वो आप खाएंगे। तो गाना सुनवा दीजिए उनको, आपने जो कहा है अभी कि प्ले कर दें।
1: गाना तो सुनेंगे।
0: हाँ, तो नाम ले लीजिए जल्दी जल्दी।

0: चाहिए
1: जी बताइए।
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और एक हमारे मोहब्बत फैज भाई हैं
1: जी जी जी जी जी जी जी,
0: और सीतापुर की समा परवीन है अंसारी
1: जी जी,
0: और सारे सभी सुनने वालों को जितने सुनने वाले हैं लिसनर सभी को
1: थैंक यू सो मच। 7:17 नेक्स्ट कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली

0: जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि वो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
1: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
5: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए

0: ने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 400,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। वेलकम बैक। 7:30 हो चुके हैं। एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो FM तरन्नुम में आपके साथ। डायल कीजिए 2248 4745 2238 5852 और सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: और कुछ गाने इतनी जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या है, लेकिन गाना जबरदस्त था. फिलहाल हमारे साथ लाइन पे कोई है, वो भी बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं
1: जी? तालिब अंसारी बोल रहे हैं, बाराबंकी राजा कटरा से.
0: जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं जो उस मोहल्ले में रहते हैं, बड़ी शिद्दत से सुनते हैं रेनबो, उसी में आप भी हैं.
1: लेकिन जो अभी पिछला गीत था बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब ये एंजॉय तरीके का गीत था.
0: आए हाय, क्या बात है. और इसी तरह के
1: पसंद आया.
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया. इसी तरह के गाने हैं जो हम पहुँचाएंगे आप तक. बताइए और क्या कहना चाहेंगे तालिब
1: जी? और सब बढ़िया है, फोन लगा रहे थे
0: जी
1: और प्रोग्राम भी आपका सुन रहे थे.
0: अच्छा, तो क्या कर रहे थे तालिब अभी आप?
1: जी हम तो बैठे हुए थे छत पे और प्रोग्राम भी सुन रहे थे
0: तो
1: और कॉल लगा, लेकिन कॉल लगती नहीं, इतनी देर से फोन लगा, लेकिन अब जाके मेरी बेल गई और आपने उठा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मेल किया. और बहुत सारे लोग देखिए नाराज भी जाते हैं कि भाई मेल किया नहीं शामिल किया, कॉल करा नहीं शामिल हुआ. बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में रहते हैं, लेकिन लोग ही चाहते हैं जी.
1: इसके बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है
0: जी,
1: तो सभी लोग कॉल लगाएं, लेकिन अगर दिल से लगाएंगे, मेहनत करके लगाएंगे तो कॉल लगता है. क्योंकि मेरा कॉल उधर से तो आया नहीं, हमने खुद लगाया ना. और लेकिन कॉल लगाया जाता है तो बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत पड़ती है. मेरा फोन पूरा हीट हो जाता है, बैटरी भी एकदम लो जाती है, तब मेरी जाके कॉल लगती है
0: जी. लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह आपको टाइम दिया जाता है, आपकी कॉल अटेंड की जाती है, और सारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये तो मौका देना चाहिए ना.
1: जी बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए.
0: अच्छा ये बताइए, गाना आप किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: गाना हमारे आसिफ भाई हैं, साबिर भाई हैं और अकबर भाई हैं.
0: मैं तीन लोग को सुनवाएं, बाकी सबसे कहते हैं कान बंद कर लो.
1: नहीं कान नहीं बंद कर, सब लोग ने इतने बढ़िया गीत आज प्ले हो रहे हैं, हमको गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं.
0: अच्छा.
1: आप लोग उस पे डीजे वाले सिस्टम पे सुनते हैं ना?
0: हुँ.
1: म्यूजिक सिस्टम पे तो बहुत अच्छा है प्रोग्राम.
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तालिब, आपने कॉल किया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.

0: बोल रहे हैं।
1: अरे मिंटू जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: नमस्कार मैम, बढ़िया हैं।
1: अरे नाराज तो नहीं है आप हमसे?
0: अब नहीं नाराज नहीं, उस दिन नाराजगी दूर हो गई ना। आज फोन आज कॉल उठा, लेकिन दो बार कट गया, लेकिन तीसरी बार उठा लिया आपने।
1: तो खुश हो गया मतलब?
0: अब इतनी मेहनत से मान लीजिए फोन करते हैं, अगर ना उठे तो दिक्कत होती।
1: जी जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं जो फोन करते हैं, लेकिन एक मतलब इस कुछ मिनट में एक ही इंसान से बात कर सकते हैं ना हम?
0: नहीं नहीं वो बात तो सही है, लेकिन
1: जी बताइए गाना कौन सा, गाना किसको सुनवाएंगे आप?
0: गाना हम सुनवाएंगे पहले तो आपको, आपके जितने आरजे हैं एफएम के उन सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी जो रसूल गुलगुलरा से
1: जी,
0: मुकेश कुमार होगा सीजत के पुरवा से, सुजेन प्रसाद होगा वहाँ कुंडा प्रतापगढ़ से, और राहुल भाई हो गए इटावा से, और मेरे बड़े भाई है प्रमोद तिवारी, विनोद तिवारी, मुन्ना तिवारी और प्रकाश पासवान जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए। लेकिन थोड़ा हमारा गाना बता दें।
1: जी जी बिल्कुल, गा के बताइए।
0: गाना हमने बताया था ना,
1: गा के बताइए।
0: ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही न जाए,
1: ये गा रहे हैं आप मतलब की बता रहे हैं आप?
0: नहीं गाना बता रहे, गाने के बोल बता रहे हैं।
1: अच्छा तो गाते नहीं है मतलब, शौक नहीं है आपको?
0: नहीं गाना गाते, लेकिन थोड़ा हमारा थोड़ा छोटा वाला भाई खड़ा है, कहता है बात कराइए थोड़ा कर लीजिए।
1: अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं, छोटे भाई को दे दीजिए। हाँ नमस्ते। हेलो
2: नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, कौन बोल रहे है, क्या नाम है?
2: माय नेम विनीत तिवारी।
1: विनीत तिवारी, मिंटू तिवारी, वाह वाह क्या बात है। दो ही भाई हो बेटा तुम लोग?
2: हमारे
1: देखो बड़े
2: हमारे भाई बहुत फोन लगाते हैं, उठा लिया करो।
1: अच्छा भाई देखो अब फोन उठाया और कैसे उठाए और कैसे
2: ठीक है।
1: अच्छा ठीक है, तो तुम लोग दो ही भाई हो है ना?
2: तीन भाई हम लोग।
1: तीन भाई, तीसरे का है?
2: एक हम नाम थोड़ा बोलना चाहेंगे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये हमारा भाई नवनीत तिवारी,
1: नवनीत तिवारी, मिंटू तिवारी, विनीत तिवारी, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना तीर और चोरी चोरी मैंने भी तो फ्रॉम द मूवी दलाल।

0: 7:44 हो चुके हैं हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा
1: है? हम कमल शंकर पांडे, ग्राम मोहलिया कला चौराहा, जिला सीतापुर से बोल रहे हैं।
0: कमल शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
1: यही चाहते आए, लगभग एक महीने से बराबर फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है।
0: अच्छा, ऐसे कैसे?
1: अरे लगता था, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्या हुआ, एक महीने से फोन ही नहीं लग
0: रहा है। अरे छोड़िए, वो दिन जो चले गए उनको भूल जाइए, आज का दिन याद रखिए, 14 मई याद रखिए, 7:45 याद रखिए, और हम दोनों की जो बात हो रही है उसे याद रखिए, ठीक है जी? बताएं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। गाना आपने जो पसंद किया है, वो गाना आपको क्यों पसंद है ये बता दीजिए।
1: ऐसा ही पसंद है, संगीत अच्छा लगता है, आवाज लगती है।
0: अच्छा, सपना अवस्थी आपको पसंद है?
1: जी, आवाज बहुत पसंद है।
0: अच्छा, क्या बात है, कुछ गुनगुना लेते हैं?
1: नहीं, गुनगुना तो नहीं पाते हैं मैं।
0: अच्छा, गुनगुनाते नहीं है, सुनते हैं बस। चलिए, किसको किसको सुनवाएंगे गाना?
1: आपको, सभी सुनने वालों को, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कमल शंकर पांडे जी, दोबारा कॉल आप जरूर कीजिएगा। ओके, शुभ रात्रि।

0: और जल्दी से अपना वादा पूरा करते हैं हमारे साथ, हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ, खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: जी सुल्तान साहब, कैसे हैं आप बताएं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताइए मैम कैसी हैं?
0: जी बिल्कुल, हम भी बहुत खूबसूरत हैं, मतलब ठीक है।
1: जी अच्छी है, अच्छी है।
0: ये मेरा एक स्टाइल है कहने का, और हमें लगता है हमें लगता है कि हर इंसान को अपने को बहुत तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटी पे जब आप अपने आप को रखते हैं
1: तो। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छे है।
0: ये बताइए, सब्जी मंडी में आप रहते हैं तो सब्जियां अभी भी बिक रही हैं? आवाज आ रही पीछे से,
1: बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी।
0: अच्छा क्या क्या बिक रहा है पीछे?
1: भाई आलू है, टमाटर है, प्याज है।
0: आलू क्या हिसाब है भैया? आलू क्या हिसाब है
1: इस टाइम? सस्ता है आलू।
0: अच्छा आलू और टमाटर?
1: टमाटर 10 रुपए।
0: 10 रुपए किलो?
1: जी।
0: अरे वाह, हमारी तरफ तो 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, 40 रुपए किलो।
1: यहाँ सब्जी मंडी है ना, बहुत सारी सब्जियाँ नई नई सब आती रहती है।
0: तो आपके तो गाल बड़े लाल होंगे, टमाटर खाते रहते होंगे 10 रुपए किलो।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: है ना, ऐसा है
1: जी?
0: अच्छा टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं? मम्मी की डांट खाते हैं?
1: हाँ वो तो मिलती है कभी कभी,
0: है ना? और क्या
1: मिलेगी पक्का?
0: अच्छा अच्छा, और क्या खाते हैं?
1: और तो बहुत सारे ऐसे आइटम है, कद्दुआ नहीं खाता हूँ।
0: अच्छा कद्दुआ बोलते हैं आप लोग? कद्दुआ बोलते हैं हम लोग, कद्दू बोलते हैं।
1: अच्छा हम बोलते हैं कद्दू।
0: अच्छा हम लोग को कद्दू बहुत अच्छा लगता है, कद्दू की सब्जी, पूरी, बूंदी का रायता। 8 बज रहा है, जल्दी से प्रीति अंदर आएगी और उसके बाद हम ये सब खाना आना खाएंगे बढ़िया सा। और बढ़िया सा जो गाना आपने पसंद किया है, ये बताइए किसको सुनवाएंगे आप?
1: मेरे दोस्त हैं सादिक रजा, मोहन रजा, जीशान रजा।
0: सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सब अभी?
1: सब सुनेंगे माशाल्लाह।
0: अच्छा अच्छा, और सब रजा ही है, मतलब जितने भाई आई सब रजा, पूरी फैमिली
1: पूरा रजा परिवार है?
0: अच्छा रजा परिवार है। और किसको सुने? हाँ देखिए कभी मौका लगता है तो जरूर आते हैं, पुरानी कुतुब खाना, सब्जी मंडी और
1: बरेली।
0: ठीक है आते हैं तो राय बरेली या
1: जिला बरेली?
0: अच्छा जिला बरेली, चलिए
1: झुमका वाला, झुमका वाला।
0: अच्छा अच्छा अच्छा वो वाला। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने मैं कॉल किया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। 7:52 हो चुके हैं, नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है आप तक, और कह सकते हैं कि इसी ट्रैक के साथ इजाज़त लेनी होगी हमें आपसे। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त, बल्कि कल ही मिलते हैं आपसे हम। सुनते रहिए रेनबो, कुछ घंटे रहने वाली हैं प्रीति आपके साथ, तो चलें शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड गुड नाइट।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रदेश में आंधी, आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। श्री योगी ने अधिकारियों कहा है कि राहत और बचाव कार्यों में पूरी गंभीरता बरती जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जाए। प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की जानकारी सामने आई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बदायूं के कछला घाट में 19 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। यह घाट सिर्फ पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से संवरेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी धार्मिक पर्यटन की राजधानी बन रहा है। कछला घाट को मिनी हरिद्वार का रूप दिया जाएगा। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कल इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने लखनऊ में संवाददाताओं से को संबोधित करते हुए कहा कि कल के मैच के लिए उनकी टीम बेहतर तैयारी कर रही है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिन बॉलिंग कोच कार्ल क्रो ने कहा है कि उनकी टीम ने पिछले 3 मैचों से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के चलते लखनऊ में खेले गए पिछले मैच में एलएसजी को जीत मिली थी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोनों जहान तेरी मोहब्बत।

0: मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वस्ल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आबशार 100.7 FM रेनबो पर।
1: ढलती हुई रात की ये खामोशी और जज्बातों का उमड़ता हुआ ये शोर, कभी कभी कुछ कहने के लिए लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं, तब गजलें हमारा हाथ थाम लेती हैं। आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आबशार का, वही गजलों का बहता हुआ झरना जिसमें भीग कर हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल सी लगने लगती है। तो बस तैयार हो जाइए आज की सुरीली गुफ्तगू के लिए। पेशे खिदमत है मोहब्बत के नाम ये पहली गजल

दोस्तों अब बात करते हैं उस पहली मुलाकात की, जब मोहब्बत तो सच्ची होती है और उस वक्त चेहरे की चमक ही कुछ और होती है जो सब कुछ बयां कर देती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि वो अजनबी था तो इतना अजीब क्यों लगा, वो अजनबी था तो इतना अजीब क्यों लगा, बिछड़ के हमसे वो इतना करीब क्यों लगा। वाकई दिल के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। चलिए इसी एहसास को एक और खूबसूरत आवाज देते हैं। अगली गजल, डूब जाइए मोहब्बत के इस हसीन सफर में, सिर्फ और सिर्फ आबशार में।

जिंदगी के इस मुसाफिर खाने में रोज हजारों चेहरे गुजरते हैं, हजारों आंखें हमसे मिलती हैं, मगर इस दिल की जुस्तजू बस एक ही शख्स पर आकर ठहर जाती है। और फिर एक मोड़ पर आकर यह एहसास होता है कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। मोहब्बत की इसी शिद्दत को किसी शायर ने इन लफ्जों में पिरोया है। तमाम आलम के नजारों में ढूंढा है तुमको, तमाम आलम के नजारों में ढूंढा है तुमको, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तो चलिए इसी तिश्नगी और इसी बेपनाह मोहब्बत को महसूस करते हैं इस अगली गजल के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने दिल के हाल को लफ्जों की शक्ल देना। पर क्या वाकई मोहब्बत को अल्फाजों की जरूरत होती है? जी हाँ, जब खामोशियां बोलने लगे और नजरें बातें करने लगे तो समझ लीजिए कि इश्क की इब्तिदा हो चुकी है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। ये वो कैफियत है जहां जुबान खामोश रहती है पर रूह सब कुछ समझ लेती है, महसूस कर लेती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है? यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

दोस्तों कहते हैं कि शायरी दरअसल उस बेचैनी का नाम है जो तब बनती है जब अपना ही दिल हमसे सवाल करने लगे। एक शायर की रूह की तड़प तो देखिए जब वो अपनी उस मोहब्बत को तलाशता है जो कभी उसकी कायनात हुआ करती थी। वो मेरा रौनके महफिल कहाँ है, मेरी बिजली मेरा हासिल कहाँ है, मुकाम उसका है दिल की खिलवतों में, खुदा जाने मुकामे दिल कहाँ है। कितनी अजीब बात है ना, जिसे हमने अपनी महफिलों की रौनक बनाया, जिसे अपनी पूरी जिंदगी का हासिल समझा, आज वो दिल के उन कोनों में जा छिपा है जहां हम खुद भी नहीं पहुंच पाते। ये खिलवतें कि वो गोशे जहां सिर्फ सन्नाटा और उसकी यादें रहती हैं। जब दिल ही हाथ से निकल जाए तो उसका मुकाम ढूंढना शायद इंसान के बस की बात ही नहीं होती।

दोस्तों वक्त हो चला है 8:41 और 41 सेकंड्स और इस वक्त के साथ ही आपको बता दें आबशार भी वाइंड अप करने को है, लेकिन ये खूबसूरत गजल यूँ चलती रहेगी। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि रात 9 बजे पॉप टाइम का है टाइम। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और आज प्रीति है आपके साथ।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत

0: करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिमी

0: समीक्षा के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

0: बैद्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत करती है आरजे प्रीति, क्योंकि वक्त हो गया है रात के ठीक 9:00 कुछ सेकंड। भाई सेकंड्स का क्या, यूं ही बढ़ते रहेगा। चलो मिनट की बात कर लेते हैं, 9:01:30 और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, यानी कि 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तो भाई पॉप टाइम का टाइम स्टार्ट हो गया है, जहां पर नॉनस्टॉप फास्ट बीट सॉन्ग्स होंगे, आपका फेवरेट म्यूजिक प्ले होगा और साथ में शामिल होंगे आपके मेल्स, आपके मैसेजेस और आपके शिकवा शिकायत को हम बिल्कुल यहां पर रीड करेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि आज आप क्या सोच रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ है दिल में जो शेयर करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें मेल करके बताइए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। तो एक बात और हम आपको बता दें कि अगर आपका मूड है डांस वाला, ड्राइव वाला या बस म्यूजिक के साथ चिल करने वाला, तो अगले एक घंटे तक कहीं मत जाइएगा, बस सुनते रहिएगा अपनी आरजे प्रीति को। और अब शुरू होने जा रहा है बैक टू बैक सुपर हिट पॉप सॉन्ग्स का सिलसिला, तो वॉल्यूम बढ़ाइए, बीट फील कीजिए और हो जाइए रेडी, क्योंकि ये है पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

जी भाई, मैं तो ऑलरेडी गाना बहुत जोर से प्ले कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कहाँ? अभी तक आपकी मेल नहीं आई है। मैंने पहले बता दिया, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल करके हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। बस आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब तक मैं आपका नाम नहीं लूँगी तब तक आप मेल नहीं करेंगे, ऐसा है कुछ? तो लीजिए, हमने आपको बुला लिया है, तो आपके मेल का कर रहे हैं हम इंतज़ार। फिलहाल जिस मेल का मुझे इंतज़ार हमेशा रहता है, ऑलमोस्ट मुझे सारी मेल का इंतज़ार रहता है क्योंकि मुझे सारे के सारे नाम भी याद हो गए, तो उसमें से सबसे पहले हम नाम लेते हैं तालिब अंसारी का। ठीक 8 बजे मेल किया था, नौ बजे मेल कर दिया इन्होंने, और शामिल करते हैं इनकी मेल को। और तालिब अंसारी ने हमें मेल किया राज्य कटरा बाराबंकी से, और साथ में हमें कुछ फ्रूट्स भेजे हैं। थैंक यू सो मच तालिब अंसारी जी। और ये लिखते हैं, ये लो आरजे प्रीति मैम, खरबूजे नाश्ते में। नाश्ते में नहीं है ये, तो वक्त हो चला है, कोई बात नहीं है। फिलहाल लिखा है ये रियल है, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, ये कहीं से आपने पिक्चर्स शेयर नहीं की, आपने खुद से क्लिक करी और मुझे नाश्ता भेजा है, थैंक यू सो मच उसके लिए। नीरज कुमार का भी मेल आया, लिखते हैं गुड इवनिंग शुभ संध्या मित्रों, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, हम हैं झकास, हम लोग एकदम चकाचक हैं। हम बस इसी शब्द का इंतजार कर रहे थे कि आप कब लिखेंगे चकाचक। आप कार्यक्रम में आई हैं तो बाहर आइए भाई, हम तो नीरज ये कहेंगे आपकी ईमेल आई तो भाई हमारे जीमेल में बाहर आ गई। तो भाई आप लिख रहे हैं कि आपकी बहुत याद आ रही थी। जी नीरज, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी, जल्दी जल्दी कार्यक्रम में आया करो, आपकी आवाज़ और कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें भी आपकी ईमेल को पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगता है, खासकर मेल पढ़ने के अंदाज, जब आप कार्यक्रम में मेल पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नीरज भाई, हम देखिए हर लाइन का आपके जवाब दे रहे थे, मुझे नहीं पता था अगली लाइन आपकी ये होने वाली। फिलहाल ये तो दिल से होती है बातें जो आप शब्दों में बयां करते हैं और हम यहाँ पर बोल कर आपसे बयां करते हैं। और आगे कुछ दोस्तों के नाम लिए हैं, चलो

लेते हैं पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, साहिबा अंसारी, साजी अंसारी, समा परवीन, सुरभि सिंह, ममता देव, भाई बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखा है आपने, बबलू यादव, हिमांशु यादव, मोहम्मद फैज, वकील अहमद, शिवम, सत्या, अमीन अंसारी, राम भरोसे, हरिकेश तिवारी, अंकल मुनेश्वर, सर संजू भाई, सभी श्रोता और एक साथ आपका कार्यक्रम हम सब सुन रहे हैं। ओ थैंक यू सो मच मेल को शामिल करने के लिए, भाई धन्यवाद, इसको आप संभाल के रखो कहीं काम आएगा। अर्पित शर्मा का भी मेल पढ़ते हैं, अर्पित शर्मा जी लिखते हैं, शुभ संध्या जी, कैसी हैं आप जी? बिल्कुल हम ठीक हैं, गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी को थोड़ी सी राहत मिल गई है क्योंकि बीच में मौसम ऐसा हो जाता है समझ ही नहीं आता एसी चलाएं कि ना चलाएं कि सिर्फ और सिर्फ पंखे की ही हवा में आराम करें। तो ये जो मौसम है ना हमें बड़ा ही कन्फ्यूज़ करता है। तो अब आपने सवाल पूछा है गर्मी कैसी पड़ रही है, अब हमें ही नहीं समझ में आ रही गर्मी कैसी पड़ रही है। अगर आपको समझ में आए तो अर्पित जो मेल है ज़रूर हमें करके बताइएगा। और आगे पूछते हैं, अच्छा आपके यहाँ का पारा पहुँच गया 48 डिग्री, भाई आप लखनऊ शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा आराम है। और ये मेल आपने कहाँ से किया है, लिखते हैं रोचक कार्यक्रम है जो सेंट ठंडक और शीतलता घोल रहे हैं, साथ गुड़ जैसी आपकी वाड़ी और तहजीब, मन करता है लखनऊ।

करने के लिए भाई धन्यवाद, इसको आप संभाल के रखो, कहीं काम आएगा। अर्पित शर्मा का भी मेल पढ़ते हैं। अर्पित शर्मा जी लिखते हैं, शुभ संध्या जी, कैसी हैं आप जी? बिल्कुल हम ठीक हैं। गर्मी कैसी पड़ रही? गर्मी को थोड़ी सी राहत मिल गई है, क्योंकि बीच में मौसम ऐसा हो जाता है समझ ही नहीं आता एसी चलाएं कि ना चलाएं, कि सिर्फ और सिर्फ पंखे की ही हवा में आराम करें। तो ये जो मौसम है ना, हमें बड़ा ही कन्फ्यूज करता है। तो अब आपने सवाल पूछा है गर्मी कैसी पड़ रही है, अब हमें ही नहीं समझ में आ रही गर्मी कैसी पड़ रही है। अगर आपको समझ में आए तो अर्पित अग्रह जो मेल है ज़रूर हमें करके बताइएगा। और आगे पूछते हैं, अच्छा आपके यहाँ का पारा पहुँच गया 48 डिग्री, भाई आप लखनऊ शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा आराम है। और ये मेल आपने कहाँ से किया है? लिखते हैं, रोचक कार्यक्रम है जो सेंट ठंडक और शीतलता घोल रहे हैं, साथ गुड़ जैसी आपकी वाणी और तहजीब, मन करता है लखनऊ पहुँच जाए। आप मन की ही सुनते रहेंगे तो मन अगर कह रहा है आपसे तो लखनऊ पहुँच जाइए जनाब, लखनऊ में तो लिखा रहता है मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं तो जब आप लखनऊ में आएंगे मुस्कुराएंगे अपने आप, आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये जो 48 डिग्री का टेम्परेचर है अपने आप आपको लगेगा 18 डिग्री का टेम्परेचर है। और राजस्थानी अर्पित, टीआर निर्मला और तोशिका सभी शर्मा उड़ू वाले। अच्छा चलिए आगे शामिल करते हैं, मेल किसका करते हैं किसका करते हैं। सतीश अनेजा का भी मेल आया है, नमस्कार भेजा है और लिखते हैं कि प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। और विजय पाल यादव जी का भी मेल आया है, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते जी, भाई साहब आपको भी नमस्कार, क्या हाल है जी? हमारे बिल्कुल ठीक हैं, पॉप टाइम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गाने सुनने गान। अच्छा इस समय गन्ने की गुड़ाई चल रही है, शरीर में थकान आ जाती है, तो भाई ये जो मट्ठा वगैरह होता है ना ये सब पीते रहा करिए, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और गर्मी को आस पास भी ना भटकने दीजिए, जिससे कि आप थकान को बिल्कुल भी फील ना करें। अच्छा आगे लिखते हैं कि रजनीगंधा जब हम सुनने के लिए आते हैं तब तक हमारी सारी थकान गायब हो जाती, तो रात 12 बजे तक हमारे साथ जरूर रहिएगा। फिलहाल वही खूबसूरत सा है इनका पता, जिसको पढ़कर हमारे दिल के पते को हो जाता है लापता जी। सुनिए आप लोग भी, विजय पाल यादव व बबलू यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी, है ना, टंग ट्विस्टर खेलना चाहिए, किसी दिन आपके साथ खेलेंगे जरूर जिस दिन हम हेलो एफएम में आए। सुल्तान रजा का मेल आया, लिखते प्रीति मैम इस मेल को हम पढ़ देंगे थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि अगला गाना ब्रीथलेस है, हम ब्रीथलेस होके आपका मेल पढ़ रहे हैं, तो ये सुल्तान रजा की मेल पे हम करते हैं पॉज और सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में ये ब्रीथलेस सॉन्ग।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अच्छा दोस्तों, एक हमें आपके लिए सवाल छोड़ के जाते हैं, जाएंगे कहीं नहीं। आपको हमें ईमेल के जरिए जरूर बताना होगा कि जैसे अभी आपने सुना ब्रीथलेस सॉन्ग, जब हम इस गाने को सुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि मेरी सांस टूट रही, मैं कई बार सांस ले रही थी, और जब लास्ट में शंकर महादेवन ने करा ना, यानी कि अब उन्होंने रिलैक्स की सांस ली होगी या सांस छोड़ी होगी, व्हाटएवर। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ फील होता है जब इस तरीके का गाना, ये ब्रीथलेस सॉन्ग जब भी आप सुनते हैं, क्या आप भी बीच बीच में ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा लगता है कि आप ही की सांस रुक रही? क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है, जैसे अभी मैं ब्रीथलेस सॉन्ग सुन रही थी, ये तो बीच में 2.5 मिनट का ये गाना है, लेकिन 3-4 बार वैसे तो नॉर्मली हम लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन इस गाने को सुनते टाइम ना ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बढ़ जाता है, शायद कुछ तो होता है, आप जरूर हमें बताइए। तो चलिए शामिल करते हैं सुल्तान रजा की मेल के साथ, शुरू करते हैं मेल के सफर को और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हमने पढ़ लिया और मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले मैंने सुल्तान आपसे कहा था, ये मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू आता है, बट मैंने प्रैक्टिस करी और फाइनली जैसे मैंने आपका मेल की पहली लाइन पढ़ी, इसीलिए मैंने गाने को प्ले किया था। मैंने कहा सुल्तान रजा के इस वर्ड को आज मैं पढ़ के सुनाऊंगी, अस्सलाम वालेकुम, सही बताया ना सुल्तान, इसका फीडबैक जरूर मुझे देना। और कहते हैं कहाँ चली जाती हैं इतने दिनों के लिए FM रेनबो से, हम आपसे नाराज हैं, जल्दी जल्दी आया करो भाई, हम भी आप कहीं जाते नहीं हैं, होते बिल्कुल करीब होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कुछ प्रायोरिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से बस। देखिए फिलहाल आ गए हैं, ये जो आपकी शिकवा शिकायत है इनसे भी बड़ा ही हमें प्यार हो जाता है कि लगता है हमारे लिसनर्स हमें मिस कर रहे हैं, बस यही तो चाहिए हम आरजीस को। और आगे लिखते हैं कि प्रीति मैम प्लीज़ कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा और अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, छोटा सा अमान, तरनु पीनू, कहाँ स्टूडियो में प्रीति आ चुकी हैं, यकीन मान मना प्रीति मां दिल खुश हो गया, आपका प्रोग्राम करने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। और सुल्तान रजा जी मैं तो यही कहूँगी आपके मेल करने का अंदाज़ बड़ा ही प्यारा है, जितनी खूबसूरती से आप उसको सजा कर धजा कर भेजते हैं, साथ में अच्छा एक जोक है जो चलिए आप सब सुनिए एंजॉय करिए। पूछना ये था कि टमाटर प्याज पत्ता गोभी शिमला मिर्च ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो फिर सब बर्गर बनते ही सेहत के लिए हानिकारक कैसे हो जाते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, ज़रूर हम इसका जवाब आपको देंगे लेकिन सोचेंगे। और गिफ्ट भी हमारे लिए आई है भाई, चाय भी आई है हमारी और सुल्तान की, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही पढ़ते हैं अंसारी का भी मेल और लिखते हैं रेनबो कैफे पेश करने वालों को हमारा आदाब, आपका ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं भी रोज़ सुनती हूँ आपका नाम जी, इस कार्यक्रम के गीत बहुत पसंद आते हैं आपको। और लिखते हैं ग्राम व पोस्ट हर हरपुर, देखिए ये वाले होते हैं एड्रेस बड़े ही इंटरेस्टिंग, हर हरपुर मटकली ज़िला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद शकील, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान। अच्छा इसको बोलने में बड़ा मज़ा आता है, DJ प्रधान अच्छा लगता है। अच्छा यूँ ही मेल करते रहा करिए, रामराज का भी मेल आया, लिखते हैं श्री गणेशाय नमो पॉप टाइम, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राज राजू भानु, पप्पू पाजी, मनीष, नीरज, पवन कुमार यादव का आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी फरमाइश है। देखिए हम कोशिश करेंगे लेकिन ये फरमाइशों वाला प्रोग्राम नहीं है, और बस यूं ही मेल करते रहिए। हमें मोनू सेठ का भी मेल आ गया है, हमने सोचा था अगर आज आपने ये लाइन नहीं लिखी तो हम आपके मेल को वो नाम पढ़ के हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन दिल जीत लिया भाई, लिखा है प्रीति मैम जी कैसा नहीं आप, उम्मीद आहे बहुते नीक अब इसके आगे तो भाई गाड़ी फंसने वाली है, बहुते नीक होएंगी और पॉप टाइम जबरदस्त होगा, ईमा कोनो शक नायकन, कई दिन बाद आपको वो सुन रही आहे। भाई थोड़ी सी हम भी सांस ले लें मोनू सेठ जी, क्योंकि आपका ये जो मेल होता है ना, इसको आप अच्छा आप टाइप कितनी मेहनत से करते होंगे, जब हमको पढ़ने में इतना मज़ा आता है वैसे नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हमें मेहनत लगती है लेकिन अच्छा लगता है मोनू सेठ। और वैभव प्रकाश का भी मेल आया, लिखते पॉप टाइम सुनने वाले सभी श्रोताओं हमारे गाँव गंगोई सीतापुर के सभी दोस्तों के साथ, अंसारी परिवार, मोनू सेठ, रिंकी पिंकी और डियर आरजे प्रीति जी को मैं वैभव प्रकाश सिंह आज भुसावल महाराष्ट्र में से राम राम भेज रहा हूँ। अच्छा आप महाराष्ट्र क्या करने गए हैं ये भी हमें बताइए, और साथ में ये भी बताइए महाराष्ट्र का मौसम कैसा है। वैसे हम सब यहाँ पे ठीक हैं, और लिखते हैं कि यात्रियों के केलों का शहर, भुसावल के संतरों के शहर, नागपुर तक की यात्रा करवाने वाले हैं, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। अच्छा ये होता है कुछ शहरों के कुछ जगहों के नाम हम उनके

स्पेशलिटी जैसे खाने की चीज़ों से ही हम लोग जान पाते हैं, है ना. जैसे जिनसे जिन जिन शहरों के साथ आपने एक एक फ्रूट अटैच करके भेजा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. साथ में लिखते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं. और जो लोग सफल, यार सफलता नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता. और सफलता नहीं होने का मतलब ही नहीं है भाई, कोई असफल होता ही नहीं है. अगर वो एग्ज़ाम तक पहुँच गया, एग्ज़ाम दे आया भाई, वहीं पर वो सफल हो गया. और मेल करने के लिए शुक्रिया वैभव. बाबू अंसारी का भी मेल आया, लिखते हैं प्रीति मैम गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हनहनुआ लग रहा है. नसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, और साथ में बड़ा ही डांसिंग वाला इमोजी भेजा है कुलदीप गुप्ता, बाबू अंसारी. और चलिए मेल के पढ़ने को करते हैं पॉज और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक.

जी दोस्तों, वक्त हो गया 9:26 और कुछ सेकंड्स, और आपको बता दें आप सुन रहे हैं पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की, और इस वक्त माइक के इस पार है आरजी प्रीति आपके साथ। मोनू सेठ लिखते हैं, आपने गाना बजाया, बजाओ गाना जोर से, इसलिए हमने अपना रेडियो का वॉल्यूम फुल कर दिया। क्या बात है, इसको कहते हैं कि दिल से किसी बात को मानना। इंद्रपाल जी का भी मेल आया, लिखते हैं कि प्यारी दीदी को प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, हम लोग गांव के में एकत्र होकर सुनते हैं, चलिए इसी बहाने फ़ोन को दूर करके, मतलब कि आप लोग रील्स नहीं स्क्रॉल कर रहे हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, ये मेन बात है। और आप सब लोगों ने क्या बोला है कि आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद इतना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, जी शुक्रिया। और अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा, आशा, अवनीश, विनेश, अक्षत और गरिमा। और इसके साथ ही अर्पित शर्मा का भी मेल आया। अर्पित शर्मा जी लिखते हैं, शुभ संध्या जी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। गर्मी कैसी पड़ रही है? हम तो ये नहीं कहेंगे, गर्मी हमारे यहाँ बहुत प्रचंड हो रही है, बस गर्मी पड़ रही है, यही है। और भाई लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और लू है वगैरह। मुझे लग रहा है ये मेल आपने रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, हमने फिर भी आपकी मेल को पढ़ लिया है। विजय कुमार का भी मेल है, पूरी एफएम टीम को नमस्कार, प्रोग्राम की बहुत ही धमाकेदार शुरुआत। और विजय जी शुक्रिया, आपने मेल हमें किया है। विजय कुमार यादव, मोहरी पोस्ट, आशा खेड़ा, उन्नाव, ऐसा लग रहा था किसी का नाम है। अशोक कुमार का भी मेल आया है, अशोक राज, गुड इवनिंग, एड्रेस रायपुर, उडारा, मितौली, लखीमपुर खीरी, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अशोक जी शुक्रिया। अरविंद कुमार

जी ने मेल भेजा है, अरविंद जी लिखते हैं कि जी हाँ प्रीति जी बजाओ गाना जोर से। भाई हमने तो गाना यहाँ से फुल ऑन वॉल्यूम में प्ले किया था, आपने वॉल्यूम अपने मोबाइल का या फिर जहाँ भी आप फ़ोन को ये प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं उसका वॉल्यूम फुल ऑन किया है कि ये नहीं किया है, ये तो आपको हमें सच सच बताना होगा। सुना ना, हमारे यहाँ तो गाना बिल्कुल जोर से ही बजता है, बस अपने जो जिस भी गैजेट पे आप सुन रहे हैं ना बस उसका भी वॉल्यूम फुल ऑन करके रखिए। नमस्कार एफएम रेनबो लखनऊ, भोजपुरी या तड़का हरियाणवी हिट्स, पंजाबी पॉप और हिट सॉन्ग सब बजते हैं, लगते हैं गजब। रात 12 बजे रजनीगंधा प्रोग्राम तक साथ देने वाला ये हुई ना बात अरविंद, इसको कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन, और आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा, इसीलिए तो कहते हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। और ये आगे लिखते हैं कि लिखते हैं रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम नाम के अनुरूप सतरंगी है बिल्कुल, अरविंद गोदिम, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छटावा जिला मिर्जापुर से मेल हमें आया है अरविंद जी का। और इसके साथ ही सदाशिव का भी मेल आया, सदाशिव जी लिखते हैं ग्राम सलेमपुर पोस्ट मुंडेरी जिला सीतापुर से ईमेल कर रहा हूं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, प्यारे प्यारे खूबसूरत से इमोजी, इसके लिए शुक्रिया। बाबू अंसारी का भी मेल आया, लिखते हैं देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से मेल किया है, प्रीति मैम गुड इवनिंग, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। भाई हमारे इस लिसनर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार मेल करिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मेल छूट जाए, और अगर किसी का ईमेल छूटा तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ एक ही मेल करिए जिससे सारे के सारे ईमेल शामिल हो जाएं। जैसे कि रितेश वर्मा, मुस्तफाबाद जरवल रोड बहराइच से मेल किया है, नमस्ते कैसी हैं आप, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुना। भाई ये इतनी देर से जो बज रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पसंद के नहीं बज रहे हैं, आपकी भी पसंद के बज रहे हैं, लग रहा है कि आप ही की पसंद के हैं, बस नाम हमने अपना दे दिया है, कोई बात नहीं। पूजा पाल का भी मेल आया, गुड इवनिंग लिखती है, मिर्ज़ापुर से सदना सीतापुर से हूँ, मेल इस टाइम बिठौली से प्रोग्राम सुन रही हूँ, और मेरे साथ सिस्टर वंदना भी सुन रही हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है मैम, मैं आपके साथ 12 बजे तक दूंगी, देखते हैं आज। मैम पूजा आपका भी नाम अपनी लिस्ट में लिख ले रही हूँ, ठीक है, और 12:15 बजे गुड नाइट का मैसेज ज़रूर करना। रामराज का भी मेल आया है, रामराज जी हमने आपका मेल पढ़ लिया है, और साथ में लगते हैं अच्छा ईमेल पढ़ने के लिए आपने धन्यवाद का मेल भेजा, सो स्वीट ऑफ यू। वकील अहमद का मेल आया, अस्सलाम वालेकुम, अब तो मैंने यूं पढ़ लिया सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, अच्छा थैंक यू सो मच, पॉप टाइम अच्छा लगता है, शकील के घर पर मिला दुनबी हैं हम सब सुनाने जा रहे हैं, ओके अगर थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा मुझे। और अब आगे लिखते हैं कि अच्छा उसमें से आपने थोड़ा सा समय निकाल कर ईमेल पढ़ को टाइप किया है जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सीतापुर से हमें मेल किया है वकील अहमद जी, शुक्रिया। अब जो वक्त है 9:31 का, ये कहता है कि अगला गाना सुना दिया जाए, वरना अब शिकायतों का ईमेल आ जाएगा कि आपने मेल बहुत देर तक पढ़े हमें गाने हम सुनवाएं।

ashwanilakhnu@gmail.com पर हमें मेल करना है। तो अगर अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं हम आपका नाम लेंगे तो भाई हम क्यों ही ले नाम भाई, ये तो हमारा लोगों का दिल से कनेक्शन होता है। तो आप सब फटाफट हमें मेल करिए और जब तक हमें मेल नहीं करेंगे हम तब तक रजनीगंधा नहीं शुरुआत करेंगे। लेकिन ठीक जैसे 10 बजे का हम न्यूज़ पढ़ के हम रजनीगंधा की शुरुआत कर देंगे, लेकिन आप ईमेल ज़रूर करिए हमें। तो लीजिए पिंकू सोनी, पहली बार में हमने बिल्कुल सही पढ़ा था आपका नाम। मैम जी आपको सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी आपको पसंद आ रहे हैं, मेल शामिल करने के लिए शुक्रिया। इसको रखे रहा करो अपने पास। प्रोग्राम आपका मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, कुलदीप जी उधौली से और आकाश वर्मा जी मुरारपुर दरियाबाद से। तो भाई ये आपको जो उन्होंने क्यों आपसे बोला कि आपका नाम वो लिखे, उनसे कहिए खुद से अपना ईमेल करें तब हम उनका नाम पढ़ेंगे, बताना मत उनका नाम हमने पढ़ दिया है। और देखिए हमें फीडबैक मिल गया है, सुल्तान रजा जी कहते हैं बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, शुक्रिया सुल्तान जी। और गुलफ्सा सिद्दीकी का भी मेल आ गया, लिखते हैं गुड इवनिंग प्रीति मैम, गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। पहले आप ये बताइए मुझे लगता है पहले मुझे प्रोग्राम जैसे हम 8 बजे की न्यूज़ पढ़ा करें उसके तुरंत बाद बता दिया करें कि हम इन्हें दिन से कहाँ थे। फिलहाल हम आपको बता दें कुछ ज़रूरी जो होते हैं ना कार्य हमारे जीवन में, उनको हम पूरा करने की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने आप सबको बहुत मिस किया। और आज जैसे हम 8 बजे आए स्टूडियो तो हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया, और 9 बजे तो मैंने उस गार्डन के सारे फूलों को आप सबको समर्पित कर दिया है। और गुलफ्सा उसमें से एक फूल आपके लिए भी है। और आगे लिखती है जल्दी जल्दी आया करो, महान कृपा होगी आपकी, आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, शुक्रिया गुलफ्सा। मैं तो ये कहूँगी आपकी ईमेल करने का अंदाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सही बोला ना मैंने। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी सुन रहे हैं सब, तो शुक्रिया मेल करने के लिए। महेंद्र जी का मेल आया, लिखते हैं सादर प्रणाम, मैं महेंद्र देपन गांव रूप नगर से और अभी 100.7 FM रेनबो पर आपका प्रोग्राम पॉप टाइम को सुन रहा हूँ। रात की इस गर्मी में आपकी आवाज़ और गानों का साथ बहुत सुकून दे रहा है, ये सुकून और भी देगा जब रात 12 बजे तक देगी। पहले आपने लिख दिया कि रात 12 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ और आपकी बेहतरीन एंकरिंग के लिए ये लाइन। भाई हम भी थोड़ा सा खुश होने का हमें भी हक रहता है, भाई बहुत ही प्यारा सा एक पोस्टर भी बना के भेजा है, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं आपकी आवाज़ में वो जादू और वो बात है जो महका देती है हर एक हंसी रात है, अल्फाज आपके दिल को सुकून देते हैं जैसे तपती गर्मी में कोई ठंडी बरसात है। और ये जो मुझे इन्होंने पोस्टर भेजा है ना, इतना खूबसूरत भेजा है पोस्टर कि हम लिसनर्स आपको बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल से बस यही कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए, बस यही तो है जिसकी वजह से हम भाग भाग के आपके लिए आते हैं। विराज मौर्य जी का भी मेल आया, लिखते हैं कि मेरा नाम विराज मौर्य है और पलिया कला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहा हूँ, मैंने यह मेल दूसरी बार किया है, धन्यवाद मेरा। फिर वही बात भाई, ये मैं सारे लिसनर्स को अभी आज मैं ये यहाँ से अनाउंस करती हूँ कि ये धन्यवाद सॉरी थैंक यू ये सब कहीं और आप यूज़ करिए, फिलहाल उन शब्दों की बहुत ज़रूरत होती है, यूज़ करते रहा करिए लेकिन 9 से 10 के बीच में बिल्कुल भी नहीं। जिशान खान लिखते हैं कि हेलो प्रीति मैम, आम जिशान खान संडीला से सुन रहा हूँ प्रोग्राम और आवाज़ की है तारीफ, इस आवाज़ को हम संभाल कर रखेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, आपने लिखा है हम तो यही कहेंगे माशाल्लाह, आपकी मेल करने के अंदाज़ को हम कहेंगे बड़ा ही अच्छा लिखा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करती हैं आप, सुनकर मज़ा आता है। गुलफ्सा सिद्दीकी आपने आगे लिखा है प्रोग्राम अच्छा करती हैं आप, सुनकर मज़ा आता है। गुलफ्सा सिद्दीकी, अच्छा गुलफ्सा सिद्दीकी जी जहाँ कहीं भी हैं सुन रही हैं तो सुन लीजिए, जिशान खान ने आपका नाम लिखा है यहाँ पे। तालिब अंसारी जी का फिर से मेला है, प्रोग्राम स्टार्टिंग पे आप जब प्रीति मैम जो म्यूज़िक प्ले करती हैं तो धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा क्यों भाई, ये तो हम भी पता करेंगे ज़रूर कि ऐसा क्यों है। और फिलहाल शुक्रिया, आपका प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपीट पे म्यूज़िक सिस्टम पे सुनते हैं, क्या बात है तालिब अंसारी जी, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल की बात हो गई जो हमें बड़ी ही पसंद आई। थैंक यू। जावेद अख्तर का भी मेल आया फिर से, गुड ये जो आपने इतने सारे मेल क्यों भेजे, थोड़ा सा रुक जाओ। और राजेश कुमार के भी मेल को शामिल करते हैं, लिखते हैं जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाज़ा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। इस जो को हम ज़रूर आज लिख लेते हैं, हम मॉर्निंग में इसको लिखकर गुड मॉर्निंग भेजेंगे। प्रोग्राम मस्त कर रही हैं आप और आपके इस जोक के लिए शुक्रिया। मोनू सेठ कहते हैं कि कल हमने बुधवार प्रोग्राम में आपके आने के लिए रत्ना जी के से प्रोग्राम में मेल किया था और आज आप आ ही गई, बहुत खुशी हुई जी। हमें रत्ना जी ने बताया था कि आपने हमें याद किया है और

इसलिए आज हमने कहा सारे काम काज छोड़ो, बस पहुंच जाओ 100.7 FM रेनबो के स्टूडियो। सुरेश खन्ना जी का भी मेल आया है और ये हमें लिखा है ग्वालियर से, सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी, इन्होंने मेल किया है। जे एफ जे जे एस, भाई ये क्या है नाम, हम समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। मोहम्मद साबिर अंसारी चमनगंज कानपुर से मेल किया, गुड इवनिंग प्रीति जी, कानपुर में आपका धमाल फुल वॉल्यूम जी, शुक्रिया। हम लोगों के तीनों भाइयों का नाम ले लीजिए, बिल्कुल, मोहम्मद सबीर अंसारी कानपुर, मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा और आसिफ अंसारी तेलंगाना से। मैं कितनी देर से तो इन तीनों के नाम ले रही हूँ, अब आप हमें जो है क्या ये थैंक यू मत भेजा कर यार, अब चलो गाना सुन लेते हैं। ये गाना है और देखो वक्त इतनी तेज़ी से भाग रहा है, हम इतने सारे मेल पढ़ने में गाना ही भूल जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है।

भाई वक्त बहुत कम बचा है, रेनबो कैफे नहीं कहे, रेनबो कैफे कह ले, पॉप टाइम कह ले, दोनों एक ही बात है, बस सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे हेड कहे चाहे जो भी कहे, लेकिन दोनों एक ही बात है। तो भाई एमके राज का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, मुनेश कुमार गांव भानपुर हरहुआ से ये मेल किया है, और भाई टाइम कम होने की वजह से हम बस नाम शामिल कर लेते हैं। विराज मौर्या का भी मेल आया है, लिखते हैं कि प्रोग्राम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम को हमेशा सुनता हूँ, मेल शामिल करने के लिए शुक्रिया। वीके गुप्ता जी ने बस मेल किया है और शुक्रिया का मेल भेजा है। जय का मेल आया है, लिखते हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। विनीत कुमार का मेल आया, वीके गुप्ता का मेल आया है, अमन नवाब का भी मेल आया, हाय डियर प्रीति दी, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, आज तो सरप्राइज दे दिया आपने। जी बिल्कुल, हम सरप्राइज यूं ही देते रहते हैं, लेकिन ये बताओ इतनी देर से थी कहाँ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल अगर तुम साथ हो। प्रीति दी, अमन नवाब का है ये खूबसूरत सा मेल संडीला से। जिशान खान भी मेल कर रहे हैं, लिखते हैं अरे प्रीति मैम, गुलफ्सा सिद्दीकी मेरी वाइफ है, मुझे पता है ये आपकी वाइफ है, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता, क्यों नहीं आप यूं ही बताते रहा करिए और घर पे भी यूं ही जाहिर किया करते रहा करिए, ये नहीं कि वाइफ है तो बस खाना बनाए, सबको बताइए कि आपकी इतनी प्यारी सी वाइफ है। रेनू देवी का भी मेल आया है, लिखते हैं प्रोग्राम पॉप टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है, विलेज हसनपुर और उन्नाव से हमें ये मेल किया है। विरजेश का भी मेल आया है, गुड इवनिंग प्रीति मैम जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भोजपुरी सॉन्ग जरूर, अब जो वक्त है ना वो कहता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, किसी दिन आएंगे और ज़रूर सुनवाएंगे। विनीत कुमार का भी मेल पढ़ लेते हैं, और ये हमें रामगढ़ चीनी मिल ज़िला सीतापुर से मेल किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लखनऊ से हरिकेश, लखनऊ से और बहुत सारे नाम लिखे हैं, राजाजीपुरम से भी नाम लिखे हैं, लेकिन वक्त है ना, ये वक्त कम वक्त कह रहा है कि आखिरी गाना को सुनवा दिया जाए, और इस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। पॉप टाइम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप, और इसके बाद न्यूज़, न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा कर रहा है आपका बेसब्र से इंतजार। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और आज आपके साथ है आरजी प्रीति।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से आई आपदा के दृष्टिगत राहत कार्य तेजी से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावित जनपदों के प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वह अपने प्रभार वाले जनपदों में तत्काल पहुंचकर राहत कार्यों का अनुश्रवण करते हुए इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। राहत कार्यों के संबंध में यदि शासन स्तर से किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो तत्काल अवगत कराएं ताकि प्राथमिकता पर व्यवस्था की जा सके। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने तथा सरकारी खर्चों में कटौती करने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असर दिखने लगा है। सीएम योगी की अपील का अनुसरण करते हुए गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अब बिना स्कॉट वाहन के आना जाना शुरू कर दिया है। सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। अब वह दो गाड़ियों के साथ ही निकल रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद अपने कार्यदायित्व निर्वहन के लिए स्कॉट वाहन को हटा दिया है। आवास आयुक्त बलकार सिंह की अध्यक्षता में आज अमरोहा में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों एवं जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके साथ उन्होंने प्रभारी मंत्री केपी मलिक द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन आख्या की समीक्षा भी की। नोडल अधिकारी ने जनपद में सभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीण इलाकों में तालाब एवं चारागाह भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने और पुनर्जीवन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तालाब की भूमि खाली कराने, डालमिया चीनी मिल का पानी रोकने, तालाब खुदाई, ट्रैक निर्माण और वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारागाह भूमि पर गौशाला निर्माण और हरे चारे की बुआई सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: रात के इस खामोश चादर में जब यादों की हल्की हल्की खुशबू घुलने लगती है, तब जिंदगी के कुछ अनछुए किस्से दिल के किसी कोने से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह भुलाए ही नहीं जाते, पुराने खतों की तरह, जिन पर वक्त की धूल तो जम जाती है मगर एहसास आप भी वैसा ही है, ताजा। तो आज के इस रजनीगंधा रात में हम लेकर आए हैं वही सुनहरे नगमे जो कभी आपकी धड़कनों के बेहद करीब हुआ करते थे। हर गीत के साथ जुड़ी होगी कोई याद, कोई अधूरी कहानी, कोई मीठी मुस्कान। तो बस अपने दिल को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए और इन पुराने गीतों के साथ खो जाइए उस दौर में जहां मोहब्बत सादगी में बसती थी और एहसास शब्दों से ज्यादा सुने जाते थे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे प्रीति को रजनीगंधा प्रोग्राम ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की। सुनते रहिए

दोस्तों, अक्सर वक्त अपनी रफ्तार को भूल जाता है, या शायद हम उसे भूल जाते हैं। क्या आपको याद है वो पहली बार जब भीड़ बहुत थी, शोर भी बहुत था, लेकिन आपकी पूरी दुनिया अचानक एक चेहरे पर आकर सिमट गई हो। वो पल जैसे कुदरत ने उसे एक सेकंड को खींच कर एक पूरी उम्र में बदल दिया हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि इश्क में दिल धड़कता है, लेकिन उस पल तो ऐसा लगता है कि मानो दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया हो, है ना? सिर्फ ये देखने के लिए कि आप सांस कैसे लेते हैं, यानी कि दिल ऐसा सोचता है। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर एक बार दिल खुद को रोक लेता है और ये परखता है कि अब आप कैसे सांस लेंगे। वो घड़ी की सुइयां जो आज तक हमें हमेशा दौड़ाती रही हैं, उस दिन पहली बार हमारे हक में ठहर गई थी। जैसे वक्त ने भी झुककर कहा हो, बस यही तो है वो लम्हा जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। ना कोई लफ्ज थे, ना कोई बहाना, बस एक नजर का जादू था जिसने रूह के सारे बंद दरवाजे खोल दिए थे। उस ठहराव में हमने पहली बार खुद को जाना था। और ये किस्सा हमारा नहीं, ये तो आपका है, जिसे हम बनकर पढ़ गए। बस इस तरह के बहुत सारे आपके दिल में किस्से हैं जिसे आज हम बनकर यहां पर पढ़ेंगे। बस सुनना आपको है।

जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्ने हम हर रोज पलटते हैं, कभी खुशियों के तो कभी गम के। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पन्ने पर आकर अटक गए हो? हुआ जरूर होगा। वो पन्ना जो अब बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी स्याही भी धुंधली पड़ गई है, लेकिन आज भी जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो पुरानी खुशबू और वही बेचैनी फिर से जिंदा हो उठती है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आगे के पन्ने हम पलटें, नई कहानियां लिखें, लेकिन वो एक पहली नजर का ठहराव, वो एक ऐसा पन्ना होता है जिसे आप अपनी जिंदगी से क्या अपनी किताब से फाड़ ही नहीं सकते और ना ही उसे किताब से बाहर निकाल सकते हैं। वो आपकी रूह के किसी कोने में एक दबी हुई आह बनकर आज भी धड़क रही है। आप जानते हैं कि वो दौर गुजर चुका है, वो वक्त बीत चुका है, लोग बदल चुके हैं, फिर भी आज हम उन्हीं पुराने यादों के पन्ने फिर से पलट रहे हैं। शायद हम उस पन्ने से, उस किताब से आजाद ही नहीं होना चाहते, या फिर हम इसी कैद में खुश हैं। और जिसे आप खुशी समझते हैं वो शायद एक चुभन है, जिसे आप उस चुभन के दर्द को हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन उस दर्द को दर्द नहीं समझते। उसमें भी आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। तो अगर ऐसा कोई पन्ना है जो आपकी जिंदगी में निकल चुका है, लेकिन बार बार उस पन्ने को आप पढ़ रहे हैं, तो मेरी राय तो यही होगी, उस पन्ने को किताब से अलग मत करिए, क्योंकि वो भी जैसे हर एक पन्ना उस किताब के लिए जरूरी होता है, तो हमारी जिंदगी में भी हर एक इंसान जरूरी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किताब अगर भर गई हो तो नई किताब आप ना खरीदें, नए पन्नों को ना पढ़ें, नए पन्नों पर नए अल्फाजों को आप ना उकेरें, है ना। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो पुराने पन्नों को पढ़िए, संजो कर रखिए, लेकिन नई कहानियां जरूर लिखिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन के दिन छोटे सही। सुनिए इस गाने को और कुछ नए कहानियां लिखने की कोशिश कीजिए।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरी महफिल में बैठे हों आप, चारों तरफ आवाजें हों, लोग हों, बातें हों, फिर भी दिल सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रहा हो? मोहब्बत की बेचैनी शायद यही होती है ना? जब वो पास ना हो तो हर चीज में उसकी कमी महसूस होने लगती है। रात की हवा भी जैसे मानो उसका नाम लेकर हर बार हमारे बगल से गुजरती है। और जानते हैं आप कि ये जो पुराने गीत होते हैं ना, ये पुराने नगमे, ये दिल को और ज्यादा उसके करीब ले आते हैं। और फिर इंसान थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, अजीब इन द सेंस अजीब सा बिहेव करने लगता है। बेचैनी इतनी होती है कि वो बार बार फोन देखने लगता है, बिना वजह मुस्कुरा देना, और हर थोड़ी देर में ये सोचना कि काश वो अभी यहीं होता। मोहब्बत में दूरी सिर्फ फासलों की नहीं होती दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी खामोशी भी पूरी रात बेचैन कर देती है। और शायद इसी बेचैनी में प्यार अपने सबसे खूबसूरत शक्ल में महसूस होता है।

दोस्तों, अभी जल्द ही आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि बारिश हुई थी। इसमें महसूस करने वाली शायद कोई बात ही नहीं, बारिश तो हुई ही थी जल्दी। और मैंने उस वक्त में किसी को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था। मैंने सोचा था उसी वक्त कि जब भी मैं रजनीगंधा करने आऊँगी, इस किस्से को ज़रूर आपसे बयां करूँगी। और बस आज मुझे मौका मिल गया। हर रोज़ मैं देखती थी, एक लड़का था मेरे घर के सामने, खिड़की से मैंने देखा था, एक चाय की दुकान थी। एक लड़का हर शाम अपनी गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर सिर्फ इसलिए जाया करता था, यानी कि आया करता था, क्योंकि उसी वक्त वहां से कोई गुजरता था। न कभी उससे ठीक से बात हुई और ना ही इजहारे मोहब्बत, बस नजरें मिलती थी और दिल उन दोनों का शायद मुस्कुरा देता था। ये सब हम अपनी खिड़की से देखते थे दोनों को। और फिर जब अभी बारिश हुई थी, उस दिन मैं यूं ही खिड़की पर बैठी हुई थी और सोचा शायद आज दोनों फिर से दिखे मुझे। और बस उस दिन हर रोज मेरा खिड़की पर बैठने का जो मकसद था ना, उस दिन पूरा हो गया। पहली बार उस दिन बारिश हो रही थी, पहली बार लड़के ने हिम्मत करके अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। उस छोटी सी बारिश में न जाने कितनी बातें हुई होंगी बिना कुछ कहे। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है ना, बहुत शोर नहीं करती मोहब्बत, बस धीरे से जिंदगी में उतर जाती है। इन दोनों की जैसे जिंदगी में उतर गई। लड़का यूं ही तो वहां पे चाय पीने आता था, बस किसी को गुजरते हुए रोज देखता था और दिल में वो घर कर गई। और जिस दिन बारिश हुई, उन बारिश की बूंदों के साथ ही इजहारे मोहब्बत हो गई, बिल्कुल किसी पुराने गीत की तरह। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत।

और दोस्तों जो अभी मैंने आपके साथ कहानी शेयर की, तो पहले तो इंतज़ार रहा होगा लड़के का, और फिर जब दोनों लोग एक साथ, जब लड़के ने छतरी बढ़ाई होगी, तो शायद कुछ इस तरीके से रहे होंगे जज्बात।

दोस्तों वक्त हो चला है 10:54 और कुछ सेकंड्स और इस वक्त के साथ ही रजनीगंधा का पहला पड़ाव बस यहीं तक। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे न्यूज़, न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा फिर से वापस आएगा। और चलिए सुनते हैं ये गाना, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और आज रात 12 बजे तक रजनीगंधा के सफ़र में आपकी हम सफ़र प्रीति रहेगी आपके साथ।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ड्रोन का अधिकतम उपयोग किसानों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने अद्यतन एवं समसामयिक विषयों पर शोध कार्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि तकनीक आधारित नवाचारों को समाज उपयोगी बनाया जाना चाहिए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन की बचत करने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की अपील तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हुए कार्यालय आएं और जाएं। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी के साथ 16 मई को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि शिलान्यास स्थल एवं कार्यक्रम स्थल को 15 मई की रात तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। फरुखाबाद हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन सेतु की स्थिति का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर मौके पर पहुंचकर मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं कटान रोधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

एक बार फिर से आपका स्वागत है। रात के 11:09 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही वैसे तो रजनीगंधा का सफ़र शुरू हो गया था उस खूबसूरत सी गीत के साथ। अब आगे है तो बहुत कुछ कहना, लेकिन एक शायर की कलम से कुछ कहना चाहते हैं। एक बार एक शायर अपनी महफिल में कह रहा था कि इश्क वो नहीं जो हर वक्त हंसाए, इश्क वो नहीं जो हर वक्त हंसाए, इश्क तो वो है जो रूठने पर भी किसी और के पास जाने ना दे। मोहब्बत में जब कोई दिल के बहुत करीब आ जाता है ना, तब उसके बदलते लहजे तक महसूस होने लगते हैं। उसका किसी और से जरा सा ज्यादा बात करना भी दिल में हल्की सी कसक जगा देता है।

की 11:09 और कुछ सेकेंड्स, और इस वक्त के साथ ही वैसे तो रजनीगंधा का सफ़र शुरू हो गया था उस खूबसूरत सी गीत के साथ। अब आगे है तो बहुत कुछ कहना, लेकिन एक शायर की कलम से कुछ कहना चाहते हैं। एक बार एक शायर अपनी महफिल में कह रहा था कि इश्क वो नहीं जो हर वक्त हंसाए, इश्क वो नहीं जो हर वक्त हंसाए, इश्क तो वो है जो रूठने पर भी किसी और के पास जाने ना दे। मोहब्बत में जब कोई दिल के बहुत करीब आ जाता है ना, तब उसके बदलते लहजे तक महसूस होने लगते हैं। उसका किसी और से जरा सा ज्यादा बात करना भी दिल में हल्की सी कसक जगा देता है। अब फिर शुरू होती है वो छोटी छोटी तकरारें। तकरारें इस तरह होती हैं, अच्छा अब तुम्हें हमारी याद कहाँ आती है, जाइए अब हम बात नहीं करते। लेकिन इन सब बातों के बीच नाराजगियों में भी एक अलग ही मिठास होती है, क्योंकि दिल अंदर ही अंदर जानता है कि सामने वाला मनाने जरूर आएगा। फिर वो प्यार से नाम लेकर बुलाना, वो कहना कि इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, और फिर बिना कुछ कहे दोनों का मुस्कुरा देना, यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग होता है। रात जब पुरानी धुनों में ढलने लगती है ना, तब ऐसे ही एहसास दिल के और करीब आ जाते हैं। कुछ यादें मुस्कुराती हैं, कुछ बातें फिर से जीने का मन करने लगती हैं, और दिल बस यही कहता है कि मोहब्बत हो, और मोहब्बत अगर हो तो बिल्कुल ऐसी ही हो।

बच्चा कई बार गुस्सा बाहर से चाहे जितना सख्त क्यों ना हो, बेरुखा हो और कठोर दिखाई दे, भीतर उसकी जड़ें दोस्तों बेहद नाजुक और कमजोर होती हैं। उस वक्त इंसान जो कड़वे शब्द बोल देता है, उनका मकसद सामने वाले को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि अपने भीतर उमड़ रहे डर को किसी तरह थामना होता है, जिनका रूप शब्दों को दे देते हैं। दरअसल वहां गुस्सा नहीं होता, बल्कि खो देने का डर बोल रहा होता है। वो डर कि कहीं जो अपना है वो दूर ना चला जाए, वो डर कि कहीं इस रिश्ते में अकेलापन ना बच जाए। रात की खामोशी में जब शोर थम जाता है और इंसान अपने ही ख्यालों के सामने खड़ा होता है, तब समझ में आता है कि गुस्सा तो सिर्फ एक पर्दा था, उसके पीछे छुपी हुई वही परवाह थी, वही मोहब्बत थी, जो सबसे करीबी रिश्तों को सबसे ज्यादा कमजोर भी बना देती है।

और गुस्से के बाद उतरने वाली खामोशी किसी भी रिश्ते की सबसे भारी और मुश्किल परीक्षा होती है। उस वक्त फोन हाथ में होता है, उंगलियां नंबर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कॉल लगाने की हिम्मत दिल का साथ ही नहीं देती। दोनों अपने अपने अहंकार की चुप्पी ओढ़े अकेले बैठे होते हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन कहते कहते कुछ नहीं। और इस तरह हर बीतता हुआ पल इस अनकही दूरी को और गहरा करता चला जाता है। इस खामोशी में कोई शब्द नहीं होते, कोई शिकायत नहीं होती, फिर भी यही सन्नाटा रिश्तों में वो दरारें डाल देता है जो शोर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि खामोशी कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ तोड़ देती है।

और ये जो होता है ना सिलसिला रूठने और मनाने का, फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दिल सच में थक जाता है, लड़ते लड़ते हर बात में खुद को सही साबित करते करते सही और गलत की बहस अचानक बेकार लगने लगती है, क्योंकि अब सवाल जीत या हार का नहीं रह जाता। उस पल इंसान खुद से पूछता है कि क्या ये रिश्ता इतना कमज़ोर है कि कुछ पलों के अहंकार के आगे टूट जाए, या फिर इतना मजबूत है कि झुकने की हिम्मत दिखा सके। और यहीं से एक नई समझ पैदा होती है कि कभी कभी झुकना हार नहीं होता, बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत होती है।

दोस्तों, जुदाई के बाद सबसे मुश्किल काम यादों से समझौता करना होता है, क्योंकि वही रास्ते, वही धुनें और वही खामोशियां अचानक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। दिन तो किसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन रातें, कमबख्त ये रातें पुरानी बातों को बिना पूछे वापस ले आती हैं, और इंसान खुद को उन्हीं लम्हों में उलझा हुआ पाता है, निकल ही नहीं पाता। फिर समझ आता है कि याद करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जो कभी था वो सच्चा तो जरूर था। कुछ यादें आंखों को नम कर देती हैं, तो कुछ बिना आवाज के दिल में मुस्कान छोड़ जाती हैं, क्योंकि उनमें अपनापन होता है, शिकायत नहीं होती। और कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम भी नहीं होती कि वो बिना किसी वादे, बिना किसी उम्मीद के वही चेहरा फिर सामने ला खड़ा करें। उस पल फिर मिलना पहले जैसा नहीं लगता। अब न जल्दबाजी होती है, न कोई सवाल होता है, बस एक ठहरी हुई समझ होती है। शायद प्यार का सफर यही है, कभी साथ, कभी दूरी, कभी यादें, और अंत में एक ऐसी गहरी चुप्पी जो बहुत कुछ कह जाती है बिना कुछ बोले। इसलिए धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और आज रात के सफर में आपकी हम सफर आरजे प्रीति है आपके साथ।

दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते, लेकिन जिंदगी खुद वही बन जाती है। जब दिल किसी को अपना कह देता है, तब मोहब्बत किसी वक्त या मौसम की मोहताज नहीं होती। वो आदत बनकर साथ रहती है, सांसों के साथ, धड़कनों के साथ, हर पल की धूल में छिपी हुई होती है। चाहत की असली पहचान यही तो है। ये कभी खत्म नहीं होती, ये बस और गहरी होती जाती है। भले ही कोई दूर क्यों ना चला जाए, मगर एहसास कभी दूर नहीं हो पाते, ना ही दूरी हमें सिखा पाते। वो वहीं रहते हैं, उस दिल की दीवार पर, जहां एक नाम उकेरा गया है। प्यार कभी सिर्फ कहा नहीं जाता, वो तो जिया जाता है। और जब कोई दिल में बस जाता है, तो उसकी धड़कन भी दूसरी धड़कन को अपना सुर बना लेती है। यानी कि दो दिल एक साथ धड़कते हैं। शायद इसी को सच्चा लगाव कहते हैं, या सच्ची मोहब्बत, जहां चाहत किसी शर्त पर नहीं टिकती, किसी वजह से जन्म नहीं लेती, बस दिल से निकलती है और दिल में ही ठहर जाती है हमेशा के लिए।

दोस्तों 11:53 और कुछ सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि रजनीगंधा का सफर शायद खत्म होने को है ना। दिल तो नहीं चाहता कि आपसे या फिर इस रजनीगंधा प्रोग्राम से अलविदा कहूं, लेकिन ये जो वक्त होता है ना, इसके आगे हर कोई मजबूर होता है। तो चलिए चलते चलते कुछ बातें और कह देते हैं कि रात की इस महकती राह पर आज का हमारा सफर यहीं ठहरता है। जी हाँ, जो बातें आपने सुनी, जो गीत दिल तक पहुंचे हैं आपके, शायद इनमें कहीं ना कहीं आपने अपना एक हिस्सा भी

जरूर महसूस किया होगा। और इस तरह रजनीगंधा का दोस्तों यही तो मकसद है, रात की खामोशी में दिल के सबसे सच्चे रूप को पहचान पाना। तो अब वक्त है इस आवाज को धीरे से विराम देने का, ताकि आपके अपने ख्याल आपसे बातें कर सके। जल्द होगी आपसे मुलाकात एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का भी, और सपनों को खुला छोड़ दीजिए। रात उन्हें पूरा देखने के लिए इसीलिए तो होती है। शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

नमस्कार। रात्रि के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि और फसल नुकसान के बीच प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित परिवारों को भी तेजी से राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का असर देवरिया में भी देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने अपने गांव जाने के लिए सरकारी वाहन की बजाय ई रिक्शा और बस से यात्रा की। श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान को समय की मांग बताया। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे परिवहन के लिए सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें। उधर बुधवार को महाराजगंज में सदर विधायक भी ई रिक्शा से जिला मुख्यालय पहुंचे थे। बस्ती में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती के सहयोग से लीगल एड हेल्प डेस्क स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश बस्ती समशूल हक द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इस लीगल एड हेल्प डेस्क की मदद से गरीब बंदियों के परिजनों को त्वरित विधिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गाजीपुर में अवैध रूप से चल रहे 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर अवैध रूप से चल रहे इन प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल सीज किए हैं। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में आयुष्मान हॉस्पिटल और शिव हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया। इन दोनों हॉस्पिटल पर पहले से FIR दर्ज है। ये दोनों हॉस्पिटल लंबे समय से बगैर पंजीकरण के चल रहे थे। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:19 पर और सूर्यास्त 6:46 पर होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।